स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक। दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है।

क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, अग्निसार। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना, किया भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्रचित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल शांत मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए, परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस फूर्ति की जगह

0: पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है, इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए, अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े, इनके फायदों को जाने और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं समता योगा एक्सपर्ट आपकी योग युग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है या हम कहें ऐसी अवस्था है जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्रचित हो करके हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली, पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर, अपने ईष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं

अपनी अपनी सारी मन की चित्तियों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्र करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती पर लगाते हुए, एकाग्रचित होकर के लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे।

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे तो हमें कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमें श्वास लेने में, अगर हमने अधिकतर लोगों को देखा है कि वह जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं और प्राणायाम के बाद में उन्हें कुछ दिक्कतें इस प्रकार की होने लगती हैं, जैसे तेज धूप में निकल के जाते हुए उन्हें श्वास का जो चलन है वह अपने आप में इस तरीके से प्रतीत होगा जैसे जल्दी जल्दी श्वास चल रही है, या श्वास भारी होने लगती है, या यदि हम भोजन करते हैं उसके बाद श्वास का भारीपन हो जाना, फेफड़ों में भारीपन लगना। तो हम पहले से ही यह सावधानियां करेंगे तो हमें यह दिक्कतें नहीं आएंगी। श्वास अपने ही स्वतः जिस तरीके से आपको लगे कि हम यह हमारे लिए सावधानी और हमें आसानी होगी, उस तरीके से हम श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। प्राणायाम को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं। इनहेल यानी श्वास लेंगे, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, यानी हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हम रेस्ट बोल रहे हैं, यानी हमें आराम की स्थिति में आ जाना है। यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम में श्वास की गति नियंत्रित रूप से सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया। अगर आपको समय का बोध है, यानी समय बोध का मतलब हुआ हम अपनी घड़ी में 20 मिनट यानी 15 मिनट यानी 10 मिनट यानी 5 मिनट, हम अपनी सुविधा अनुसार 5 मिनट से शुरू करते हुए एक टाइमर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम टाइमर लगा सकते हैं अपनी मोबाइल में, अपनी घड़ी में, ताकि आपको यह प्राणायाम या कोई भी आगे प्राणायाम करने में सावधानी और सुरक्षा एवं आपको आसानी होगी। जैसे हमने अगर टाइमर लगा दिया तो वह टाइमर जो आपने टाइम सेट किया है उसी पर करके वह टाइमर स्टॉप होगा और आपका वह प्राणायाम एक नियमित रूप से, एक नियमित गति से होता रहेगा। बच्चों के लिए दोस्तों स्टार्टिंग

में 2 मिनट से हम करेंगे, जैसे कोई भी प्राणायाम हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान योग मुद्रा हमने आज टॉपिक लिया हुआ है, हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ध्यान और भस्त्रिका यह दोनों प्राणायाम हम बड़ों के लिए 5 मिनट जैसा कि हम लोगों ने अभी किया, और बच्चों के लिए 2 मिनट। हम फिर से पुनः अपनी उसी स्थिति में आएंगे। जैसे श्वास हम ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, तो आइए अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी शरीर से लेकर के, रोगों को लेकर के होती रहती है, जैसे दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, वह आपकी एकमात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। और यह प्राणायाम करने से जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी श्वास से रिलेटेड, हम श्वास ले रहे हैं, श्वासों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह आपकी दूर होगी। जैसे फेफड़ों से संबंधित हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी हमें जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हमारी भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से करते रहने से दूर होती है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय यदि अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम को उस गति में हम समावित कर रहे हैं, तो हमें इसका लाभ पूर्णता दुगना होकर के मिलने लगता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हमने आपको अभी बताया कि श्वासों से नियमित रूप से करने से श्वासों की गति को संचालित करने के लिए यह प्राणायाम है, तो हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम को आपके सामने, आपके साथ में हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आज आपने यह अभ्यास हमारे साथ किया और यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा, और हम इसको नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहेंगे। और यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने में कोई भी परेशानी हो, तो आप जैसे प्रश्नोत्तरी में आप हमसे इनबॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने आज बात करी

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभु को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नई सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभ अंकाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी ना

शिवाय, जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्र वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय तस्मय बकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ अगत्स गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिन्नाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक। पंचाक्षर मिदम पुण्यम यः पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवा यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। नाम माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

तो दोस्तों आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम

0: अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको उसे रूबरू कराते हैं। भोलेनाथ, भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो। चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता। असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप, अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो। गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी। हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है। अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो, क्योंकि प्यार
2: से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

दोस्तों, शिव पूजन में वेल पत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तप के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप पसीने और तप ऊर्जा से वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे वेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि वेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज़ है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि जिसका आरंभ ना हो, शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं, एक सनातन सत्ता। इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों, अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव, सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती उन्हें, शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं, होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गले में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारी प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो पल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजे आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. आप सुन रहे हैं अपना 89.6 FM. ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. तो चलिए भाई, आज है मंडे मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग के साथ हो गई है एक ज़बरदस्त गर्मी वाली शुरुआत. हाँ यार, अब जब मॉर्निंग होती है तो ऐसा लगता है कि गर्मी से दो चार होना पड़ेगा एंड डेफिनेटली फिर वही चीज़ें आती भी है सामने और गर्मी सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई अब ख्याल ज़्यादा रखना होता है क्योंकि आप ज़रा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं तो उसका असर सीधे आपके हेल्थ पर आता है. या फिर अगर कहीं आप निकलते हैं तो कुछ ही मिनट्स बाद आप निढाल से होने लगते हैं. तो ये जो सिम्टम्स है, ज़रा सा एक जीना चढ़ने के बाद हाँपना या फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एकदम घबराहट सा हो जाना, ये अच्छे लक्षण नहीं है. तो यानी हमको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ही होगा, हमको थोड़ा सा और एक्टिव होना ही होगा और हमको ऐसी चीज़ों से बचना होगा जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है. सो इसलिए कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर ख्याल रखना होगा कि हम अपने को और भी ज़्यादा हेल्दिंग कैसे कर सकते हैं. तो चलिए अब बताते हैं आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर गया है, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान.
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान.

हाँ जी, तो भाई आज का थॉट मंडे स्पेशल कहता है कि पसंद नहीं आई एंडिंग तो बदल दो, अब तुम्हारी अपनी कहानी ही तो है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई आप जो कुछ चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को अगर एक मूवी की तरह देख रहे हैं, एक स्टोरी की तरह देख रहे हैं और उसके बाद उसकी एंडिंग पसंद नहीं आ रही है, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। आपकी मूवी, आपकी कहानी आपके हाथ में है, आप चाहें तो बदल सकते हैं। अच्छा, हम अक्सर ये जो ब्लेम करते रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, दरअसल हम उसी एक तरह की बातों के बीच में रह जाते हैं, इसीलिए कुछ अलग हम कह नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं और महसूस भी नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हम अपनी चीज़ों को थोड़ा भी

चेंज करते हैं, उस लाइफ में आते हैं, हमको हमारे चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। इवन हम महसूस कर पाते हैं कि हम पहले जहां होकर के सोच रहे थे वो कितने गलत थे। हालांकि जिस भी जगह आप होकर के सोच रहे हैं उस वक्त के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप बदले ही ना और आप कहें कि सब कुछ तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ये तो तब कहा जा सकता है जब सब कुछ ट्राई कर लिया गया हो, लेकिन जब सब कुछ नहीं किया गया हो तो ये कहना कि सब कुछ ऐसा ही है, ये तो लाजिम बिल्कुल भी नहीं है। सो आपकी स्टोरी, आपकी कहानी, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, और आपके अगर हाथ में है तो यही लाइफ, यही कहानी, यही स्टोरी बताती है कि भाई आप भी चाहे तो कहीं ना कहीं ख़ुद की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। सो अगर आपको एंडिंग नहीं पसंद आ रही है अपनी, तो कुछ ऐसा करिए ना जिससे कि एंडिंग चेंज हो और आपकी लाइफ भी पूरी तरह से अलग चले। वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में, ऑब्वियस सी बात है। उसके जो बदलाव करता है, उसके जो डायरेक्टर है, वो आप हैं। अब आप जैसा ले जाएंगे उस तरह से वो लाइफ चलेगी, वो स्टोरी चलेगी, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली एंडिंग होगी। सो ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। मुझे लगता है आज का थॉट ऑफ द डे बहुत सच्ची बात कहता है, बहुत कम अंदाज़ा लग पाता है, और ये अंदाज़ा तब लग पाता है जब हम उन चेंजेस से होते हुए सच में चीज़ों को चेंज करके पा पाते हैं, उसके बाद हमको अंदाज़ा हो पाता है। फ़िलहाल ये तो अब आप भी बताने वाले हैं कि ये जो बात मैंने बताई है वो आपको कितनी पसंद आई है और आपके लिए कितनी अप्रोप्रिएट है, और आप किस तरह से इन बातों को देखते हैं। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि हाँ, सच में आपकी लाइफ के आप ही फ़िलहाल डायरेक्टर हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर लेते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप एंडिंग को चेंज करते हुए मूवी को ही चेंज कर देते हैं। सो ये है मेरा मानना। अब आप इसको कैसे देखते हैं, आप भी थॉट के ऊपर अपना रिएक्शन दे करके बता सकते हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आपको लगा होगा कि ये चीज़ सही नहीं, और फिर आपने अपनी लाइफ में चेंज किया होगा और फिर वो चीज़ चेंज हो करके ही आई होगी, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? और अगर किया है तो यस, आप बता सकते हैं कि आप भी उस बदलाव का हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल आइए आपको ले चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, वापस से आते हैं और आने के बाद देखते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या कुछ लिखा है आपने अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: मोहित चौहान साहब की आवाज में ये सॉन्ग क्या बात है, बहुत खूब बहुत प्यारा। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अकान।

वेलकम है फ्रिक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का। सो फिलहाल जो सुनते हैं 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, उनको मिलता है चैट का ऑप्शन और वो जो कुछ लिखते हैं लाइव कूडा एफएम के आरजीस तक पहुंचता रहता है। सो इसी चैट बॉक्स पर कौन कौन से मैसेजेस आ गए हैं, किस किस ने लिखा है, क्या क्या लिखा है और कहाँ कहाँ से लिखा है, आइए बताते हैं। सबसे पहला मैसेज प्रीति जी का है बहराइच से। सर जी, वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। इसके बाद सविता जी लिखती हैं सुप्रभात। भाई सुप्रभात आपको भी। और अनुष्का जी श्रावस्ती से हैं, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका दिन भी मंगलमय हो। फिलहाल तो कल मंगल ही है। आशु जी लिखती हैं सुप्रभात। सर जी सुप्रभात, लखनऊ से आपका भी स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। इसके बाद अनुष्का जी ने लिखा है वेरी नाइस थॉट ऑफ डे सर, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया है। प्रीति जी बहराइच से कहती हैं वाओ, आज का थॉट बहुत ही उम्दा, ज़बरदस्त, ट्रुथफुल। मेरी लाइफ भी कुछ मूवी जैसी ही है, अब तक लाइफ सैडनेस और स्ट्रगल भरा गुजरा, बट मन में विश्वास बुलंद भरा हौसला है कि एंडिंग बेहतर से बेहतर होगी। क्या बात है, बहुत खूब। अमित सिंह जी मुंबई से हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं आपका आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। अच्छा वैसे ये सुनने में काफ़ी एक सा लग सकता है कि हर रोज़ हम सुप्रभात बोलते हों या मॉर्निंग विश करते हों या लवली मॉर्निंग कहते हों, लेकिन ये एक थेरेपी की तरह है कि हर रोज़ कितना स्पेशल सा फील होता है हम एक दूसरे को जब मॉर्निंग विशेज़ करते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ कोई है जो दिन की शुरुआत में आपके पास में आया है और वो आपसे बातें करना चाहता है या फिर आपके लिए बातें करना चाहता है, ये बड़ी प्यारी बात होती है। फिलहाल आशु मिश्र जी ने भी लखनऊ से बता दिया है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफें उतनी ही ज़्यादा बड़ी होंगी, इसीलिए लक्ष्य पर ध्यान लगाए रहना चाहिए, बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ने से हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड यस, न जाने कहां कहां से हम जुड़ गए हैं, सुन रहे हैं अपने गोंडा एफएम को, एक ऐसा परिवार जो हर रोज़ सुबह होते ही गैदर्ड हो जाता है, मिल जाता है। तो चलिए इतने खूबसूरत से परिवार को ले चलते हैं आगे की तरफ और एक ज़बरदस्त खूबसूरत सा गाना सुनाते हैं आपको। उसके बाद आज बहुत कुछ है जो आपसे बताना है, क्योंकि आज है मंडे मॉर्निंग स्पेशल शो विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और ये भाई ये गाना आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी, और मुझे लगता है कि भाई ये लगातार जो बैक टू बैक सॉन्ग्स आ रहे हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए अब इस सॉन्ग के उस पार आ करके आपको बता ही देते हैं कि आपके सिटी में आखिर क्या कुछ चल रहा है, यानी आपकी अपनी फेवरेट सिटी अपडेट्स ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: सो आपको क्या लगता है भाई, अपडेट्स में पहली अपडेट किस तरफ होगी और किस चीज़ की होगी? चलिए भाई, अब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ ही रही है कि पहली अपडेट जो है वो गर्मी से जुड़ी हुई ही बता देते हैं आपको आपकी मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota.

सो फिलहाल पारा जो है वो इस वक्त काफी चढ़ा हुआ है और 40 के पार चल रहा है। अगर हम बाजारों की बात करें तो इस वक्त बाजारों में काफी सन्नाटा नजर आ रहा है और तेज धूप की वजह से जो है वो लोग निकल नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी से बचने की कोशिश करते साफ नजर आ रहे हैं। सुबह ही फिलहाल कुछ लगातार गर्मी के वजह से आपको अब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखने की ज़रूरत नज़र आ रही है। सो फिलहाल दुकानदारी पे तो काफ़ी असर पड़ा है एंड बताया ये गया है कि आंवले का जूस पी करके आप खुद को गर्मी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। कैसे? गर्मी से बचने के लिए अगर आप रोज़मर्रा में नारियल पानी या फिर छाछ, खीरा, पुदीना शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा धूप में निकलने से पहले लू और गर्मी से बचने के लिए चने का सत्तू और जौ की दलिया या फिर पानी पी सकते हैं। रात को सौंफ और साबुत धनिया भिगोकर सुबह उस पानी को छान कर पीने से पेट की जो गर्मी है वो निकलती है, एसिडिटी नहीं होती है। इसके अलावा मुलेठी पेट की जलन को, एसिडिटी को कम करती है। आंवले का जूस बॉडी को, तापमान को नियमित करने में मदद करता है। अपने माथे और नाभि पर चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। आंखों और चेहरे पर गुलाब जल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, ऐसे हैक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फिलहाल गर्मी को मात देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा अगली जो अपडेट है वो है रेलवे से कि गोंडा से होकर जून तक चलने वाली है हैदराबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन। सो रेलवे प्रशासन ने हैदराबाद गोरखपुर हैदराबाद गर्मी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का जो है वो बढ़ा दिया है, फिलहाल विस्तार कर दिया है। ये ट्रेन जून महीने में 4 ज़्यादा फेरों तक संचालित की जाएगी। इससे गोंडा समेत आसपास के जो रहने वाले यात्री हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। 07075 हैदराबाद गोरखपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन 5/12/1926 जून को हर शुक्रवार को हैदराबाद से रात 9 बजे रवाना होगी। ट्रेन सिकंदराबाद, काजीपेट, नागपुर, भोपाल, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी होते हुए तीसरे दिन सुबह 3:25 पर गोंडा पहुंचेगी और सुबह 6:30 गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 07076 गोरखपुर हैदराबाद साप्ताहिक विशेष ट्रेन 7, 14, 21 और 28 जून 2026 को हर संडे को गोरखपुर से सुबह 8:30 रवाना होगी। ट्रेन 10:50 पर गोंडा पहुंचेगी और बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, झांसी, भोपाल, नागपुर होते हुए अगले दिन शाम 5:25 पे हैदराबाद पहुंचेगी। सो इसके अलावा रेलवे प्रशासन के हिसाब से ट्रेन में 22 LHB कोच भी लगाए जाएंगे। सो ये एक अपडेट थी जो कि आपके लिए थी और ये अपडेट आप तक पहुंचा दी गई है, रेलवे प्रशासन की तरफ से आई थी। इसके अलावा आपको बता दें डायवर्जन को लेकर के एक ज़रूरी बात है जो कि आपको जान लेना चाहिए। सो 5 सोमवार में भारी वाहनों का स्पेशल डायवर्जन किया जा रहा है। सो मलमास में बाराबंकी के प्रसिद्ध महादेवा शिव मंदिर मेले में भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने बड़े लेवल पर ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ख़ास करके घाघरा घाट मौजूद संजय सेतु पर चल रहे मरम्मत काम की वजह से इस बार बहराइच से लखनऊ जाने वाले जो भारी वाहन हैं उनकी आवाजाही पर ज़रूर नियंत्रण रहेगा। सो पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के हिसाब से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर सोमवार को विशेष डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। बहराइच, गोंडा और बलरामपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाले ट्रक, रोडवेज बस, डंपर, टैंकर समेत सभी जो भारी व्यवसायिक वाहन हैं उनके वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। सो बहराइच घाघरा घाट से लखनऊ की तरफ जाने वाले जो भारी वाहन हैं टिकोरा मोड़ से डाइवर्ट करके चहलारी घाट रेउसा होते हुए भेजा जाएगा। प्रयागपुर और हुजूरपुर से आने वाले सभी जो भारी वाहन हैं इनको कैसरगंज तिराहे से मोड़ करके टिकोरा चहलारी घाट मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। सो गोंडा के कर्नलगंज की तरफ से आने वाले वाहनों को जरवल तिराहे से
वापस मोड़कर टिगोरा की तरफ भेजने की व्यवस्था की गई है। और गोंडा बलरामपुर ज़िलों से संजय सेतु के रास्ते लखनऊ जाने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक रूट बनाए गए हैं। गोंडा से आने वाले वाहनों को नवाबगंज अयोध्या या फिर परसपुर तरबगंज ढमुआ घाट रौनाही मार्ग से भेजा जाएगा, जबकि बलरामपुर से आने वाले जो वाहन हैं गोंडा परसपुर तरबगंज ढमुआ घाट या फिर उतरौला मनकापुर नवाबगंज अयोध्या से लखनऊ की तरफ भेजा जाएगा। सो एसपी ने बताया कि ये डायवर्जन 18 मई से 25 मई 1 जून और 8 जून 15 जून को रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलाया जाता रहेगा। सो इस तरह से जो भारी वाहन हैं उनको लेकर के ये डायवर्जन किया गया है। इसके अलावा बाल श्रम उन्मूलन को लेकर के अगर हम सैटरडे की बात करें तो सिंगल डे स्पेशल अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन विकास खंडों और नगर निकायों के क्षेत्रों में 13 टीमें इन्होंने गठित की, हम बलरामपुर की बात कर रहे हैं। और इस अभियान में 14 साल से कम एज के 3 बच्चों को काम करते मिले जिन्हें आज़ाद कराकर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया है। अभियान में हर एक टीम में उप जिलाधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया। टीमों में होटल दुकानों और जो प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर काम कर रहे छोटे बच्चों को वहां से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट जो है वो आ रही है जनसुनवाई को लेकर। सुबह 10 बजे से नगर पालिका परिषद सभागार में अवर अभियंता रितेश कुशवाहा जनसुनवाई करने वाले हैं। इसके अलावा सुबह 11 बजे इटिया थोक के चहलवा में बिसुही नदी पर पुल और सड़क के निर्माण कार्य का आज शिलान्यास होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पत्रकारिता दिवस की तैयारियों पर चर्चा भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक जो है कल हुई सिंचाई डाक बंगले में। बैठक में 30 मई को संपूर्णानंद यानी टाउन हॉल में आयोजित होने वाले पत्रकारिता दिवस समारोह की तैयारियों पर बातचीत किया गया। बैठक में जो है अध्यक्ष जिलाध्यक्ष ने ऑफकोर्स इसमें बैठक की। इस दौरान फैसला लिया गया कि संगठन के सभी सदस्य खुद सहयोग करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। समारोह में ज़िले में 11 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करने का भी फैसला लिया गया है। और फिलहाल इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट जो है वो अंडर पास की मांग को लेकर के आ रही है। दुल्लापुर दुर्गा माझा के बीच सर्विस लेन की भी मांग कर रहे हैं वहाँ के रहने वाले। सो रिंग रोड निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने जो है वो दुल्लापुर और दुर्गा माझा के बीच में अंडरपास और सर्विस लेन की मांग को लेकर कल यानी संडे में प्रदर्शन भी किया और काम रोक दिया। सो फिलहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद काम दोबारा शुरू हो सका है और अभी यहां पर अंडरपास की मांग लगातार की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें CBSE की जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है ये 15 जुलाई को होगा। सो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने क्लास 12th की दूसरी बोर्ड परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा की जो तारीख है उसकी घोषणा कर दी है। बोर्ड की तरफ से जारी सूचना के हिसाब से जो एग्ज़ाम है 15 जुलाई को होगा और इसमें एक दिन में पूरा कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 2 जून 2026 से शुरू होने वाली है। सो इस तरह से ऑफकोर्स कहीं ना कहीं अगर ऐसे बच्चे जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं वो इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर सकते हैं। सो फिलहाल ये कुछ ख़ास अपडेट्स थी जो कि आप तक बता दी गई है। और अब जो है हम बढ़ते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। और अगला म्यूज़िकल ब्रेक क्या होने वाला है आपको अंदाज़ा है कौन सा सॉन्ग आने वाला है? चलिए भाई हम ले आते हैं अपने हमनाम यानी अदनान समी साहब का सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या बात है भाई, रेस टू का ये गाना बड़ा ही रोमांटिक सा है। फिलहाल मुझे लगता है इस कड़ी धूप में अगर सना के रोमांटिक सॉन्ग्स हम सुन लेते हैं तो निकलने पे इतनी धूप भी नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारी चीज़ें बदली बदली सी है। सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान। और एक ऐसी बात जिसको सुनकर आप कहें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट ऐसा हो रहा है। दरअसल एक ऐसा शख्स है जो 30 किलोमीटर निकल जाते हैं साफ सफाई को लेकर। अब आप सोचेंगे उसके लिए 30 किलोमीटर क्यों जाते हैं। चलिए, कौन है ये, क्यों जाते हैं, क्या है पर्पस और क्यों आज हम इनके बारे में बता रहे हैं, ये बताते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें कि आखिर कौन है जो 30 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं वो भी सफाई के लिए। सो हम बता रहे हैं, सफाई के लिए ये लड़का जो है रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलाता है। सच में। दरअसल हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के गौरांग साहू। उन जगहों पर ये सफाई करते हैं जहां कोई जाना भी नहीं चाहता। होता ये है कि हर सुबह गौरांग जो हैं वो निकल पड़ते हैं शहर की साफ सफाई करने। सड़क पर कोई बेसहारा मरा हुआ जानवर हो, उसको दफनाने से लेकर के कूड़े के ढेर और वो सड़कें जिन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता, यहाँ अकेले जाते हैं एक जगह साफ करने में 7 से 8 घंटे तक इनको लग जाते हैं। इन्होंने पूर्वा मोदिनीपुर के कई सार्वजनिक जो जगहें हैं उनको अकेले ही साफ कर दिया है। सो इस काम में ये लंबी लंबी दूरी साइकिल से ही तय करते हैं और कभी कभी दिन भर बिना खाए हुए लिटरली ये सफाई करते रहते हैं। सो जब उन्होंने लोगों का साथ मांगा तो ज़्यादातर लोगों से जवाब मिला ना। जाहिर सी बात है कि हमें भी पता है कि एक तरह का जवाब ज़्यादा आता है। कुछ ने इनका मजाक भी उड़ाया, कुछ ने इनके काम को छोटा भी समझा, लेकिन ये न हारे और न रुके बल्कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बदलने लग गई। जो जगह जहाँ से लोग गुजरने से भी हिचकिचाया करते थे, आज वहाँ से लोग आराम से गुजरते हैं। गौरांग के लिए ये सिर्फ एक साफ सफाई की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी है जिसके लिए इन्होंने बदलाव का इंतज़ार नहीं किया, खुद बदलाव बन गए। सो अगर एक इंसान अकेले इतना कर सकता है तो सवाल ये है कि हमें क्या रोक रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। सो सच में गौरांग साहू की अगर हम बात करें तो ज़रा सोचिए, एक ऐसा लड़का जो साइकिल से निकल जाता है, 30 किलोमीटर के आसपास ये सफ़र करता बंदा, 7 से 8 घंटा सफाई करता है सार्वजनिक जगहों पे। रास्ते में कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है उसकी बॉडी, तो उसको दफनाना, कूड़े के ढेर को निकालना, हटाना, साफ सफाई करना, और ये पश्चिम बंगाल के हैं गौरांग साहू। मुझे भी लगता है कि जब एक इंसान इतने अच्छे से निकल करके अलग से सार्वजनिक जगहों को साफ कर रहा है बंदा, तो हम अपने घर से सीधे कूड़ा जो बाहर की तरफ फेंक देते हैं, अक्सर नाइट वॉक करने के दौरान या मॉर्निंग में भी मैंने अक्सर देखा है कि

से फैलती है। इसके बावजूद भी हम जहाँ पर रोज़ झाड़ू लगाई जाती है सुबह शाम, वहाँ पर भी ये हालात देखे जाते हैं। इवन इसका उल्टा होता है, ये सोचा जाता है कि अभी तो झाड़ू लग जाएगी 2-3 घंटे बाद, शाम में लग जाएगी, मॉर्निंग में लग जाएगी। तो ये जो है ऐसा इस तरह के ख्यालात को लेकर के लोग फेंक देते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप 30 किलोमीटर साइकिल से निकल कर सार्वजनिक जगहों को नहीं साफ़ करें, दैट इज़ टोटली फाइन, कोई बात नहीं है। आप अपने घर से जो कूड़ा निकल रहा है उसको सही जगह फेंके, सही तरीके से फेंके, शायद यही हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमको आखिर क्या चीज़ रोकती है, ये ख्याल तो आता ही है एंड ये ख्याल आज भी आ रहा है, तो शायद इसको ज़रा गौर से सोचेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल सविता जी ने सही कहा है, एकला चलो रे सही इंसान है। सो कोई आपके साथ आए ना आए, आप एकला चलो रे, यानी कोई ना भी आए तो आप अकेले ही चल दो। फिलहाल ये कर दिखाया है गौरांग साहू ने, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कैसी लगी इनकी रियल लाइफ स्टोरी जो कि इनको एक रियल हीरो बना रही है? चलिए फटाफट से कमेंट करिए और बताइए।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉ का जो इतना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो भाई चलिए बताते हैं क्या कुछ नया है इस बार जब हम वापस से आए हैं। सो आपको हम बता दें कि बच्चों में जो विकार हैं उनको दूर कर रहे हैं रेत और देसी खिलौने। अब आप सोचेंगे बच्चों के विकार में ये रेत और देसी खिलौने किस तरह से कारगर हैं? जी बिल्कुल वैसे ही जैसे कई बार कुछ चीज़ों में नमक डाल करके आप उसका स्वाद बढ़ा देते हैं। बात यह है कि KGMU के जो मनोरोग विभाग हैं बच्चों का सैंड ट्रे थेरेपी से खेल खेल में कर रहे हैं इलाज। जी हाँ, KGMU के मनोरोग विभाग में एक अनूठी थेरेपी की शुरुआत की गई है और मनोरोग से जूझ रहे बच्चों और किशोरों को अब भारी भरकम दवाओं और साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए भारतीय सैंड ट्रे थेरेपी यानी बालू भरे ट्रे से उपचार की शुरुआत की गई है। इस अनूठी थेरेपी से बच्चे खेल खेल में अपनी जो मानसिक उलझने हैं उससे बाहर आ रहे हैं, साथ ही उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी निखर रही है। बाल मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित आर्या बताते हैं कि इस थेरेपी की सबसे बड़ी खासियत है इसका भारतीयकरण होना, यानी कुछ अस्पतालों में यूरोपियन सैंड ट्रे थेरेपी का सहारा लिया जाता है। इसमें यूरोपियन संस्कृति से जुड़े खिलौने होते हैं, इसका भारतीय बच्चों पर उतना असर नहीं होता। KGMU में सैंड ट्रे थेरेपी का इस्तेमाल किया जाने वाला खिलौना पूरी तरह से देसी और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समुदाय से लेकर के कई सारे राज्यों क्षेत्रों और वहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं उस पर बेस्ड खिलौने और आकृतियाँ रखी गई हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़े खिलौने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़कर एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराते हैं। इस तरह से जो है वो सैंड ट्रे थेरेपी यूज़ कर रहा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। जी हाँ, आपको बता दें कि क्या है सैंड ट्रे थेरेपी। देखिए, इस खास सैंड ट्रे यानी रेत से भरे ट्रे में बच्चे अपनी जो भी इमेजिनेशन होती है यानी जो भी कल्पनाएं हैं और मन की दुनिया को आकार देते हैं। ऑटिज्म या मनोरोग से पीड़ित जो बच्चे अपनी बात खुलकर नहीं बोल पाते वो इस रेत पर खिलौने से अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं। बच्चे इन सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं और खिलौने उनमें रेत पर सजा कर अनजाने जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बातों को चिकित्सकों के सामने रख देते हैं। फिर बात आती है कि ठीक है ये थेरेपी है बट इससे फ़ायदे क्या है। तो फ़ायदे बता दें कि बच्चों को छोटी उम्र में ही नींद और तनाव की दवाएं देने से बचा जा सकता है जो अक्सर अब देखा जा रहा है। इसके अलावा खेल खेल में बच्चों की सोच और उनकी कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होती है। बिना किसी दर्द या दबाव के बच्चे जो उनके मानसिक विकार हैं उससे बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से चिड़चिड़ापन तनाव कम होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये फ़ायदा है इस थेरेपी का। आई होप कि ये थेरेपी अब आप भी जान रहे होंगे कि किस तरह से ये सैंड ट्रे थेरेपी यानी रेत से भरी ट्रे में बच्चे अपने अकॉर्डिंगली अपनी कल्पनाओं के अकॉर्डिंगली कुछ भी उकेर देते हैं और खेल खेल में अपनी जो मेंटल इलनेस है जो मानसिक विकार है उससे बाहर आ जाते हैं। कई बार देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीमारियां हैं इसका सलूशन कहीं और जाने पे नहीं है बल्कि एक डिजिटल दुनिया को छोड़ करके रियल लाइफ में रह करके मिलने कुछ करने में है। जितना भी हम सेपरेट रहने की कोशिश करें जितना भी हम भागने की कोशिश करें एट द एंड लगता है कि क्या कोई भी नहीं है, क्या कोई भी नहीं है जो हमारी इन बातों को समझ सके या मुझे सुन सके। क्योंकि शायद दूसरे के साथ तो हम भी यही कर रहे हैं ना, हम भी दूसरा आता है तो कहते हैं कि भाई अब इतना वक्त हो गया अब चलो चलते हैं या ये करना है वो करना है। और शायद अगर हम देखें तो हमारे पास काम उतना ही है बस हमारे मोबाइल ने जो है वो अलग अलग वक्त पे वक्त को ले ही लिया है यानी खा गया है वक्त। तो फिलहाल ये सैंड जो ट्रे थेरेपी है इसके बारे में आपको सुन करके कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि आज के बच्चों को इस तरह से खेलने का मौका मिलना चाहिए कि भाई वो ऐसे खेल खुद से भी खेल सके अपने आंगन में भी खेल सके यानी सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही जाकर क्यों, क्यों ना उनके ही वातावरण में उनके घर में उनके घर वाले इस तरह के खेल के लिए उन्हें प्रेरित करें और वो भी अपनी
मानसिक विकारों से दूर आए, है ना बेहतर।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ!
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
11: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
12: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
11: सच में? क्या खास है वहाँ?
12: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
11: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
12: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
11: और फोटोग्राफी वगैरह?
12: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
11: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
12: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
11: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
13: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
14: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
13: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
14: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
13: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
14: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन, एक ऐसा म्यूजियम, एक ऐसी जगह जहां हर एक पेड़ एक कहानी सुनाता है। जी हाँ, गुजरे हुए वक्त की। कहाँ है ये म्यूजियम और कौन सुनाते हैं कहानियां, चलिए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

नेचर और इतिहास को जोड़ता एक अनोखा म्यूजियम जहां हर एक पेड़ कहानी सुनाता है। जी हां, दरअसल इस म्यूजियम की सबसे खास बात यह है कि यहां सिर्फ दीवारों पर इतिहास नहीं लिखा गया है, यहां नेचर को ही यादों का हिस्सा दिया गया है। पूरे स्मृति वन में लाखों पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें बहुत बड़े मियावाकी फॉरेस्ट भी शामिल हैं। कहा यह भी जाता है ये भारत के सबसे बड़े मियावाकी फॉरेस्ट्स में से एक हैं, और हरियाली से भरी ये पहाड़ी आज उस शहर के लिए ग्रीन लंग्स बन चुकी है जिसने कभी विनाश की सबसे दर्दनाक तस्वीरें देखी थी। सो यहाँ बने 50 चेक डैम रिजर्व्स सिर्फ पानी बचाने के लिए नहीं हैं, इन पर उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। यानी यहाँ बहता पानी भी यादों को जिंदा रखता है। सो म्यूजियम को 7 इमर्सिव जोन्स में बांटा गया है, रीबर्थ, रीबिल्ड, रिलीव जैसे सेक्शंस आपको एक त्रासदी, लोगों का दर्द और फिर दोबारा खड़े होने की कहानी महसूस कराता है। यहाँ 5D अर्थक्वेक सिमुलेशन भी है जो लोगों को भुज के भूकंप के झटकों का एहसास कराता है। और सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि स्मृति वन सिर्फ तबाही को याद नहीं करता, ये इंसानी जज्बे, प्रकृति और उम्मीद के साथ फिर से जीना सिखाता भी है। यानी जहाँ कभी मलबा था आज वहाँ जंगल है, जहाँ कभी चीखें थी आज वहाँ पक्षियों की आवाज़ें गूंजती हैं। शायद इसीलिए म्यूज़ियम ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं बल्कि ये याद दिलाने वाली जगह है, और ये प्रकृति मिलकर सबसे बड़ा घाव भी भर सकते हैं। सो क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ मौजूद है? सवाल ये है कि अगर आपने इसके बारे में सुन लिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कहाँ मौजूद है? अगर हाँ तो चलिए फटाफट से कमेंट करिए और बताइए। फिलहाल इस गाने के बाद हम वापस से आते हैं, और आने के बाद आपके आए हुए मैसेजेस को पढ़ते हैं, साथ ही कुछ कॉन्टेंट्स भी आपने भेज रखे हैं जो कि हम तक आ गए हैं और हम वो अब आप तक पहुँचाने वाले हैं।

0: आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया। अगर अगर आप जानते हैं तो भाई बताइए कि आखिर हमने किस म्यूजियम के बारे में बताया। इतनी खूबसूरत सी बातें जो इतिहास और नेचर दोनों को जोड़ कर रखता है। फिलहाल अब आपको हम ले चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और उसके बाद आपके आए हुए कंटेंट्स की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद बताते हैं। अमित सिंह जी मुंबई से लिखते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। बहुत सही बात कही है आप। नागेश्वर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। जुनैद अहमद आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। मीनू जी आपका भी हम वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। और SS हैं, इसके बाद जो है प्रबल भी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। उस्मान खान मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी नाइस सॉन्ग। ना सुन पाई क्वेश्चन तो आंसर क्या दूं कोई बात नहीं, सो नेक्स्ट टाइम। ओके, अभी क्या है कि हमारे पास में आ गया है आप लोगों के कॉन्टेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं गुंजन जौहरी जी से, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। लिखती हैं कि याददाश्त कमज़ोर होना भी किसी वरदान से कम नहीं, सब कुछ याद रहना यहाँ किसी सज़ा से कम नहीं। कुछ बातें दिल के किसी कोने में बस जाया करती हैं, वो लम्हे फिर किसी भी दर्द की दवा से कम नहीं। जो ज़ख्म रूह तक उतरे कहाँ भर पाते हैं आसानी से, उसकी चुभन भी किसी गहरी सदा से कम नहीं। हम भूलना भी चाहें तो कहाँ मुमकिन है ये, हर याद तेरी जैसे दिल की खता से कम नहीं। कभी जो साथ था तेरा सुकून सा लगता था, अब उसका ना होना भी किसी सज़ा से कम नहीं। कि आंखों से गिरते आंसू भी चुपचाप कहते हैं, यह हाल दिल किसी भी इब्तदा से कम नहीं। हमने तो हंसकर जीना भी सीख लिया, मगर अंदर का ये सन्नाटा किसी भी सज़ा से कम नहीं। क्या बात है, बहुत खूब लिखा आपने, थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जो है मिस्टर आकाश नवदीप वेस्ट बंगाल से लिखते हैं कि जुगनू की टिमटिमाती रोशनी सिर्फ किस्सों में सिमटती जा रही है, जैसे कि हमने अंधेरे की अपनी आदत बना लिया हो। अर्ज़ है, जुगनू की टिमटिमाती रोशनी सिर्फ किस्सों में सिमटती जा रही, जैसे कि हमने अंधेरे को अपनी आदत बना लिया हो। गौरैया की चहचहाहट इस कदर खामोश होती जा रही है, जैसे हमने अपने ही आंगन में उसे जीने की इजाज़त ना मिल रही हो। और क्या देंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, सूखी ज़मीन, बुझती उम्मीदें और यादों में बची हरियाली की फीकी मिसालें। कि क्या देंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, सूखी ज़मीन, बुझती उम्मीदें और यादों में बची हरियाली की फीकी मिसालें। वक्त है अभी संभल जाए हम, वरना इतिहास हमें वही कहानियाँ सुनाएंगे जहाँ इंसान तो है मगर इंसानियत खो गई है। बहुत ही ज़्यादा खूब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी फ्रॉम नवदीप वेस्ट बंगाल। वर्षा कुमारी पायल जी लिखती हैं कि तुम्हें चाहना शोर जैसा नहीं, एक खामोश आदत सा है, जैसे चांद को देखकर मुस्कुरा देना, जैसे बिना वजह किसी की याद आ जाना। तुम मिले या ना मिले ये अलग सी बात है, पर तुम्हारा ख्याल ही दिल के लिए एक मुलाकात है। कुछ लोग मोहब्बत नहीं होते, बस सुकून होते हैं, और तुम शायद मेरे उस सुकून जैसे हो। वाओ, क्या बात लिखी है, थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यामिनी चौहान जी लिखती हैं, तेरे जाने के बाद जैसे वक्त ठहर ही गया, हर हंसी का मतलब अधूरा सा बिखर गया। लोग कहते हैं कि समय हर दर्द मिटा देता है, पर तेरी यादों का जख्म तो और गहरा हो गया। अब भी कई रातें तेरे नाम पर रो देती हैं, तेरी बातें मेरी तन्हाई में खो देती है। तो इस दुनिया में नहीं ये दिल मानता तो है, पर हर दुआ में आज भी तुझे मांग लेता है। शायद जिस दिन तेरी कमी महसूस नहीं होगी, जिस दिन ये आंखें तेरे लिए नम नहीं होंगी, उस दिन शायद मेरी रूह भी मर चुकी होगी, क्योंकि तेरे बिना जीती हुई सांसें भी जिंदगी नहीं होंगी। बाय गॉड, बहुत ही इंटेंसिवली लिखा गया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीता सिंह जी का है कि रिश्ते तो दुनिया में बहुत बनते हैं, पर दोस्ती का नाता सबसे अनमोल होता है। मुसीबत चाहे जैसी भी आन पड़े, सच्चा दोस्त हर वक्त हमारी ढाल होते हैं। वो शब्दों के मोहताज नहीं होते, बिन कहे दिल की हर बात समझ जाते हैं। हम लाख छिपाएं अपनी तकलीफ, वो हमारी आंखों से सब कुछ पढ़ जाते हैं। चाहे कितने भी फासले हों, पर उनकी केयर और परवाह कभी कम नहीं होती। पास अगर ऐसा सच्चा यार हो, तो फिर जिंदगी की राह में कहीं कोई गम नहीं होता। क्या बात है। नरेंद्र छाऊ जी का है कि दिल मेरा मौन है, शीशे में कौन है, हुस्न जमाल को निहारता ये कौन है, मोहब्बत का अंदाज है क्यों नया नया, वरना हर वक्त अक्श अपना शीशे को संवारता कौन है। क्या बात है, वाह वाह वाह वाह, बहुत कम शब्दों में बहुत ही गहरी बातें, थैंक यू सो मच। इसके बाद चलते हैं आज के लास्ट कंटेंट, यानी
कुंदन राज दत्ता उर्फ निश्चल जी की तरफ, जो कि लाए हैं ये ढलती शाम ये मखमली समा। लिखते हैं, ये ढलती शाम ये मखमली समा, तुम हो साथ और कोई नहीं है दरमियां। आसमां ने पहनी है नीली सिंदूरी चुनरिया, थम गई है जैसे इस वक्त की डगरिया। पहाड़ों की ओट में सूरज ने मुख छिपाया, सारे जहां ने बस तुम्हारा ही अक्स पाया। तुम मैं और बस ये ढलता हुआ दिन, हर लम्हा सलोना है तुम्हारे बिन गिन। तुम्हारे कांधे पर है टिका मेरा सर, जैसे मिल गया हो आवारा धड़कनों को घर। हवाओं में घुली है तेरी सांसों की महक, जैसे इस फिजा में उतरी है कोई चहक। खामोशियां भी हमसे जाने क्या कह रही हैं, मोहब्बत की लहरें सीने में बह रही हैं। नजरें बिछी हैं उस दूर के नज़ारे पर दिल है अटका बस तुम्हारे सहारे पर। इस साए में सिमट आई दुनिया सारी, कितनी खूबसूरत है ये शाम हमारी। न कोई सवाल न कोई जवाब है, ये हकीकत भी जैसे कोई ख्वाब है। अंधेरे की चादर धीरे से बिछ रही है, पर तेरी आंखों से नई सुबह दिख रही है। तारों ने भी अब बल्कि बिछाई हैं, इस ढलती शाम ने नई कस्में दिलवाई हैं। तुम्हारा साथ हो तो वक्त यूं ही ठहर जाए, ये दिल तुम्हारी ही महफिल में खो जाए। इस पल में ही मिल गई है कायनात मुझे, जब से मिला है इस शाम का साथ मुझे। ये शाम तो ढल के रात हो जाएगी, मगर यादें इसकी दिल में रह जाएंगी। तुमसे जुड़ा है हर रंग इस शाम का, यही हंसी किस्सा है सिर्फ तेरे नाम का। वाओ, बहुत प्यारा लिखा कुंदन राज दत्त उर्फ निश्चल जी, नरेंद्र छाव जी, पुनीता सिंह जी, यामिनी चौहान जी, वर्षा कुमारी पायल जी, आकाश जी और हमारी गुंजन चौहरी जी। बहुत लाजवाब आप लोग लिखते हैं, हम लोग का दिल खुश हो जाता है जब आपके लिखी हुई लेखनी को हम पढ़ते हैं और बाकी सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। कैसा लगा आज का शो? क्योंकि तारीफें बहुत हो गई है, चैट बॉक्स पर लिखा गया है जिन लोगों ने हमारे पास आज लिख करके भेजा था, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यूं ही लिखते रहिए, यूं ही जज्बातों को बयां करते रहिए और चलिए सुनते रहिए अपना गोंडा एफएम 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। वापस से मुलाकात होगी आपसे ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में। आपकी मॉर्निंग जौकार जिद्दनान हाजिर होंगे। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए 89.6 एफएम के संग।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति।

0: श्वेता, जिमी और हरिओम। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं पक्षी विहार की तरफ। समझ पाए कहाँ पे? जी हाँ, पक्षी विहार, यानी कि हम आज आपको सैर कराने वाले हैं बस्ती की। तो आइए हम बस्ती चल करके मधुर मधुर गीतों को सुनते हैं। अरे श्वेता, जिमी, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना अभी किरण दी आते ही सबकी वाट लगाएंगी। उनकी कॉल आई थी अभी और उन्होंने कहा है कि सब लोग मुझे तैयार मिलो, बस मैं गाड़ी लेकर के आ रही हूँ।
1: अच्छा भाई, तैयार हो रही हूँ, रुको जरा।
2: मैं भी कपड़े पहन रही हूँ, तैयार हो रही हूँ।
0: क्या हुआ श्वेता, क्यों नाराज हो भाई?
1: अरे रोज रोज आलू की सब्जी खा के बोर हो गई हूँ और अब बस

0: श्वेता, समता, जिम्मी सब तैयार हो? अरे आओ आओ जल्दी करो, वैसे ही देर हो गई है। चलो सब गाड़ी में बैठो।
1: किरण दी, हम लोग बस्ती किसके घर चल रहे हैं, कुछ बताएंगी?
2: हाँ दीदी, हम लोग बस्ती किसके यहाँ चल रहे हैं?
3: हाँ हाँ दीदी बताइए ना।
0: बस्ती में हम चल रहे हैं असनहरा गांव में, जो बस्ती जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। और पता है, वहाँ हमारी बड़की अम्मा का पूरा परिवार रहता है। अम्मा तो ठीक हैं, पर बप्पा थोड़ा पीते वीते हैं। अरे शराब भाई,

0: किरण दी, हम लोग चल के बप्पा को समझाएंगे कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल समझाएंगे।
2: दीदी आप बता रही थी एक बार कि आपकी बड़की अम्मा की बहू की शादी को 15 साल हो गए पर कोई बच्चा नहीं है।
3: हाँ जिमी, पर 15 साल बाद उनकी बहू गर्भ से है, उसी की गोद भराई है। कुछ गाना वाना तैयार है भैया, याद कर लो, अम्मा सुनेंगी जरूर।

0: किरण दी, श्वेता, जिम्मी, मैं एक बार बस्ती आ चुकी हूँ। मेरे दूर के दादाजी रहते थे, अब वो इस संसार में नहीं है, पर उन्होंने कुछ मुझे बताया था। मुझे याद आ रहा है कि बस्ती का नाम श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी के नाम पर पड़ा था, पर वशिष्ठ से बिगड़ते बिगड़ते बस्ती पड़ गया।
1: लो, पहुँच गए हम लोग असनहरा गाँव में। आओ आओ, सभी लोग आराम से उतरना।
2: श्वेता दी, जरा ये मिठाई का डब्बा और साड़ी का पैकेट पकड़ना।
3: वो देखो, बरामदे में बड़की अम्मा और उनकी बहू दोनों बैठी हैं। और बड़की अम्मा पाए लगी, कैसन बा अम्मा? आवा आवा बहिनी, सभे आवा, हम तो ठीक बानी, तोहरे लोग कैसन बा? अरे उठा दुल्हन, सबके गोड़ धरा, और ये सब तो हार नने दी बाटी।

0: और भाभी कैसी हैं? बड़े देर लगा दी भाई आपने नए मेहमान को लाने में।
1: दुल्हन तुहार भैया आए हैं, लावो सबका पानी धानी पियावा कि बस बतियावा करबा। लावा हमरे सब बिटियन का कुछ खवावा और सुनो अपने भैया से बादिम बतलाए उ जनिलो कि नाही।
2: माँ जी तो हमेशा भैया के ही पीछे पड़ी रहती है, जब वो यहाँ आते हैं इनका मुँह ही

0: अरे मामी जी, आप छोड़िए अम्मा जी को और ये बताइए कि आप कैसी हैं। अपना पूरा ख्याल रखिए 9 महीने तक और बहुत खुश रखिए। सारा बवाल ओवाल छोड़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, रामायण गीता वगैरह पढ़ा कीजिए ताकि बच्चे में अच्छे संस्कार आए। और आप तो पढ़ी लिखी है ना?
1: अरे दीदी, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ पर आपके भैया को मेरी कोई कदर ही नहीं। बस जब देखो अपने अम्मा के आगे पीछे घूमा करते हैं, बस अपने परिवार की ही सुनते हैं। मैं तो इनके लिए जैसे पराई हूँ जबकि मैं एमए पास हूँ।
2: हे बलम।

0: हे सुनीतवा, कहाँ बाटू रे? ते हमार खनवा निकाल दे, हम हाथ गोड़ धोए काई थे। हैं,
1: अरे आइए भैया, हम आपका खाना निकाल देते हैं। भाभी कुछ काम कर रही है। आइए आइए, बैठिए, ले लीजिए खाना,
2: और फिर चलो थोड़ा बस्ती घूमकर घर वापस चलते हैं।
1: हाँ हाँ चलो।
3: हाँ किरण दीदी।
1: अरे भाभी खाना ला रही है, चलो श्वेता हम लोग भी थोड़ा हाथ बटा ले।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं।
4: अरे अरे भाभी, रो क्यों रही है, क्या हुआ आपको? श्वेता दी, किरण दी, ये देखो क्या हो गया है, क्यों भाभी रो रही है?
3: अरे मैंने कहा था ना दीदी कि इनको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। जरा सा अम्मा को मैंने बोल क्या दिया कि अम्मा आज जरा जल्दी खाना खा लो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। बस आपके भैया ने तो मुझ पे हाथ ही उठाया, इनके साथ मेरा तो गुजारा ही नहीं है।
5: हरि सैया संग नाही गुजारा मलम।

0: बड़की अम्मा ये गलत बात है, ये तो ठीक नहीं है। आप भैया को समझाइए भाभी पर हाथ ना उठाया करें, और वो भी तब जब वो पेट से हैं। और इतने दिनों बाद आपके यहाँ ये खुशी आई है, घर का माहौल अच्छा रखिए, इसी से बच्चों में संस्कार जाते हैं अम्मा।
1: अरे दीदी माफ कह दीन जाए, आपके हम घोड़े गिरी थे, अब इनके ऊपर हम कब्बो ना हाथ उठाए क्रिया खाई थे।
2: चलिए किरण दी, देर हो रही है, घर पहुँचने में रात हो जाएगी।
3: चलिए चलिए सब लोग गाड़ी में बैठिए। अच्छा बड़की अम्मा पाए लागी।
4: चलो चलो सब, बड़की अम्मा पाए लागी।
2: किरण दी जानती हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ले जी, अरे हिंदी साहित्यकार, कथाकार, निबंधकार, कवि थे, जो बस्ती जिले के अगौना गांव में रहने वाले थे।
3: अच्छा।
2: और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, हिंदी नाटककार, उपन्यासकार थे, ये भी बस्ती जिले के जलालपुर गाँव से थे।
0: और क्या तुम लोगों को पता है, 1977 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित भी किया गया था।
3: समता दीदी तो हर जगह अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देती हैं।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

आफ्टरनून एवरीवन. भाई वक्त हो चुका है बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि भाई वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानस्थली लाइव का. और ज्ञानस्थली लाइव जब भी आता है आप जानते हैं कि लेकर आता है धमाकेदार इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का बहुत ही अच्छा डोज. साथ ही आज मैं आई हूँ आपकी आरजे आयुषी. अब आप सोचेंगे आरजे आयुषी मंडे को कैसे सरप्राइज देने आ गई क्या? हाँ जी बिल्कुल, सरप्राइज देने, क्योंकि भाई सरप्राइजेस का ही मंथ चल रहा है. आप देखिए ना, सरप्राइज हमें भगवान दे रहे हैं. कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी आंधी तूफान आ रहा है. उफ, भगवान ये करना क्या चाह रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता है. अब देखिए, मौसम तो बदल ही रहा है, लेकिन आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है. गोंडा का टेम्परेचर 40 डिग्री से भी पार जा रहा है. अब सोच लीजिए, इस मौसम में इंसान भुनेगा नहीं तो और क्या ही होगा. लेकिन देखिए, इसीलिए भगवान ने हमें इंसानी दिमाग दिया, यानी कि हमें बुद्धि दी है. अब देखिए, गर्मी तो होगी होगी और गर्मी से निपटना ये हमारे हाथ में. अब गर्मी से निपटने के लिए अब आप सोचिए कि अब मैं आपको एक सीधे से एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, गर्मी तो आजकल हर जगह हो रही है और जिन लोगों के घर पंखा नहीं है, जिन लोगों के घर एसी नहीं है, उनका हाल तो क्या ही हो रहा होगा, ये आप हम इमेजिन नहीं कर सकते. अब सोच लीजिए कि हमारे घर सब कुछ अगर बिजली ही नहीं है तो, है ना, थोड़ा सा अजीब. और थोड़ा सा अभी से ही आपके दिमाग में, जब आपने इमेजिन किया, आपके दिमाग में लगा होगा कि ये क्या ही सिचुएशन होगी. तो आज कुछ ऐसी रियलिस्टिक चीज़ों को हम लोग समझेंगे जो हमारे गोंडावासी फेस करते हैं, हमारे गांव देहात के लोग फेस करते हैं. साथ ही साथ आज हम बात करेंगे उनकी जिन्हें जाना है वेकेशंस पे. अब देखिए, सभी स्कूलों में समर वेकेशन का सीज़न चल चुका है, वेकेशंस चालू हो चुके हैं. बच्चे अपने नानी के घर, दादी के घर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. लेकिन इस एक्साइटमेंट के बीच में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक्साइटमेंट में हम लोग कपड़े, गहने, सब कुछ पैक कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ें हमेशा हम भूल जाते हैं. या जो लोग नानी और दादी के यहाँ नहीं जा रहे, जो किसी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं घूमने, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो वो भूल जाते हैं. वेल, मुझे एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी. देखिए, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने मना कर दिया है घूमने को, तो अब हमने समर वेकेशन कहाँ मनाएंगे? क्या उन्होंने घूमने के लिए इसलिए मना किया है कि उन्हें पेट्रोल बचाना है, या हमारी फिक्र है, या क्या रीज़न है? ये सब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर होंगे. आज आपकी कंफ्यूजन भी दूर करेंगे, साथ ही साथ आपके वेकेशंस को अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स भी देंगे. लेकिन अगर आप वेकेशंस पे नहीं जा रहे हैं, अपने ही घर है, कुछ बच्चे अपने इंटर्नशिप के पीछे लगे होंगे, कुछ लोग अपना घर बनवा रहे होंगे, कुछ लोग अपने ही घर में बैठ के आराम की ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन ये आराम की ज़िंदगी ख़राब करने का एक दुश्मन अभी भी हमारे साथ रहता है. पता है कौन? मैं बताती हूँ भाई, वो बिजली वाले भैया. जैसे ही आराम करने का टाइम आता है, पता नहीं इन्हें कहाँ से पता चलता है कि भाई अब ये इंसान आराम करने जा रहा है, और बिजली तुरंत काट लेते हैं. तो अगर बिजली चली जाए तो आप अपने आप को कैसे ठंडा कर सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते हैं, और कैसे इस गर्मी से खुद को बचा सकते हैं इन्जॉयमेंट के साथ साथ, यानी घूमिए तो है लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ. तो भाई आज का पूरा शो हमारा होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, यानी वेकेशन स्पेशल, समर स्पेशल कह लें, या फिर आप कहें कि आपके हित के लिए. तो भाई आज का शो आप ज़रूर से इन्जॉय करिएगा, और साथ ही साथ लेके बैठ जाइए कॉपी पेन की. कॉपी पेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हैं. जी हाँ, भुलक्कड़, क्योंकि आपको यही नहीं याद रहता है कि आयुषी जब भी आती है पानी पीने के लिए कहती है, और आपको हमेशा मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है. तो चलिए उठाइए बॉटल. अरे जल्दी उठाइए, आपके आसपास कहीं बॉटल रखी होगी, कहीं जग रखा होगा, और एक ग्लास पानी पीजिए. देखिए, पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको सभी कहते हैं, लेकिन आपको पता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्यास लगने पे पानी पीते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आपको ये एहसास होगा कि आपको प्यास लगी है, तब तक हमारी बॉडी 1% डिहाइड्रेट हो जाती है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आलस के चक्कर में जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तभी उठ के पानी पीते हैं, और तब भी ये सोचते हैं

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्त्री लाइव और आप एंजॉय कर रहे हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बिंदिया चमके चूड़ी खनके। देखिए ये गाना कहीं ना कहीं आपको पुराने जमाने, अरे ज्यादा पुराने नहीं, आज के 10 से 15 साल पुराने पीछे की याद तो आपको जरूर दिला दिया होगा, क्योंकि भाई ये वो गाना है जो जिसके बिना हर एक एक वेडिंग कैसेट अधूरी रहती थी और कहीं ना कहीं आपके घर भी कोई ना कोई ऐसी शादी ज़रूर हुई होगी जहाँ पे ये गाना ज़रूर चला होगा। तो हमने सोचा चलिए थोड़ी सी आपको पीछे ले जाए, यानी कि पुरानी यादों में ले जाए। अब पुरानी यादों की हम बात कर रहे हैं तो मैं भी आपको शेयर करती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें। देखिए जब हम सब बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत ज़्यादा क्योंकि कुछ साल हो गया है, लगभग 5 से 7 साल मैं अपने नाना घर बहुत कम जाती हूँ। और बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं हमेशा हर वेकेशन पे जाती थी, चाहे समर वेकेशन हो चाहे विंटर वेकेशन, एंड आई होप आप भी जाते होंगे। और मोस्टली लोगों का जो नाना का घर होता है, दादी का घर होता है, वो गाँव से ज़रूर जुड़ा होता है। अब देखिए कई लोग सोचेंगे कि हमेशा गाँव में ही नाना नानी दादा दादी का घर ही क्यों बताया जाता है। देखिए हम सारे इंडियंस हैं और इंडिया, हर कंट्री जो है कभी ना कभी अंडर डेवलप थी, फिर डेवलपिंग हुई, फिर धीरे धीरे करके वो आज इस कंडीशन पे पहुंची है जहाँ पे वो एक डेवलपिंग कंट्री में गिनी जाती है। लेकिन इंडिया कुछ साल पहले अंडर डेवलप थी जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा गांव होते थे, यानी कि विलेजेस होते थे। और बिल्कुल उसी तरीके से हम सभी का कोई ना कोई कनेक्शन गांव से ज़रूर होता है, हमारा जो ओरिजिन है वो गांव से ज़रूर होता है, हम लोग हमेशा गांव से जुड़े हुए होते हैं, भले ही हमें ना पता हो। लेकिन आप अगर अपने दादा दादी मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई हम कौन से गांव से हैं। अब बात अगर हम कर रहे हैं गांव की और वेकेशन की, तो देखिए वेकेशंस पे जब भी हम लोग गांव जाते थे तो कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती थी। अब देखिए जब मैं अपने नानी घर जाती थी, क्योंकि मेरी नानी का घर जो है वो है नवाबगंज में, और नवाबगंज में हमारा एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर हमारी एक बगिया है। और बगिया से मुझे याद आया, और आप सभी को याद ज़रूर आएगा कि जिन जिन के भी घर में बगिया है वो समर वेकेशन में बगिया का क्या रोल होता था वो तो शायद हम अपने ज़ुबान से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर दोपहर बगिया जाना, बगिया में खाद डाल के सोना और फिर आम तोड़ना, और सबसे बड़ी बात ऐसी कोई बगिया नहीं है जहाँ से कोई भूतिया कहानी रिलेट ना होती हो। इस सभी पर बात करेंगे, लेकिन वेलकम करती हूँ हमारे आज के गेस्ट की, मेरे साथ मेरी दो सहेलियाँ जुड़ी हैं जिनका नाम है संध्या और सुहानी।
1: जी हाँ, मैं जुड़ी हूँ संध्या, और आज मैं कुछ दीदी के साथ बैठकर कुछ बातें शेयर करूँगी गर्मी से रिलेटेड।
2: और मैं हूँ सुहानी, आपके साथ और दीदी के साथ मैं जुड़ी हूँ गर्मी की अच्छी अच्छी बातें बताने को।
0: बिल्कुल, अब देखिए अभी संध्या सुहानी बैठी थी तो गांव से जुड़े हुए काफ़ी सारी चीज़ें बता रही थी। ये बता रही थी कि गांव में एक बरम बाबा होते हैं जो कि हर पेड़ में होते, शायद
2: हर पेड़ में नहीं, सिर्फ पीपल के पेड़ में,
0: सिर्फ पीपल के। अच्छा, इसके पीछे की क्या कहानी होती है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी?
1: जी बिल्कुल, ये बरम बाबा ऐसी कोई चीज नहीं होती ना,
0: बरम बाबा नाम की कोई चीज ही नहीं होती,
1: नहीं
0: है।
1: होती,
2: वो तो डराने के लिए किया जाता है ना,
1: बस वो एक गलत फहमी होती है। ये जो दिमाग गांव के लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि ये जो पीपल का पेड़ होता है इसमें बरम बाबा होते हैं, तो इसीलिए लोग उसे काट,
2: बरम मतलब राक्षस,
1: क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, आम का पेड़ हुआ, ये सब पेड़ ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, तो लोग अगर इनको अगर लोग काटने शुरू कर दिए, काट रहे हैं तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो ही जाएगी, तो इसीलिए पहले के लोगों या हमारे बाबा दादा ने ऐसी भ्रांतियां बना दी कि इसमें पीपल के पेड़ में बरम बाबा रहते हैं, मीन्स राक्षस या फिर जो भी शैतान, जो भी मतलब जो जिस मतलब जिस सोच से सोचना चाहे कि ये क्या है,
0: मतलब बस हमारा एक ही मकसद रहता था कि पेड़ बचाना है।
1: हाँ, पेड़ बचाना है, तो पेड़ बचाने के लिए कोई मिस्ट्री तो डालनी जरूरी होती है, इसीलिए बाबा दादा ने डाल दिया कि इसमें बरम रहते हैं, तो उससे लोग डरते हैं कि अगर मैं इसे काटूंगा तो बरम मेरे ऊपर आ जाए, मुझे परेशान करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसीलिए लोग पेड़ को नहीं काटते कि इसमें बरम होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे सिंपल बात, उसमें पीपल के पेड़ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है।
0: ये बात तो आपने बहुत सही बताई और काफ़ी लोग इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि क्यों पीपल के पेड़ पे हमेशा एक भूतिया पेड़ हर, और ये जो कथा है ये कहीं ना कहीं हर गांव में होती है। अगर मैं अपने गांव की बात करूँ तो हमारे यहाँ भी एक पेड़ है जो बहुत ही बड़ा एक बरगद का पेड़ है। कहते हैं कि वहाँ पे हमारे यहाँ एक जो कोई लड़की होगी जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो फांसी ला के मर गई थी, इसीलिए वहाँ पे भूत रहता है।
2: उसमें बरगद और पीपल दोनों मिले होंगे। देखना
0: जी, उसके जस्ट पीछे ही है पीपल का पेड़।
2: हाँ।
0: तो मतलब ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही बताई कि ऐसा होता है, लेकिन आज भी जब अच्छा आप लोग कभी छुट्टियों में अपनी नानी दादी के घर गए?
1: हाँ बिल्कुल गए हैं। अरे मज़ा ही बहुत आता है वहाँ।
0: जैसे
1: जैसे मामी, जैसे आपने बताया ना कि बगीचा होता है। हाँ। तो सबके मामा के यहाँ एक बगीचा होता ही होता है। वैसे रियर केस में किसी के यहाँ ना, वो बात अलग की है, लेकिन होता ही होता है। एक तो सबसे बढ़िया वहाँ खेलने को मिलता है, जैसे लच्ची डाणी हम लोग तो बहुत ज़्यादा खेलते थे। और फिर वहाँ जब बगिया है तो इसका मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ छाँव रहती है, लोग जाते हैं उसके नीचे चटाई डाल के या चारपाई डाल के बैठते हैं। और फिर आम का सीज़न, मतलब गर्मियों का सीज़न, अरे आम और नमक और फिर जलजीरा के साथ में पूछो, दोपहर कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
0: अब भाई देखिए, बगिया में गए हम लोग समर वेकेशन में, आम तोड़ा और आम खाया नहीं, कच्चे आम का चटकारा नहीं लिया, तो शायद हमने समर वेकेशन इंजॉय की ही नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी दादी नानी जो होती थी वो आम जो होता है, जो कच्चा आम, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती थी, उसकी चटनी पिलाती थी, उसका शरबत बनता था, आम पना बनता था। और कभी कभी तो कच्चा ही आम जो है, जैसे भी मैं जानती हूँ कि हमारी ये सहेलियाँ भी कच्चा आम बहुत ज़्यादा खाती हैं।
1: अरे दीदी रहने दीजिए, मेरे मुंह में अभी पानी है।
0: तो ये जो कच्चा आम है ये भी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो आम होता है, कच्चा आम होता है, वो हमें लू से बचाता है, हमें गर्मी कम लगती है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि गाँव गाँव में जो है सुबह सुबह क्या होता है कि लोग खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं और दोपहर भर सिर्फ सोते हैं। ऐसा क्यों होता है?
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गांव के लोग की जो दिनचर्या है वो शहर के कंपेरिजन थोड़ी अलग है। जैसे शहर में क्या होता है, लोग सुबह लेट में सो के उठते हैं, और गांव में लोग जैसे पेरेंट हुए वो 5 बजे तक उठ ही जाते हैं, और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे वो भी 6 से 6:30 के बीच में उठ जाते हैं।
0: 6 बजे उठ जाते हैं यहाँ पे? हाँ, तो 6 बजे बच्चे उठना ही नहीं चाहते।
1: अरे यहाँ तो लोग 8 बजे शहरों में जल्दी नहीं उठना पसंद करते।
2: गाँव मतलब 6 बजे को दोपहर बताया जाता है, दोपहर हो गया अभी तक तुम
1: मतलब
2: सो रही हो।
1: धूप निकला है मीन्स दोपहर हो गई, पता चला 6:30 बजते गाँव में लोग चाय पी लेते हैं, 7-8 के बीच में लोग के यहाँ खाना बन जाता है, और लेटेस्ट टाइम 9 बजे तक लोग खाना खा लेते हैं। वैसे रेयर केस में 1-2 लोग को छोड़ के,
2: जो नहीं खाता वो ताना भी सुनता है।
1: पता चला किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो गई किसी दिन, वो खाना 9 से 10 बजे के बीच में बना रहा है। उस बीच में मोहल्ले की 2-4 लेडीजें, मतलब चाची बड़ी मम्मी, वो तो पता ही लगा रहे थे कि अरे इनके यहाँ भी खाना नहीं बना है भाई, दोपहर में खाना खाओगी क्या?
0: हाँ, ये कह के आपने जो है मेरे को, मेरे गांव की एक दादी है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, वो जो है उनका काम रहता है कि उनके घर में 4-4, 5-5 उनकी पतुआ है।
1: हाँ,
0: तो वो सारा काम कर लेती है। तो उनका काम क्या होता है, वो सुबह सुबह सबके घर में राउंड लगाती है।
2: हाँ,
0: तो आती हैं तो कहती हैं कि मतलब मेरे पापा का नाम सुरेंद्र है, तो कहती है अरे सुरेंद्र के अम्मा तो रही आप बहन बनाना है खानवा, और ऐसे करके हम लोग को बहुत ज़्यादा जज करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एक गाँव में एक ऐसी औरत रहती है,
2: उनका काम रहता है।
1: तो अगर उनको सैलरी, आपके गांव में ऐसी एक मतलब वहां दादी हैं, ऐसे मेरे गांव में, मतलब मेरे गांव में क्या, मेरे घर के सामने एक ब्राह्मण रहती है, मतलब उनकी ब्राह्मण की फैमिली रहती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: वो तो सुबह 4 बजे उठ जाती, शाम को वो 7-8, 8:30 बजे के बीच में वो सो गई, पूरी रात नींद ली, सुबह वो 4 बजे जग जाती हैं। अब उनके घर में भैंस है, बाकी और उनके 3 बहुएं भी हैं, तो वो जल्दी उठ जाती हैं, बस वो अपना दूध वाला काम जल्दी से लगा वगा के छुट्टी, नहा ली 5 बजे तक, वो नहा ली, अब 6 बजे तक उनके यहाँ खाना और चाय हो जाता है उनका। अब पता चला हम लोग 6 बजे उठते हैं तो कहेंगे वो देखो नरेंद्र की 4-4 लड़कियाँ हैं, और ऊपर से अभी ये लोग सो रही हैं, अभी सो रही हैं, बताओ धूप इतनी तेज़ निकल आई है। तो जैसे टोन आप आपको सुनने मिलता है ना, ऐसे हम लोग को भी मिलता है।
0: तो मुझे लगता है कि इन सभी बातों से हमारे काफी सारे लिस्टर रिलेट कर पा रहे होंगे, और लिस्टर अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो जल्दी से आ जाइए हमारी आज की गपशप में। और गपशप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आके भाई हमारे चैट बॉक्स में आइए और ये बताइए कि आप भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं। अब भाई जब हम बात वेकेशन की कर रहे थे तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कैसे भूल जाए। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि गाँव में तखत और बेड का इतना चलन नहीं है, हमारे यहाँ खाट का ज़्यादा, जिसे हम खटिया कहते हैं उसका चलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है क्यों? नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए गर्मी में स्पेशली जो खाट है उसका बहुत बड़ा यूज़ होता है, वो सिर्फ सोना ही नहीं होता है। देखिए गर्मियों में क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, क्योंकि हम लोग अगर थोड़ा सा भी तला भुना खा लेते हैं तो हमारे पेट में जलन होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, अपच हो जाती है बेसिकली। तो जो खटिया होती है वो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई खटिया घोल के थोड़ी ना पीता है। देखिए खटिया घोल के पीना नहीं है, इसमें खटिए पे सिर्फ आपको लेटना है, सोना है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप खटिया पे सोते हैं तो आपका जो पेट होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा होता है और आपका सर और पैर थोड़ा सा उठा होता है, यानी आपके पेट के लेवल से थोड़ा सा ऊंचे होता है। उससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है वहाँ पे और डाइजेशन अच्छा होता है, जिससे अगर आपने थोड़ा भी तला भुना खाया हो या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। और यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गाँव के लोगों को कभी भी अपच नहीं होती थी। और भी काफ़ी सारी डिटेल्स है जो आपको जाननी चाहिए गाँव से, और सबसे बड़ी बात वेकेशन से जुड़ी।
1: नहीं नहीं, अपच की बात कही तो मुझे भी एक बात याद आई। जैसे लोग शहर में लोग ज्यादा फास्ट फूड लेते हैं
0: जी,
1: इतना लोग गांव में नहीं लेते, इससे भी उनका थोड़ा डाइजेशन हम लोगों से मतलब शहर के इंसानों से ज्यादा उनका वहाँ का अच्छा रहता है
0: जी।
2: और खाट की एक बात है, नीचे से भी हवा आती रहती है
1: और उससे ये रहता है खटिए पे लेटने से एक फायदा और रहता है, हम लोग बेड पे लेटते हैं तो सीधे लेटे उस पे मोटे मोटे मतलब वो गद्दे उद्दे रहते हैं, और गाँव में एक पतली सी बिस्तर होती है, बस वो नाम का होता, बाकी कोई ज्यादा वो नहीं है। और उसके ऊपर से हम लोग मतलब वो बॉडी एक्सरसाइज भी हुआ करती है, मतलब वो लेटे हो तो उसके, हाँ जैसे आपने बताया उससे सबसे बेस्ट होती है खटिया गांव के हिसाब से।
0: और साथ ही साथ देखिए दोस्तों हमारे साथ जुड़ गई हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिस्टर जिनका नाम है मीनू जी, जो कि हमें गोंडा से ही सुनती हैं। उन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मीनू जी, साथ ही लिख रही हैं कैसी हैं आप सब। देखिए हम सब तो बहुत ही अच्छे हैं, और आपको हमारी बातों से भी देख के लग रहा होगा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आपको भी खुश करने के लिए आ गए हैं। साथ ही साथ ये लिख रही हैं कि मैम ऐसा हर किसी के यहाँ होता है। बिल्कुल, देखिए अब हमारी एक लिस्टनर तो आ गई जो रिलेट कर पाती हैं, और हमारे काफ़ी सारे लिस्टनर ऐसे हैं जो सुन रहे होंगे रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन भाई आलस इतना है कि वो आ ही नहीं रहे हैं चैट बॉक्स में। जल्दी से आइए, हाय हेलो सत श्री अकाल सब कुछ विश करिए, क्योंकि भाई दिन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका हो चाहे मेरा। लेती एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगी और बात करूँगी कुछ जानकारी की, क्या जानकारी है उस पर हम बात करेंगे, और अपनी दोनों सहेलियों से और भी ज़्यादा बात करेंगे, और आप ऐसे ही एंटरटेन होते रहें, साथ ही साथ एंजॉय करेंगे आज की बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपको कहीं नहीं जाना है, आपको लेना है एक छोटा सा पानी वाला ब्रेक, तो भाई पानी जरूर पीजिए क्योंकि डिहाइड्रेशन से हमें बचना है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: अरे सुना?
0: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई अब देखिए, गुड आफ्टरनून मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई देखिए आफ्टरनून हो रहा है और आफ्टरनून में जो हमारी हालत होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा बैड होती है। तो जब भी मिलिए गुड आफ्टरनून ज़रूर विश करिए कि भाई आफ्टरनून गुड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेकेशंस पे, गाँव पे और खूब सारी मस्ती मजाक की। अब जब मस्ती मजाक की बात हो ही रही थी, गाँव की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें भी बता दी जाए। देखिए जो लोग वेकेशंस का प्लान कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि फिलहाल तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मना किया है कि आप जो है ज़्यादा ट्रिप ना करें। उसका एक कारण ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल, जो हमारे भारत का ईंधन है, उसे बचाना है, क्योंकि पेट्रोल की कमी क्या हो रहा है, क्या अभी हमारे देश में चल रहा है, उससे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और हो सके तो घूमने से थोड़ा सा बचे। इससे पेट्रोल भी बचेगा और साथ ही साथ गर्मी से भी आप लोग बचे रहेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जिसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया है वो है फॉरेन ट्रैवल। तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो उसको करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है। उसके बाद अगर आप लोग कहीं भी वेकेशंस पे जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को ज़रूर से पैक करना चाहिए। अब उसमें कपड़े उपड़े तो है ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है कि वो आप ज़रूर पैक करें। देखिए भारत में अब एक ऐसा माहौल चल रहा है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, कि यूवी रेज जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, और स्किन पे अगर यूवी रेज ज़्यादा देर तक रहती है, ज़्यादा अगर एक्सपोजर में आप रहते हैं, तो आपको स्किन कैंसर जितनी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि ना तो सिर्फ अपना फेस बल्कि अपनी पूरी बॉडी पे अच्छे से सनस्क्रीन लगाएं, तब ही घर से बाहर निकले। इससे आपकी स्किन यंग रहेगी, आपको सन से प्रोटेक्शन मिलेगी, साथ ही साथ स्किन कैंसर होने का जो खतरा है वो भी कम होता जाएगा। अगर आपकी स्किन जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में आप विटामिन सी ज़रूर इंक्लूड करें। विटामिन सी के लिए आप नींबू का शरबत पी सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, या फिर आप अमरूद भी खा सकते हैं। देखिए अमरूद में संतरा और नींबू से ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो अगर आप लोग को अमरूद पसंद है तो आप अमरूद खाएं, संतरा पसंद है संतरा खाएं, लेकिन विटामिन सी ज़रूर कंज्यूम करें, जिससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आप खुद भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो अपने साथ आपको सनस्क्रीन के साथ साथ आपको ORS के भी पाउच आपको रखने चाहिए, क्योंकि भाई इमरजेंसी कभी भी हो सकती है इस ज़माने में, यानी इतनी गर्मी वाले ज़माने में काफ़ी लोग का इलेक्ट्रॉल जो है वो कम हो रहा है, काफी लोग बेहोश हो जा रहे हैं, एनर्जी की कमी हो रही है, तो आपको इलेक्ट्रॉल के पाउचेस जरूर रखने हैं। कोशिश करें कि आप छोटे छोटे वाले पाउचेस रखें, ज्यादा बड़े वाले नहीं, क्योंकि एक बार खुलने के बाद उसका थोड़ा सा असर कम हो जाता है। तो अगर छोटा पाउच रहेगा जो सिंगल टाइम यूज के लिए रहेगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको आप कोई ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पे मच्छर बहुत होते हैं, गीला बहुत है, तो आपको अपने साथ ओडोमॉस भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि भाई मच्छर काटने से आपको मलेरिया, डेंगू जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपको घूमने जाना है, घर में नहीं रहना, अगर आप घूमने के ही प्लान से जा रहे हैं तो आपको एक छाता ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए, और एक स्कार्फ जो कि हल्के रंग का हो वो भी अपने साथ ज़रूर पैक करना चाहिए, साथ में ज़रूरी मेडिसिन जिसमें आपको जो है आपको एसिडिटी के जो दवाइयाँ होती है, इनो हो गया, इसको आपको ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि जब आप घूमने जाते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है आप बाहर किसी होटल में खाना खाते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं तो भाई देखिए इंडियंस की ज़ुबान बड़ी चटोरी होती है, तुरंत ही तेल मसाला देख के मन करता है कि भाई बस जल्दी से ये हमारे मुँह में आ जाए, और जब आप खाएंगे उसको तो आपको मसाले की वजह से और गर्मी की वजह से एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ज़रूर से डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयाँ ज़रूर रखें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी को मतलब चक्कर आ रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन पसीना नहीं हो रहा है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी में कंसीडर होता है, आपको तुरंत आप जहाँ कहीं भी हैं आपको एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए, और एम्बुलेंस में जाके आपको देखिए मैं एम्बुलेंस इसलिए कहती हूँ, देखिए आप जा तो अपनी खुद की निजी गाड़ी से भी जा सकते हैं लेकिन जो एम्बुलेंस होती है वो सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इमरजेंसी की कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे अगर आप उससे आपकी जो हालत है उससे कंट्रोल हो सकती है तो आप बच सकते हैं। ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, कुछ एसेंशियल चीज़ें जो आपको ज़रूर पैक करनी चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं अगर आप अपने दादी नानी के घर जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब देखिए हमारे यूपी बिहार में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा फेमस है गर्मियों में, वो है गमछा। जी हाँ, गमछा जिसे हम अंगोछे के नाम से भी जानते हैं, और अगर आप यूपी बिहार आए हैं और आपको गमछा ना दिखे तो खा आप यूपी बिहार में आए हैं, यहाँ पे आपको हर सीज़न में अंगोछा या गमछा ज़रूर मिल जाएगा। हमारे यहाँ तौलिया यूज़ नहीं होती है, हमारे यहाँ गमछा ज़्यादा यूज़ होता है, हर अंकल के पास आपको ज़रूर मिल जाएगा। देखिए इसका एक फ़ायदा नहीं, इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर सबसे पहला मैं बताऊँ तो ये एक हमारी पहचान बन चुका है, दूसरा इससे आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा कम लगती है, क्योंकि देखिए गमछा नॉर्मली वाइट कलर में होता है जिससे जो सन रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, गर्मी आपको नहीं लगती है, और आपके पास अगर गमछा है तो उसे अपने गले में ही ना लटकाए बल्कि उससे अपने सर को ज़रूर कवर करें, क्योंकि ज़्यादा सन एक्सपोजर में अगर आपने सर को नहीं ढका है तो आपके नाक से खून आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं और आपकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। साथ ही साथ मैं चलती हूँ हमारे दोस्तों के पास और वो उनसे पूछती हूँ कि भाई गर्मी से बचने के लिए आप लोग और क्या क्या करते हैं। अरे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गर्मी आज मेरे दोस्तों को ही लग गई है,
3: दोस्तों को ही नहीं सबको लग रही है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन दीदी ने बताया सब दवाई तो भूल गई, लेकिन वो उल्टी की दवा बताना भूल गई, तो मैं बता रही हूँ वोमिटिंग की दवा जरूर रखिएगा आप लोग। बाकी तो दीदी ने सब बता ही दिया है कि लाइट कपड़े पहने, लाइट खाना खाएं, जैसे और खीरा तरबूज ये सब तो मैम ने सब बता दिया कि ठंडी चीजें सब ज्यादा खाओ।
2: लेकिन आप एक चीज भूल गई जो हमारे यूपी बिहार में बहुत ज्यादा होता है गर्मी से बचने के लिए।
3: क्या?
2: और आई एम सो श्योर कि आपकी मम्मी पापा ने भी आपको वो पैक करके जरूर दिया होगा,
3: सत्तुआ।
2: जी हाँ सत्तू। अच्छा आप लोगों में से हम सब सत्तू जानते हैं लेकिन हम लोग सत्तू बनाने की प्रक्रिया नहीं जानते, आप लोगों में से पता है किसी को?
4: मैम मुझे खाना पता है
3: हाँ उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल काम है एक हिसाब से, क्योंकि उन्हें भूनना पड़ता है फिर पीसना पड़ता है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट वाला काम है, लेकिन खाने में उतना ही मज़ा देता है जितना भी मतलब डिफिकल्टी होती है करने में उसमें।
2: बिल्कुल। तो भाई अगर आप यूपी में रहते हैं या आप यूपी से बाहर कहीं भी रह रहे हैं तो आप सत्तू का ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए जो सत्तू होता है वो आपके पेट को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, और इसे खाना भी इसका जो कंजप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इजी रहता है। क्या करना है आपको, बस एक ग्लास ठंडा पानी लेना है, उसमें दो चम्मच सत्तू घोलना है, आप चाहे तो उसमें मिर्च और नींबू नमक डाल सकते हैं, या कई लोग उसे मीठा भी घोल के खाते हैं,
4: गुड़ डाल के
2: खाते हैं, और गुड़ भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
3: यस मैम। मैम अब तो मेरा मन कर रहा है मैं सतुआ खाऊं।
2: तो बिल्कुल खाना चाहिए। देखिए हमें आप ही नहीं बल्कि मुझे भी और हम सभी को, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हो, उन्हें सत्तू का जो है यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए सत्तू जो लोग नहीं घोल के नहीं पीते हैं तो भाई सत्तू की कई सारी रेसिपीज़ भी बनती हैं, जैसे कचौड़ी हो गया, भौरी जो होती है हमारे यहाँ जो लिट्टी चोखा होता है, उसमें भी सत्तू भरा जाता है, सत्तू का पराठा भी बनता है, कई सारे ड्रिंक्स भी बनते हैं, तो आप उसको किसी भी रूप में कंज्यूम कर सकते हैं। बस वो ये है कि आपको उसको कंजप्शन जो है थोड़ा सा बढ़ाना है। अगर आप सत्तू नहीं खाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है जो भारी अनाज होते हैं या जो ठोस अनाज होते हैं उनका कंजप्शन आप गर्मियों में अच्छे से करें, लेकिन मिर्च मसाले के बगैर, जिसमें हमारा गेहूँ आता है, जौ आता है, चना आता है, और ये जो अनाज होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके पेट को भर के रखते हैं, जिससे जो गर्मी से होने वाली आपकी प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है।
3: रायता तो जरूर खाएं, चाहे वो खीरे का हो या लौकी का, रायता तो बनता है।
2: अच्छा, रायते से मुझे याद आया कि हमारे गांव में आज भी एक चीज बहुत ज्यादा होती है, आप लोग में से कोई बता सकता है?
3: लौकी?
2: नहीं नहीं, अरे आप जब किसी के यहाँ जाएंगे गांव में, आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे तुरंत देंगे, अरे भाई जाओ जाओ शरबत लेकर आओ।
3: शरबत,
2: देखिए हम सभी ने नदिया के पार मूवी जरूर देखी है, और उसमें एक बहुत ही बड़ी चीज है कि जब भी कुंदन अपने जो है भाई के ससुराल जाता था तो उसे शरबत जरूर ऑफर हुआ करता था। अब आप शरबत में जो मिर्च घोल के मत दे दीजिएगा गुंजा की तरह, लेकिन आप शरबत कंजप्शन आपका बढ़ना चाहिए। शरबत क्या करता है, ये आपकी बॉडी को ठंडा रखता है, और कहीं ना कहीं उसके जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कई लोग नींबू लेते हैं, तो नींबू आपकी बॉडी में विटामिन सी स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही साथ अगर किसी घर में नींबू ना हो तो क्या यूज़? वाला
3: दही का, बेल का शरबत, सब ये सब शरबत तो कॉमन है।
2: दही का शरबत कैसे बनता है?
3: दही का शरबत सिंपल है, चीनी डालो, पानी डालो, दोनों को अच्छे से मिक्स करो, और लास्ट में दही डाल के फिर सबको दे दो, आराम से पिए।
2: तो भाई आजकल के इस कोल्ड ड्रिंक वाले ज़माने को, जो लोग कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप ये सारी ड्रिंक्स जो कि हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा पी जाती है, इसको ज़रूर से ट्राई करें और अपने इस समर को अच्छा बनाएं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जब समर वेकेशन चल रहे हैं या कोई चीज़ की छुट्टी है तो हम नई नई चीज़ें सीखें।
3: और मैम,
2: हाँ,
3: और एक शॉप का भी शरबत होता है,
4: शॉप
2: सौफ का।
3: हाँ,
2: अच्छा ये कैसे बनता है?
3: वो भी जैसे लोग नींबू डालते हैं वैसे सौफ डाल लेते हैं, चीनी पानी मिक्स करो और सौफ को पीस के उसमें डाल दो, फिर छान के आराम से पी लो। सौफ का भी शरबत मेरे पापा बहुत पीते हैं।
2: अच्छा, हाँ। तो अब जो है ये इतनी सारी चीजें जो है मेरी सहेलियों ने आप सबको बताया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गर्मियों का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आराम करें, बल्कि आप नई नई चीजें सीखें। लेकिन बात ये फंस जाती है ना कि जब हम नई चीज़ों को सीखने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कोई विदेशी कंट्री की कोई चीज़ सीख ले, कोई टेक्निकल चीज़ें सीख ले, लेकिन जो अपनी रूट्स है, कल्चर है, जो कल्चरल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन भाई हमारे दादी नानी के ज़माने की चीज़ें, जो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है, वो जानना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समर वेकेशन इन सारी चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, ज़रूर समझें हमारे उत्तर प्रदेश की चीज़ों को, और अपने आपको कूल डाउन रखने का, हेल्दी रखने का देसी नुस्खा जरूर ट्राई करें। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारा आपसे विदा लेने का। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर से आके अपना फीडबैक चैट बॉक्स में दें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप अपने आप को कैसे गर्मियों में ठंडा रखते हैं। मैं एसी और कूलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं देसी नुस्खों की बात करती हूँ। लेते हैं आपसे विदा, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप आइंदा अपना ध्यान रखेंगे और इन देसी नुस्खों को ज़रूर यूज़ करेंगे।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? क्या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

0: जिंदगी के साथ है जुड़ी सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी, जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: नमस्कार मेरे सेहतमंद साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे आकांक्षा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके आरजे अदनान। हम फिर हाजिर हैं एक नए जोश नई उमंग और नई जानकारी के साथ आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, क्योंकि जब सेहत होगी फिट तो खर्च जाएंगे मिट।
0: बिल्कुल सही कहा, तो चलिए खोलते हैं सेहत के वो राज जो ना सिर्फ बीमारियों से बचाएंगे बल्कि आपकी जेब को भी देंगे चैन की सांस। सेहतिया सिंह और टीकन भाभी के साथ।
2: अरे अरे अरे अरे, एक मिनट, मैं तो बताना ही भूल गई कि टीकन भाभी और सेहतिया भैया तो आज लाभांत्री को लेकर टीका लगवाने गए हैं पास के PHC में।
3: आज शायद वो हमसे बात करने स्टूडियो नहीं आ पाएंगे।
0: अरे तो कोई बात नहीं, आज हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, पर उससे पहले मैं सुनाना चाहूंगा आपको एक कहानी। एक युवा दंपत्ति की कहानी जो अपनी नन्ही सी बिटिया के साथ एक गांव में रहते थे। क्योंकि खुशहाल जिंदगी थी उनकी, बड़े ही प्यार से रखते थे वो अपनी उस बच्ची को। हर सुबह माँ बिटिया के बालों में तेल लगाती, चोटी बनाती और फिर पिता खुद अपने हाथों से उस बच्ची को नाश्ता खिलाते। पर एक दिन बिटिया को तेज बुखार हो गया। पहले तो दंपत्ति ने सोचा शायद ये मौसम का असर होगा, लेकिन अगले ही दिन बच्चे की सांसें उखड़ने लगी। गांव के डॉक्टर ने जांच की और बताया न्यूमोनिया है। फिर पूछा कि क्या आपने टीका लगवाया था। माँ और पिता चुप।
2: बस वही चुप्पी बन गई उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, क्योंकि कई बार जो बीमारी हमें दिखती नहीं वही सबसे घातक साबित होती है, और उनकी ये चुप्पी उनके बच्चे की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बन गई।
0: बिल्कुल, और कई लोग तो कहते हैं कि टीकाकरण की आखिर क्या जरूरत होती है, पर सच तो ये है कि कई बीमारियां चुपचाप आ जाती है और वो बीमारियां होती है जानलेवा,
2: जैसे कि मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो। मीजल्स से निमोनिया और दस्त जैसी जटिलताएं हो सकती हैं और पोलियो से जीवन भर की लाचारी। हेपेटाइटिस बी से लीवर फेल हो सकता है। रुबेला गर्भवती महिलाओं के बच्चे में जन्मजात दोष ला सकती है। रोटा वायरस बच्चों में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बनता है।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम 12 खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीके देता है, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, टीबी, हेपेटाइटिस बी, HIV, निमोनिया, रोटा वायरस और जैपनी इंसेफेलाइटिस।
2: और याद रखिए, 5 साल 7 बार पहला टीका जन्म के समय, फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, 1.5 साल और 5 साल पर।
0: बिल्कुल, और अगर इनमें से एक भी टीका छूट गया तो सुरक्षा की दीवार कमजोर पड़ जाती है और बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है।
2: पर भैया, अब भी सवाल तो कई हैं। अगर कोई टीका छूट जाए तो, अगर बच्चा उस दिन बीमार हो, क्या प्राइवेट में टीका लगवाना बेहतर है? और वो जो कहते हैं कि सरकारी सुई में दर्द ज्यादा होता है, उसका क्या? और क्या टीकाकरण के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल हैं आपके, और जिसका जवाब भी जरूरी है। इसी सोच के साथ मैं और आरजे आकांक्षा कल पहुंचे थे एक खास वर्कशॉप में, और हमारे सारे सवालों का जवाब देने वहां कई एक्सपर्ट्स मौजूद थे। तो पेश है स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर अजय गुप्ता, राज्य टीकाकरण अधिकारी, डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण NHM, डॉक्टर दीप ठक्कर, उप निदेशक UPTSU, डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, WHO NPSP, डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज और डॉक्टर आशीष मौर्य, JSI। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो अब वही बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं, कानों को खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात है आपके बच्चे के सेहत की।
4: 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा की बात करें तो आप जानिए इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसमें ये क्लियर कट दिखाई पड़ता है कि हम लाखों करोड़ों बच्चों की जान इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से हम बचा पाते हैं। ग्लोबली देखा जाए तो जितनी हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, वैक्सीन लगाने से हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के अगेंस्ट में काम करते हैं और इनसे हम जान बचाते हैं बच्चों की। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो जितनी भी हमारी बच्चों की उम्र है वो लंबी होती है और साथ में एक हेल्दियर लाइफ जीते हैं, बीच बीच में बीमार नहीं पड़ते हैं, जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं इनकी वजह से। अगर विजन की बात करें कि किस तरह से हम इन्वेशन एजेंडे की विजन को देखते हैं, तो वर्ल्ड का कोई भी आदमी किसी भी एज का हो, उसको कहीं भी किसी भी प्लेस पे इसकी वैक्सीन से पूरी तरह से उसको लाभ होना चाहिए, जिससे वो एक अच्छी गुड और हेल्दी लाइफ जी पाए। इम्पैक्ट यह होता है कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इससे डिक्रीज करती है। मॉर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर कम हो जाता है, और साथ ही मॉर्बिडिटी का मतलब कि बीमारी से होने वाली चीज़ों से जो बचाव है या फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे वो होता है, उससे बेनिफिट मिलता है हमको, उससे हम बचा पाते हैं। साथ में ये भी हमारा एक इम्पैक्ट आता है कि कोई भी बंदा हमारा, कोई भी बच्चा कहीं से भी छूट ना रहा हो कोई भी वैक्सीन लगवाने से। इस बात के लिए हम पूरी तरह से एसेस देते हैं। कोई जेंडर इक्विटी का मामला होता है, कभी हम बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं, और ओवरऑल इंश्योर हमको यही करना है कि सभी के लिए एक अच्छी हेल्दी वेल बींग लाइफ कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो तो उसको मिलना चाहिए। इंडिया के अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो UIP, बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारा, उसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो गोल है कि मोर देन 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। दूसरा गोल हमारा होता है कि अभी रिसेंटली हम लोग काम कर रहे हैं कि मीजल्स रूबेला जो एक बीमारी, जैसे आप जानते ही होंगे कि स्मॉल पॉक्स हम लोग इरिटेट कर चुके हैं बहुत पहले ही, MR, इसी तरह से मीजल्स रूबेला भी एक खतरनाक बीमारी है जिसके कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बच्चों में होते हैं। तो आप रिसेंटली देख लेंगे बहुत ही कम इस तरह की बीमारियां आती हैं। जिनको एलिमिनेशन की बात करते हैं 2026 तक, इनकी बात कर रहे हैं। साथ में जो अभी 2013 में हम पोलियो फ्री हो चुके हैं पूरे मतलब अपने इंडिया से, बट अभी भी देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मुल्क हैं, उनके अंदर भी अभी पोलियो के केसेस पाए जा रहे हैं। तो उस चीज की स्टेटस अपने इंडिया के अंदर जो पोलियो फ्री स्टेटस, उसको मेंटेन करना। रिसेंटली पहले आपने देखा होगा बचपन में कई बार हम लोग देखते थे कि कुछ एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बच्चे अमूमन वो धनुष टंकार की बीमारी होती जिसको न्यूनेटल टेटनस कहते हैं, उनसे काफी कुछ बच्चे हमारे काल कवलित असमय हो जाते थे। तो इस तरह की जो मैटरनल और न्यूनेटल टिटनेस है उनको एलिमिनेशन की जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक मिनिमम लेवल पे ही रखना इसकी वैक्सीनेशन से। उसके अलावा जो AFI सर्विलेंस है उसको भी हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। एक ऑब्जेक्टिव UIP का ये भी है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी एक सपोर्टिव सुपरविजन होनी चाहिए, सो देट कि ये दिखाई पड़े कि जो हमारी NM हैं, जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, अच्छी तरीके से वैक्सीन लगा रहे हैं, प्रॉपरली लगा रहे हैं। अगर कहीं कुछ कमियां पाई जा रही हैं तो उनको हम ऑन द स्पॉट उनको ट्रेन कर पाएं, अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा है तो हम उनको रीट्रेन कर पाएं। और जो हमारा UIP प्रोग्राम है, अब तक आप लोगों ने देखा होगा, अब तो हमारे मोबाइल्स में सारी उसकी माइक्रो प्लानिंग होती है, उसके अलावा डिजिटलाइज कर चुके हैं हम लोग सारे के सारे अपने उसको। और अगर ज़रूरत है फील्ड के अंदर या कहीं भी, तो केस बेस्ड स्टडी के बाद या फिर

से कहना चाहेंगे कि जो भी टीकाकरण हम बच्चों के लिए या गर्भवती माताओं के लिए कर रहे हैं, ये पूर्णतः सुरक्षित है और ये उनके स्वास्थ्य के वर्धन के लिए, यानी कि उनको जीवित बनाए रखने के लिए, उनको किसी बीमारी से बचाए रखने के लिए, उनको अच्छा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। रही बात वैक्सीन्स कैसी हैं, तो वैक्सीन्स की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं किया जा रहा है। वो मैन्युफैक्चरर से लेके बेनिफिशरी तक, चाहे वो शिपमेंट हो रहा हो बड़े लेवल पर या फाइनली ब्लॉक लेवल से किसी आउटरीच सेशन साइट पर शिपमेंट हो रहा हो, इन सभी पर वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है, जो तापमान है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए इवन नेटवर्क भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और इस नेटवर्क से हम कहीं पर भी कोल्ड चेन के ब्रेक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ, या स्टोरेज कहाँ कितना हो रहा है, ये भी हमें पता है। तो इस तरह से हमारी वैक्सीन्स बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही किफायती, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस वजह से जो हमारे बच्चे हैं या गर्भवती माताएं हैं उनके लिए आसानी से उपलब्ध है। अब मैं बात करूंगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, जिनसे कि हम टीका लगा रहे हैं वो क्या तालिका है और किन किन बीमारियों से हम बचाते हैं। तो अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ का पता चलते ही पहला टीका लगवा लेती है और 1 महीने बाद दूसरा टीका लगवा लेती है, तो गर्भावस्था में टिटनेस और डिप्थीरिया, इन दोनों बच्चों, दोनों बीमारियों से वो स्वयं भी सुरक्षित रहती है और उसके बाद उसका जो बच्चा है वो करीबन 6 सप्ताह का समय तक सुरक्षित रहता है। 6 सप्ताह के बाद हमारा वैक्सीनेशन बच्चे के लिए स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला एक बार प्रेगनेंसी में पूरा टीका करवा लेती है और विद इन स्पैन ऑफ 3 ईयर्स दोबारा उसको प्रसव होना है, तो हम टीडी बूस्टर देते हैं, तब हमें 2 बार टीके लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र एक टीका लगाना पर्याप्त है और ये गर्भ का पता चलते ही लग जाना चाहिए और इस टीके को हम बूस्टर का नाम देंगे और इस तरह से उसका टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है। बच्चों में अगर टीकाकरण की बात करें तो बच्चों में एट बर्थ जो हमारी इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज हैं, जो अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, दोनों ही स्थानों पर BCG जो टीबी का टीका है, इसकी पहली डोज, हेपेटाइटिस बी की 0 डोज, यानी कि बिल्कुल चूंकि जन्म के समय ही लग रही है और इसको शून्य इसलिए भी कहा जाता है कि ये 24 घंटे के अंदर ही लग सकती है। तो अगर बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में और वहीं पर उसको 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी की 0 डोज दे दी जाए, तो इसका फायदा यह होगा कि अगर खुदा न खास्ता मां को हेपेटाइटिस बी पहले से भी बीमारी है, तो बच्चे में ये ट्रांसमिट नहीं होगी। इसी तरह से तीसरी जो ओपीवी की डोज है वो हम देते हैं, और ये सारे टीके बच्चे के डिस्चार्ज होने से पहले, मां के डिस्चार्ज होने से पहले अस्पताल में ही लग जाने चाहिए और बेहतर है कि लेबर रूम में ही या पीएनसी वार्ड में पहले 24 घंटे में ही ये टीके लग जाए। अगर किसी भी कारण से ये टीके वहां पर नहीं लगे हैं, देन वी रिकमेंड की BCG का टीका तो आप साल भर तक लगवा सकते हैं, बीओपी भी 15 दिन तक लग सकती है, अन्यथा फिर जो ओपीवी हमारी टीकाकरण में लगती है कार्यक्रम में वो लगेगी, लेकिन हेपेटाइटिस बी का टीका फिर आप नहीं लगवा सकते। जिन बच्चों को जो घर पे पैदा हुए हैं या ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां पर टीकाकरण नहीं हो पाया है, तो हम उन बच्चों को सीधे 6 सप्ताह की आयु पर 5 टीके देते हैं, और 5 टीकों में ओपीवी जो पोलियो वैक्सीन है, पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल IPV जिस पर बात की थी डॉक्टर अजय ने उसकी फर्स्ट डोज, रोटा वायरस वैक्सीन की डोज और PCV, ये 5ों टीके हम 6 सप्ताह पर देते हैं। 6 सप्ताह के बाद 4 सप्ताह के अंतराल पे, यानी कि 10 सप्ताह पर हम 3 टीके देते हैं, BOPV2, Penta2, RVV2, और 14 सप्ताह पर फिर वही 5 टीके की नेक्स्ट डोज मिल जाती है जो 6 सप्ताह पे लगाए गए थे, यानी कि ओपीवी, पेंटा, FIPV, RVV, PCV। 9 से 12 महीने पर हम मीजल्स और रूबेला का एक टीका देते हैं, विटामिन ए की खुराक पिलाते हैं, जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो प्रदेश के ईस्टर्न यूपी में वो काफी प्रभाव रखता है और करीबन 42 जिलों में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो वहां पर जैपनीज इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज देते हैं। पीसीवी का बूस्टर भी हम देते हैं, जिस डोज को हम फर्स्ट और सेकेंड डोज को 6 और 14 सप्ताह पर दे चुके हैं, उसका बूस्टर हम PCV का देते हैं, और इसी तरह से FI

0: आईपीवी जो है, फ्रैक्शनल आईपीवी है, उसकी भी थर्ड डोज देते हैं। तो इस तरह से 9 से 12 महीने पर हम टीका देते हैं, और अगर बर्थ डोज से लेके 9 से 12 महीने तक के ये सारे टीके किसी बच्चे को मिल जाए तो इस बच्चे को हम पूर्ण प्रतिरक्षित भी कहते हैं, यानी कि 1 साल से कम उम्र के जितने भी टीके लगने हैं, यदि वो सारे टीके इस बच्चे को मिल गए हैं तो हम बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित फुल्ली इम्यूनाइज कहते हैं। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है। 16 से 24 महीने पर बूस्टर्स की नेक्स्ट डोज, यानी कि डीपीटी का बूस्टर, बीओपीवी का बूस्टर, मेजल्स रूबेला की सेकेंड डोज, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की सेकेंड डोज और विटामिन ए, ये सभी हमें देना होता है। और इसी तरह से 5 से 6 साल पर हम डीपीटी का सेकेंड बूस्टर देते हैं, उसको कवर करता है। यानी कि अगर 5 साल की उम्र तक 7 कॉन्टैक्ट्स में और हर कॉन्टैक्ट में ये सारे टीके लग जाए तो बच्चा काफी हद तक सुरक्षित है, और ये जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं ये या तो बिल्कुल नहीं होंगी, और अगर हो भी जाएंगी तो उनका जो खतरा है, जो उनका उनकी धार है, उनकी जो पैनापन है, जिसकी वजह से बच्चे की मौत तक हो सकती है या बच्चे को हॉस्पिटलाइज रहने की नौबत आएगी, वो सब कम हो जाएगा। फिर हम 10 और 16 साल पर TD10 और TD16 देते हैं। ये सभी लड़के और लड़कियों को जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, 10 साल के और 16 साल के, हम उनको दे रहे हैं। मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि अगली 24 तारीख से, यानी कि 24 अप्रैल से जब इम्यूनाइजेशन वीक भी शुरू हो रहा है, 10 मई तक हम लोग पूरे प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले 10 साल और 16 साल के जो बच्चे हैं, जो कि क्लास 5 और 10 में आमतौर से होते हैं, उन सभी बच्चों को TD10 और TD16 का टीका लगाने जा रहे हैं। ये पूरी कैंपेन पूरे प्रदेश में होगी कि हम केवल अस्पतालों में ही टीका नहीं लगा रहे हैं, लगभग 92% जो टीके हैं, जो सत्र हैं, वो हमारे VHND विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज में हो रहे हैं, जो आउटरीच सत्र हैं। और शहरों में भी यही है, शहरों में भी हम अपने PHC, CHC और जिला अस्पताल के अलावा कई घरों में, कई मोहल्लों में कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, सेशन साइट्स हैं, वहां पर टीकाकरण कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 92% तो आउटरीच के सत्र होते हैं, लगभग 5.4% सेशंस जो हैं वो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, मेडिकल कॉलेज या और भी जो सब सेंटर्स वगैरह हैं, हम वहां पर करते हैं। 2.5% अन्य स्थान हैं और 0.5% प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो योगदान है टीकाकरण में वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो संस्थागत प्रसव शहरों में हो रहे हैं या जो एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं उनके टीके वहां पर लग रहे हैं, तो हम उनसे भी संपर्क में रहते हैं और जो भी उनकी रिपोर्टें उसको भी शामिल करते हैं, टीका लगाते हैं। तो हम अभी WHO के आंकड़े में आपको दिखा रहा था कि 24-25 में लगभग 83% बच्चे तो फुल्ली इम्यूनाइज थे, लेकिन रिमेनिंग जो 17-18% बच्चे हैं वो हमारे पूरी तरह से प्रतिशत नहीं है। उनमें से कुछ तो लगभग 1-2% ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई टीका लगवाया ही नहीं। हो सकता है वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन के हों, हो सकता है वो विरोधी परिवार हों, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई टीका नहीं लगवाया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शुरुआती डोज लेने के बाद, चाहे वो बर्थ डोज मिली हो, चाहे वो 6 सप्ताह पर मिली हो, उसके बाद उनका टीकाकरण कंटिन्यू नहीं हो पाया और दे आर पार्शली इम्यूनाइज, वो अधूरा टीकाकरण है। और ये अधूरा टीकाकरण, या जिन बच्चों ने बिल्कुल भी टीकाकरण नहीं लिया है, जब उनके परिवारों से बात हुई कि क्या कारण है कि आपने टीकाकरण नहीं करवाया है, तो कई कारण निकल के आए। कुछ ने कहा सर हमसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, लगभग 25% ने कहा कि हमसे किसी ने संपर्क ही नहीं किया। 33% ने कहा कि सर हमें टीकाकरण के बाद कुछ दुष्प्रभाव हो जाते हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उनकी वजह से डर लगता है, बुखार आ जाता है, दर्द हो जाता है, रात भर बच्चा रोता है, तो ये कुछ कारण है, कहीं फोड़ा ना हो जाए, तो ये तकलीफें हैं, इसलिए हम बच्चे को टीका नहीं लगवाते। कुछ बच्चे यात्रा में होते हैं, कहीं गए हुए थे, मौके पे नहीं थे, शादी ब्याह में चले गए थे, कुछ बहुत खुलेआम मना कर देते हैं कि सब बीमार वगैरह हम कुछ नहीं, हम तो टीका लगवाएंगे नहीं, हमारे खानदान में किसी ने नहीं लगवाया। कुछ में अवेयरनेस गैप है, उनको बताया तो गया टीका लगाने, लेकिन उनको इतना नहीं लगता कि उनके लिए 3 बार लगाने की जरूरत है, एक बार टीका लग गया अब बाकी कंप्लीट करने की क्या आवश्यकता है। कभी कभी हमारे भी ऑपरेशनल गैप्स हो सकते हैं कि हम जहां सत्र लगाना था एनएम बीमार हो गई, वो नहीं लगा पाई, या और कोई कारण है, बाढ़ आ गया, तो ऑपरेशनल गैप्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है उन बच्चों का जो पार्शली इम्यूनाइज हैं या अनइम्यूनाइज हैं। बट मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को भी हमने टीकाकरण नहीं किया है, यानी कि जो अनइम्यूनाइज हैं या जो पार्शली इम्यूनाइज हैं, जिनको पूरा टीकाकरण नहीं मिला, वो खतरे में है। और न केवल वो स्वयं खतरे में है, बल्कि अपने आसपास के और बच्चों में भी टीका न लगने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके प्रसार को करने में योगदान देते हैं। वो बच्चे जो इम्यूनिटी में कंप्रोमाइज हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उन बच्चों में भी खतरा ये पैदा करते हैं। जो वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर है उस पर भी बात करते हैं। मैंने भी एक स्लाइड में आपको दिखाया था कि कुछ लोग टीका लगवाना ही नहीं चाहते, चाहे वो डरते हो AFI से, या उनको कोई भ्रम हो कि बच्चा नपुंसक हो जाएगा, या कुछ और समस्या है, वो नहीं लगवाना चाहते। कुछ लोग सरकारी सेवाओं से नाराज होते हैं कि सब कंट्रोल का राशन नहीं मिला था इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे, सब हमें कॉलोनी नहीं मिली इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये तो मतलब एक इस तरह की बात हो गई कि एक सर्विस नहीं मिली तो दूसरे को मना कर दिया। बट ओवरऑल दिस विल हैम्पर देयर ओन लाइफ, उनके अपना बच्चे के जो जीवन है उसके लिए वो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो इन वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर वाले लोगों से रूबरू होते हैं। आशा, आंगनवाड़ी और एनएम तो स्वयं प्रयास कर ही रही हैं। इसके बाद ब्लॉक पर एक ब्लॉक रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है, और वो ब्लॉक रिस्पॉन्स टीम जो है उन लोकल इश्यूज को, कि वहां उस लोकली कौन प्रभावशाली है या किसकी बात समझेंगे, या क्या मान लीजिए राशन कार्ड के ही इश्यूज हैं, तो उनको वो प्रशासनिक लोगों से, अधिकारियों से मिलके सुलझाने की कोशिश करते हैं।
1: पोलियो में और नियमित टीकाकरण में फर्क नियमित का ही है, जो डॉक्टर मनोज ने बताया भी था। पोलियो आपने एक बार पिला दिया, अगली बार जब आए तब आपने पिला दिया, दैट्स ऑल, उसमें कोई ऐसा फॉलोअप नहीं था। बट फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन, अगर आपने एक वैक्सीन लगवा ली, एक विजिट कर ली, उसके बाद अगर आप छूट गए तो दैट इज इनकम्प्लीट।
2: शहरी क्षेत्रों में जो अर्बन हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या CSCs है, वहां पे प्रतिदिन टीकाकरण लग रहा है, जिसका कम्युनिटी में संदेश जाना बहुत जरूरी है कि अब ऐसा नहीं है कि खाली वहां पे बुधवार और शनिवार को ही टीका लगाए जा रहे हैं, अब तो किसी भी दिन जाके लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग संडेज। जो हमारे UPSC हैं वो सोमवार को छोड़ के हर दिन टीकाकरण कर रहे हैं, और जो जिला अस्पताल है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है, वहां पे मतलब पूरे 7 के 7ों दिन टीकाकरण किया जा रहा है। सांसद, एक और भी चीज दूसरी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ज्यादातर शहर के लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अर्बन के जो UPSCs हैं उतने ज्यादा अच्छे से नहीं बने हुए, वहां पे टीकाकरण की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड का सेंटर बनाने के लिए एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट लेके आया गया है, जो हर जिले में स्थापित होना है। अभी तक हमारे पास लगभग 20 जिलों में 43 उन्नत किस्म के टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए, जहाँ पे उनको अच्छा सा एम्बियंस दिया जाता है, वहाँ पे सारा कुछ सिस्टम्स है कि वेटिंग के लिए एक प्ले एरिया बना हुआ है, ताकि 30 मिनट तक अपने बच्चे को वहां पे छोड़ सकें, ताकि वैक्सीन के लगने से अगर कुछ दुष्प्रभाव होते हैं तो उसको, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो वो भी एक अच्छा माध्यम रहेगा लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे पास अब ग्लोबल स्टैंडर्ड के सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं।
3: एक जो जैसे आपने भी कहा माइग्रेशन की एक समस्या है, बच्चा चला जाता है और फिर हमें नहीं पता लगता कि उसको दूसरी जगह उतने उतने टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो ये कैसे देखा जाए कि बच्चे को सारे टीके लग रहे हैं, भले ही वो माइग्रेट हो गया है तो दूसरी जगह लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं, या फिर वो आया है तो कितने लगा के आया है, इसके बारे में हम कैसे जानकारी लें। नंबर 1,
4: तो इसका सिंपल आंसर है यूविन। अभी हम लोगों ने एक यूविन ऐप लॉन्च किया हुआ है, जो लास्ट ईयर से हम लोगों ने सारे बच्चों का टीका इस पे रजिस्टर्ड होता है, और ये ऑल ओवर इंडिया, ये बच्चा कहीं भी जाएगा तो ये मोबाइल नंबर से लगभग इनका रजिस्टर्ड होता है, आधार लिंक होता है, कहीं भी टीका लगवाएगा तो वो एक मैसेज क्लियर बच्चे के फैमिली के पास भी आता है और साथ में हमारी उस एनएम के पास आता है कि उसने टीका लगवा लिया है, तो क्लियर हो जाता है कि इसने बच्चे को टीका लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा, ड्यू डेट पे इसकी मैसेजिंग भी आती है, तो अब ये समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया।
5: एक तो जो हमारी हायर सोसाइटी है वहां भी मैंने देखा है कि जैसे गवर्नमेंट में जो है 7 या 8 टीके हैं, जो भी अभी आपने बताया है 15-16, लेकिन जब आप जाएंगे हायर सोसाइटी में या प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाएंगे टीकों के लिए, तो वहां पे कई सारे टीके हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से और भी ज्यादा है। तो क्या वो सभी भी जरूरी हैं जो एक्स्ट्रा टीके वहां पे लगवाए जा रहे हैं? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि वहां पे एक चीज और भी कही जाती है कि पेनलेस टीके हो गए हैं जिससे बच्चों को दर्द नहीं होगा, और जो सरकारी टीके जो मुफ्त में लोगों को मिल रही है उसके लिए वहां पे 2,500-2,500 तक एक टीके के पे करने पड़ते हैं, कहीं 5,000 भी होता है। तो क्या वाकई में ऐसे टीके हैं जो पेनलेस होते हैं? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे हैं भी, लेकिन अगर हैं तो प्लीज आप बताइए हमें इसके लिए।
4: देखिए, सवाल सोना जी आपका बहुत ही अच्छा है। मेरा ख्याल है हम सभी लोग इस पे जवाब देना चाहेंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स में जो अभी हमने आपको एक बीच में आप स्लाइडों में देखा होगा, नटागी की बात की थी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, वो
5: जी
4: डिसाइड करती है कि किसी डिजीज का बर्डन कितना है। उस वैक्सीन को लाने से मैक्सिमम बेनिफिट हमारी जनता को कितना मिलने वाला है। तो
5: जी
4: नेशनल यूआईपी शेड्यूल में, नेशनल शेड्यूल में हमेशा वो टीके लाए जाते हैं जिसमें हम कम पैसों में मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे पाए और मैक्सिमम हम मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डिक्रीज कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से वो डिसाइड होता है कि उसके बाद डिजीजेस बहुत हैं, वैक्सीन पूरी दुनिया में काफी, जब हमने बात की तो 20 डिजीजेस की बात की जो वर्ल्ड के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा था कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, बट हम लोग नेशनल यूआईपी में इसमें 12 डिजीज की बात करते हैं, तो यानी 8 अभी भी बची हुई हैं। तो ये चूंकि रिसेंटली अभी ये वैक्सीनेशन अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में है, तो डेफिनेटली वो महंगी होंगी। और दूसरा जो सवाल था आपका पेनलेस और उसकी बात कर रही है, तो ऐसी सुई का इंजेक्शन का दर्द तो सभी को होने है, प्लस जो हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसके अंदर थोड़ा सा जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से दर्द होता है। डेफिनेटली एक दो वैक्सीन्स ऐसी हैं, उस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि मतलब उसको पेनलेस कह सकते हैं, बट उसमें भी पेन होता है, क्वांटिटी ऑफ पेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो अपनी चीज को जैसे होता है ना, प्राइवेट में अगर हमने दुकान खोल के बैठे तो हमारी चीज बहुत बढ़िया है साहब, और गवर्नमेंट तो ऐसे कर रही है।
5: जी
4: अगर गवर्नमेंट ये एक साथ देखिए 57 लाख बच्चों को टीका लगा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख, मैंने कई अच्छे अच्छे पीडियाट्रिशियन देखे, वो खुद ही कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई देखो मेरे यहाँ तो ये 3,000 का लगेगा, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात करें मैं आपसे, और आप सरकारी में चले जाओ फ्री लगता है, तो वो खुद ही मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम्हारा पैसा है तो आओ मेरे पास लगवाओ, नहीं तो सरकारी में जाओ। कोल्ड चेन का मेंटेनेंस देखा किस तरीके से हम लोग, कितना बढ़िया तरीके से मैन्युफैक्चरर से हमारे पास वैक्सीन बेनिफिशरी तक जाती है, और हर जगह टेम्परेचर लगल लगा हुआ है कि 2 से 8 डिग्री पे मेंटेन हो रही है।
5: सर, एक मिथ और भी है कि ये कहते हैं हर वैक्सीन के बाद हल्का फीवर आना आम बात है, बट उसमें ये भी कहते हैं कि जो पेनलेस वैक्सीन है उससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे मतलब सिकाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वेलिंग नहीं आएगी, फीवर भी नहीं आएगा, तो ऐसा भी है क्या?
0: केवल पेंटावेलेंट जो हमारी वैक्सीन है वो मेन फीवर का रीजन है, बाकी बहुत सारे उस पे फीवर नहीं होता है, कम ही होता है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज हम 6, 10 और 14 वीक्स पे दे रहे हैं पेंटावेलेंट, उसमें हमारा जो ये फीवर और पेन का कॉम्पोनेंट है वो आता है, बाकी वैक्सीन में फिर हमें ज्यादा पेरास्टामोल सिरप या इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। एक चीज और जो आप

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। क्या बात है भाई, सभी लोगों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार, क्योंकि आज है हमारा सोमवार। अरे वाह, आज है नमस्कार और सभी को प्यारा प्यार भरा नमस्कार।
8: नहीं, आपने ये नहीं बोला था, आपने बोला था आज सभी को प्यार भरा नमस्कार क्योंकि आज है हमारा सोमवार।
7: अच्छा, ये बोला था मैं।
8: ये बोला
7: था। पता नहीं क्यों हमको थोड़ा सा जैसे अवस्था का असर कह लो, अभी कहेंगे हम तो अंशिका कहेंगी, अवस्था का असर कह लीजिए कि क्या कह लीजिए भाई। देखो जो जो चीज है,
8: अवस्था का नहीं है ये, व्यवस्था का है।
7: अव्यवस्था,
8: अव्यवस्था
7: जो अव्यवस्थित लोग हो जाते हैं ना, ये अव्यवस्था का असर है ना?
8: ये अवस्था का नहीं है, आपके ऊपर अभी फिलहाल तो अवस्था का नहीं है।
7: मुझे भी लग रहा है ऐसा कुछ कि ये अव्यवस्था का असर है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग ना फटाफट शुरू करते हैं आज के शो
8: को
7: जल्दी से, और उसके बाद में आज की पोयम को भी शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड प्यारी सी दोपहर में आप सभी का वो क्या कहते हैं, इस्तकबाल करते हुए, इस्तकबाल करते हुए आप सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए, आप सभी को फिर से आगमन करने के लिए, आप सभी को बुलाने के लिए इस प्यारी सी दोपहर में एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे,
8: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया, और आ जाइए क्योंकि हो गई है जो है दोपहरिया, तो फटाफट से आ जाइए आप, और बहुत बहुत बहुत एनर्जी के साथ और बहुत सारे बहुत हैप्पी मूड के साथ आज का शुभ दोपहरिया, क्योंकि आज है हमारा बहुत ही प्यारा सा डे। प्यारा सा डे यानी कि टेस्टी वाला, जिसे सुनकर आपकी भूख थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसमें होती है हमारी मास्टर शेफ की बहुत सारी टेस्टी टेस्टी आसान रेसिपीज। कुछ हम भी आपको अतरंगी वाली बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं खाने से पहले
7: खाने से जुड़ी हुई मेन्यू बताना।
8: हाँ,
7: तो मेन्यू में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बढ़िया सी एक रसीली वाली रेसिपी है मेरे पास है, और मैं वो बताऊंगी, लेकिन मास्टर शेफ की भी जो रेसिपीज है वो भी कम नहीं होती है भाई, हमसे ज्यादा अच्छी होती है। तो वो भी भाई मैं आपको आज जो बताने वाली हूँ ना, वो आज मैं आपको आटे से, मतलब जैसे अमूमन आप लोगों ने जो चोखा और जो वो बाटी चोखा खाया है, तो अमूमन आपने ना उसमें सत्तू वाला होता है, बेसन का होता है, चावल के आटे का होता है, पर आज मैं आपको गेहूं के आटे से बनाना सिखाऊंगी।
8: गेहूं के आटे से?
7: हाँ, और वो इतना लजीज है ना कि मैं पिछले 3 दिन से सोच रही हूँ, लेकिन कल पड़ गया संडे, और आई थिंक मैंने कहीं सुना है कि संडे और ट्यूसडे को बाटी चोखा नहीं बनाया जाता है।
8: ओके,
7: ऐसा पता है तुम्हें?
8: नहीं पता।
7: हाँ, संडे को तो बिल्कुल नहीं बनता है, बट ट्यूसडे का मैं कंफर्म कर लूंगी, लेकिन तो मैं मतलब मेरा इतना मन है, तो मैंने सारे झंझट हटा करके मैंने सोचा है कि मैं वेनेसडे को जरूर बनाऊंगी, पर मैंने इसकी जो रेसिपी देखी है और उसको ट्राई मैंने मतलब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने 2 केवल ट्राई कर ली थी। थोड़ी सी बना करके, है ना, और वही इतनी ज्यादा लजीज बनी थी कि मैं आप सभी को उसकी रेसिपी बताऊंगी आज, बाटी चोखा की। और मतलब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मतलब इतनी मन कर गया कि खाने का। और उसके बाद मास्टर शेफ की जो एक कुकिंग की एक अलग मिसाल होती है वो, एंड अंशिका आपको क्या बताएंगी वो आप उनसे खुद पूछें।
8: मैं बताऊंगी आज आपको कुछ अतरंगी, क्योंकि कल मैंने वो खाया है, मतलब स्वीट है, मीठा है, और कल मैंने जो खाया है ना, मतलब मैं जब गई और मुझे उन्होंने सर्व किया, और फिर बाद में जब उन्होंने रीओपन किया कि मैंने इसको इस चीज से बनाया है, तो मतलब मैं तो शॉक्ड थी। मैं सोच रही थी वो ये भी बन सकता है।
7: सच्ची खाया
8: है? सच्ची खाया मैम।
7: इमेजिनेशन
8: नहीं, असली वाला
7: सही खाया है।
8: सही खाया है, इसीलिए तो आज बताऊंगी।
7: तो वैसे हम बता दें कि हम आपको वही बताते हैं जो सच होता है और सच से परे बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं बिना देर लगाए। तो आज की जो पोयम है ना, वो भी कुछ ऐसी है जो खाने से मिली जुली है। तो खाने से मिली जुली क्या है, आइए मैं आपको बता दूं। जब शाम ढले और भूख लगे, जब शाम ढले और लगे भूख, दिल मांगे चटपटा और कुछ, मैगी की खुशबू आए जब
8: खुशबू आने लगी मुझे यहाँ पे,
7: मानो खुश हो जाए दिल तब, गर्मा गर्म चाय का प्याला हो, साथ में समोसा या पकोड़ा हो, गोलगप्पे का खट्टा पानी और ये फूड भरी कहानी, पिज्जा की वो पुल वाली बात, पिज्जा की वो चीज पुल वाली बात, या फिर माँ के हाथ की दाल रोटी के जज्बात, खाना मिल जाए जब मन पसंद, तो खुश हो जाए हर एक मुसाफिर का छंद।
8: वाह, मतलब आज के दिन के लिए इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती थी। मतलब दाल रोटी भी आ गई और उसमें पिज्जा, मैगी, चाय, पकौड़े, माय गॉड। मतलब बैठे बैठे मैम ने कहा ना मैगी की खुशबू, तो वो बैठे बैठे मैं महसूस कर रही थी।
7: तो मैंने इसीलिए उसको तीन बार पढ़ा,
8: मैं फील करने लगी मैगी की खुशबू। और आई होप कि हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे घर पे बैठे बैठे, और कह रहे होंगे मतलब अपने घर पे जो भी उनकी वाइफ होंगी या बेटी होगी या बहन होगी कि अब तो चाय पकौड़ी या मैगी में से कुछ एक खिलाई दो।
7: जो सुन रहे होंगे। और दोपहर का टाइम है तो इस समय तो और भूख लगती है। मतलब आप सोचिए हम लोग अपने दिल पे कितना बड़ा वाला पत्थर रख करके और इस समय खाने की बात करते हैं और हमारे पास खाने का कोई साधन नहीं होता है।
8: वो आपने देखा है ना रेगिस्तान में होती है ना अमृत तृष्णा होती है।
7: हाँ।
8: कि दूर से दिखाई देता है कि पानी का तालाब बढ़िया अच्छे से भरा हुआ है और जब हम पास जाते हैं तो कुछ नहीं होता है।
7: वो रेत
8: हमारी कंडीशन भी कुछ ऐसी
7: वो रेत चमकती रहती है
8: कि हम खाना कहते हैं पर
7: खाना मिल नहीं पाता।
8: खैर कोई बात नहीं,
7: तो कोई बात नहीं,
8: आपके लिए इतना तो फिर हम कर ही सकते हैं,
7: इट्स अ ड्यूटी। तो चलिए अब हम सुनते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ और उसके बाद लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की रेसिपीज का सिलसिला।
8: आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में क्या है, तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या निकला है हमारे आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में। तो हमारा आज का जो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है वो ये बताता है कि किस तरीके से कहते हैं ना कि जब आपको अपनी मंजिल पानी हो, जब आपको अपनी मंजिल पानी हो तो नज़र हमेशा शिखर पर नहीं बल्कि रास्तों पर होनी चाहिए। आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही है कि अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो आपकी नज़र शिखर पर नहीं बल्कि रास्तों पर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ से ये निकल करके आता है कि समय, आपकी परिस्थितियां जो हैं वो कभी आपका इंतज़ार नहीं करती, वक्त कभी आपका इंतज़ार नहीं करेगा और आपको रुकना नहीं है, आपको बस उस वक्त के साथ चलना है और आप जिस मंजिल पर भी जाना चाहते हैं नज़र उस मंजिल पर नहीं उस रास्ते पर रखनी है जिससे चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए जब रास्ता सही होगा तभी तो हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अगर रास्ता ही सही नहीं होगा तो हम कैसे पहुंचेंगे हमारी मंजिल तक। इसलिए हमेशा रास्ते पर नज़र रखिए। यहाँ रास्ते का मतलब कई सारी चीज़ों से है, जैसे कहते हैं ना कि कई बार हम जब कुछ पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो कहते नहीं है कि एक बहुत अच्छी पोयम है कि अकेले ही चलना पड़ता है, हर वक्त हर कोई आपके साथ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से अगर आपने कोई मंजिल सोची है और वहाँ जाने का रास्ता सोचा है तो आपको सबसे पहले ये करना है कि मुझे अकेले चलना है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। क्योंकि देखिए लोग साथ तभी तक देते हैं जब तक उनके रास्ते आपके रास्ते के साथ मिलते हैं, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है कि जब वो रास्ते अलग हो जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही है हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कि शिखर पर नजर रखनी है, रास्तों के साथ चलना है और कोशिश करनी है कि आप अकेले चलें। अकेले चलने का मतलब है कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि जिंदगी के इस बहुत ही प्यारे से सफर में अगर आपको बिना किसी साथी के भी साथ चलना पड़े, अपनी मंजिल तक जाना पड़े, तो आपको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि कई बार ज्यादातर क्या होता है ना कि हम अपनी खुशियाँ, अपनी एक अगर हमें किसी सक्सेस तक भी जाना होता है और वो रास्ता होता है, तो हम ये सोचते हैं काश कोई साथ हो, कोई साथ होगा तो रास्ता बहुत आराम से कट जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी जर्नी में कोई आपके साथ हो। हो सकता है आपको अकेले चलना पड़े, तो हमें उस वक्त के लिए खुद को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। क्योंकि एक बात बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही सच है कि जिस दिन आपने अपने साथ चलना सीख लिया, उस दिन सभी आपके साथ चलना चाहेंगे।
7: एग्जैक्टली, क्योंकि हम चले थे अकेले और पीछे कारवां बनता गया,
8: लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया।
7: हाँ, तो चलिए हम लेंगे यहाँ पर कारवां, जोड़ेंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे साथ आ गई हैं, गुड आफ्टरनून मीनू जी आ गई हैं एंड मनीष शर्मा जी। तो भाई हम भी चाहेंगे कि हम पीछे मुड़ के देखें और हमारे साथ बहुत बड़ा कारवां जुड़ चुका हो।
8: बिल्कुल,
7: तो उसके लिए लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे सीधे रेसिपीज का सिलसिला हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: ले जाए।
1: वोल्टास मैक्स क्लीन वॉशिंग मशीन, इसका डायनाबॉल पल्सेटर जिद्दी मैल को भी बाहर निकाले और बच्चों को बच्चे ही रहने दे।
0: मैक्स क्लीन हर दाग चूम ले जाए।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में? क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
8: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली
9: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो भाई चलिए, हम खाना खजाने का जो दौर है वो शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहली जो रेसिपी बताएंगी वो आप बताएंगी आपको अंशिका। तो देखते हैं आज क्या इन्होंने बोला था अभी, कुछ अतरंगी सा। तो अतरंगी सा क्या है? अतरंगी भले हो लेकिन कुछ ऐसी वैसी चीज ना हो ताकि हम उसको बना ना पाए, है ना?
8: ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले कि मैं बताऊं, एक सवाल है।
9: हाँ।
8: और सवाल ये है कि बताइए वो कौन सा बिस्किट होता है जिसके आगे हम जी लगाते हैं, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है और हमारे इंडिया में तो बहुत खाया जाता है और कहीं ना कहीं हम सभी ने बचपन में खाया है।
9: पार्ले जी।
8: वाह, बहुत ही अच्छा जवाब।
9: क्योंकि जी तो एक मतलब एक ब्रांड है पार्ले जी, और पार्ले जी ब्रांड हम लोगों के बचपन की ब्रांड है। हम लोग किसी ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बचपन की वो ब्रांड है। हाँ। और अभी तक मैं बता दूं आपको, अपनी कॉन्फिडेंट बता रही हूँ कि अगर मुझे चाय के साथ, शाम के साथ अगर पूरा बड़ा वाला पैकेट कोई दे देना एक टाइम में,
8: एक टाइम
9: तो मैं खा सकती हूँ।
8: ओह,
9: क्योंकि वो एक डिप में खाली, अरे इतना ही सा। तो सोचो कि छोटा वाला जो पैकेट होता है, तो आप सोचो कि अगर वो एक टाइम पे हम लोग 5 से 10 रुपए वाला बिस्किट खा सकते हैं, तो वो हमारे बचपन की ब्रांड हुई कि नहीं हुई?
8: बिल्कुल हुई।
9: क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक बार डिप करो मुंह में जाता है।
8: बिल्कुल।
9: एक बार डिप, केवल उसकी एक ही कंडीशन है, एक बार डिप खा ली।
8: एक बार,
9: अगर एक से दो बार किया ना तो वो पूरा बैठ जाता है,
8: फिर तो आप उसको मिक्स करके ले सकते हैं,
9: चम्मच के साथ खाइए।
8: हाँ, आज ये इसलिए कहा, देखिए पार्ले जी कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं। तो मैम ने तो बहुत ही अच्छे से उसको बता लिया। देखिए कहीं ना कहीं जब किसी चीज़ से यादें जुड़ी होती हैं, मेमोरी जुड़ी होती है, और फिर उससे जब कुछ बनता है तो उसमें एक वो ना टेस्ट आ जाता है, और वैसा ही टेस्ट कल मैंने फील किया। क्योंकि कल मैं गई थी कहीं पे, मतलब संडे था, थोड़ा अच्छा संडे बीता कल, तो मैं घूमने गई थी कहीं पे और काफ़ी अपसेट थी कल मैं, क्योंकि इधर 2-3 दिन से काफ़ी हेडेक भी हो रहा था, तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो जहाँ मैं गई थी उन्होंने कहा कि चलो आज तुम्हारा मूड रिफ्रेश करते हैं और कुछ ऐसा खिलाते हैं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ऐसा क्या खिलाएंगी, तो फिर उन्होंने मुझे पेड़े खिलाए।
9: पेड़े
8: okay. तो मुझे वो नॉर्मल मतलब पेड़े जैसे ही लगे, लेकिन हल्का हल्का उनमें बिस्किट का टेस्ट आ रहा था, वो पार्ले का टेस्ट था। तो मैंने कहा इसमें पार्ले बिस्किट का टेस्ट आ रहा है, तो
9: पेड़े
8: और उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने कहा पहले
9: मतलब पेड़े अलग खाए पार्ले बिस्किट अलग खाया।
8: नहीं मैम, उन पेड़े में से ही पार्ले बिस्किट का भी टेस्ट आ रहा था।
9: ओके, ये कैसे?
8: वही तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे मतलब काफी सताया, सीधे सीधे नहीं बताया, लेकिन कुछ जब मैंने उनको बहुत तंग किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पेड़े मैंने पार्ले बिस्किट से बनाए।
9: ओ माई गुडनेस।
8: और हाँ मैम, क्योंकि उनका जो उनके घर पे मतलब जो बेबी है उनका, वो बहुत छोटा है लेकिन स्वीट खाने की हमेशा जिद करता है, तो उन्होंने कहा कि बाहर की जो चीज़ों से खोए वगैरह से बनाते हैं तो इसको मतलब सूट नहीं करता है, तो इसके लिए मैंने स्पेशली ये पार्ले बिस्किट से बनाया। तो आज मैं भी आपको वही बताऊंगी जो टेस्ट मैंने कल खाया है, मतलब मुझे तो मज़ा आ गया और मैं ये सोच रही थी कि मैं घर पे बनाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं बना नहीं पाई हूँ, बट मैं आपको आज जरूर बताऊंगी। आप सब घर पे
9: मुझे बताओ ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं।
8: बिल्कुल मैम, तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आपको 2 पैकेट छोटे वाले पार्ले ले लेने हैं और काउंट कर लेना है कि 30 बिस्किट से ज्यादा ना हो।
9: अच्छा,
8: 30 बिस्किट ही हो, मतलब 30 उसमें बिस्किट हो, आपको काउंट कर लेना है। उसके बाद आपको ले लेना है दूध, दूध आपको लेना है 1 कप फुल क्रीम, और उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में मत रखिएगा, कहीं मत रखिएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। और फिर आपको ले लेना है मिल्क पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच आपको मिल्क पाउडर ले लेना है। मिल्क पाउडर के बाद 1 से 2 चम्मच आपको घी लेना है, और घी के बाद आपको पिसी हुई चीनी ले लेनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा पिसी हुई चीनी सिर्फ 2 से 3 चम्मच, क्योंकि पार्ले बिस्किट में अपनी एक अलग नेचुरल मिठास होती है।
9: हाँ।
8: उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको इलायची पाउडर ले लेना है, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच से भी कम चाहिए। अब आते हैं इसे
9: केवल स्वाद के लिए।
8: अब आते हैं ड्राई फ्रूट्स पे, तो ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम और काजू ले लेने हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें यह है कि इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स को पीस करके डालना है, बादाम काजू जो भी आप लेना चाहें उसे अच्छे से पीस करके उसका फाइन पेस्ट बना करके फिर ही आप इसमें डालिएगा। अब चलिए बताते हैं कि बनाना कैसे। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि पार्ले बिस्किट्स के आपको टुकड़े कर लेने हैं और उसे मिक्सी के जार में डाल देना है, और उसी के साथ आपको चीनी भी डाल देनी है, जो से 2 से 3 चम्मच आपने चीनी ली थी वो आपको जार में डाल देनी है, और जार में डाल करके इसे कम से कम 3 से 4 बार चलाइएगा ताकि इसका पूरा जो एक फाइन पेस्ट है ना वो बन करके तैयार हो जाए। जब इसका फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा तो जैसे आप आटा गूंदते हैं ना वैसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके इसे आपको दूध से गूंथना है, और पूरा जब आप गूंथेंगे तो वो एक फाइन जैसे आटे का डो बन के तैयार होता है ना, जैसे हम रोटियां सेकते हैं घर में वैसा पूरा डो बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि दूध रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा हो, और उससे आप उसी तरह सानेंगे जैसे हम पानी से गेहूं का आटा घर में रोटियों के
9: मतलब
8: लिए
9: दूध
8: सानते हैं।
9: कम होगी और बिस्किट 30 होंगे।
8: हाँ, दूध की मात्रा कम होगी। अब आपने जब इसे सान लिया, आपने गूथ लिया अच्छे से, तो गूथ लेने के बाद आपको ये देखना है कि कहीं लम्स तो नहीं पड़ गए। अगर लम्स पड़ गए तो आप उसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा सूखा जो आप बिस्किट का चूरा है वो अपने पास 1-2 चम्मच रख लीजिएगा।
9: हाँ।
8: सारा मत सानिएगा, और अगर उसमें लम्स पड़ रहे होंगे तो थोड़ा सा उसको डाल दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है हाथों पर ही, आप अब इसमें जब ये डो बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें गूथने के बाद आपको घी डालना है। जब आप गूंथ चुकेंगे उसके बाद क्या करिएगा कि एक कंटेनर कोई ले लीजिएगा और उसके नीचे घी 3-4 चम्मच डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर से इस डो को रख के फिर एक बार आप उसको वैसे ही हाथों से गूंथ लीजिएगा जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। तो वो क्या होगा कि पूरा जो उसमें घी लग जाएगा तो वो बहुत आसानी से जब आप उसकी जो लोइयां हैं उनको तोड़ तोड़ के पेड़े बनाएंगे तो वो आसानी से बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि अगर ये चिपकता है बाय चांस आपके हाथों पे, अब आपका आटा जो है डो है वो पूरी तरह तैयार है, अब आपको उसकी छोटी छोटी लोई उसको ले लेनी है उसमें से निकाल करके। अगर बाय चांस ये आपके हाथ पे चिपक रहा है घी डालने के बावजूद भी, तो आप अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगाइएगा, लेकिन जहां तक मैं बता दूं कि अगर आपने इसमें घी अच्छे से डाला है तो आपके हाथ पर चिपकेगा नहीं। अब आपको इसमें से लोई निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा अपने हाथों पे छोटे छोटे थोड़े ले लेके बॉल्स बना लेने हैं। पहले सारे के बॉल्स बना लीजिएगा और फिर उन बॉल्स को आप हल्के हल्के दबा करके उसको जैसे पेड़े के जो आकार होता है पेड़े का वो दे दीजिए। आपके पेड़े बनके तैयार हैं। अब आप इस पेड़े को, लेकिन अभी इसमें कुछ बाकी है, और बाकी ये है कि आपको हर एक पेड़े पे पिस्ते को लगा देना है, आप पिस्ता लगा दीजिए ऊपर, बादाम लगा दीजिए, जो भी आपका मतलब ड्राई फ्रूट्स वो आपकी चॉइस पे, बहुत लोग बादाम लगाते हैं, उन्होंने काजू लगाए थे जिनके घर मैंने खाए थे।
9: अच्छा।
8: लेकिन आप पिस्ते से डेकोरेट करिएगा। ओ सॉरी, एक चीज मैंने स्किप कर दी, इलायची पाउडर भी आपको सानते वक्त ही, मतलब उसको डो बनाते वक्त ही डालना है वहाँ पे। अब आपके ये पेड़े बन करके तैयार है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए, मतलब आधे घंटे से भी कम टाइम के लिए, बस 10-15 मिनट के लिए, इसे सेट होने के लिए, टाइट होने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसको रख दीजिएगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि मुझे अभी 2-3 दिन तक इसको रखना है, मतलब मुझे खाना नहीं है अभी, तो अगर आपके मन में भी है तो आप सेट होने के लिए रखिएगा। अदरवाइज अगर आपको तुरंत खा करके ख़त्म करने हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होंगे, लेकिन आप इन्हें कांच के कंटेनर में रखिएगा। कांच के कंटेनर में करके फ्रिज में डाल दीजिए तो आराम से 10 से 15 दिन ये खराब नहीं होंगे। और जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो बढ़िया से इसको खाइए और एंजॉय करिए। और आई होप कि आपके घर में बच्चे इसे बहुत पसंद से खाएंगे, लेकिन आप उन्हें बताइएगा नहीं कि आपने कैसे बनाए, चाहे वो कितने भी पूछें, क्योंकि ये एक मतलब सीक्रेट वाली बात हो जाएगी ना कि तुम्हें नहीं बताऊंगी कि कैसे बनाए। और फिर तो बच्चे ज़रूर खाना चाहेंगे, मतलब उनको क्यूरियोसिटी होगी कि ये मुझे बता नहीं रही है कि किससे बनाए, मतलब कुछ उसमें कुछ ना कुछ है,
9: कुछ नया मम्मा ने कुछ नया एडवेंचर जरूर किया
8: जरूर है इसमें, जो है कुछ खोजा जरूर है, इसीलिए मुझे नहीं बता रही है। तो आप इसको बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। और आप चाहें तो इन पेड़ों को, जैसे कभी कभी हमारा मन होता है ना कि, जैसे चीनी के पराठे वगैरह आप कभी बनाते हैं, मन करता है रात को कुछ खाएं,
9: हाँ।
8: तो चीनी के पराठे की जगह आप ये पेड़े भर के भी पराठे बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे।
9: अच्छा, मतलब आप लोगों के यहाँ भी, जैसे अमूमन मुझे लगता है कि मैं ये फालतू वाले काम करती हूँ कि कहीं से अगर पेड़े आ गए या फिर बर्फी आ गई तो ऐसे कोई नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसका पराठा पका लेते हैं ना, उसको भर करके, मतलब हाथ से उसको क्रश कर लिया, थोड़ा सा घी डाल दिया अंदर और अच्छे से उसको, और बहुत आसानी से बेल भी जाते हैं, और उसका पराठा बना लिया तो सब लोग कहते हैं अरे ये तो मावे का पराठा है, हमें दे दो। अब फिर मैं कहती हूँ ये वही क्या कहते हैं कि वो मिठाइयां हैं, बर्फी है, पेड़े हैं जो आप लोगों ने नहीं खाए और इसको रिजेक्ट कर दिया था, और मैंने सेलेक्ट किया और आपको बना के दिया एक पराठा।
8: बिल्कुल। तो अगर आप कभी ऐसे, आपका भी मन करे तो आप ये पार्ले जी वाले पेड़े भर करके अच्छे से एक पराठे बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और एंजॉय करिए। क्योंकि स्वीट खाने का मन तो कभी ना कभी, मतलब स्पेशली खाने के बाद मुझे लगता
9: तो
8: है कि सभी का करता है कि कुछ मीठा खाया जाए।
9: बिल्कुल।
8: तो आप कुछ मीठा खा सकते हैं
9: जी। तो मीनू जी लिख रही है, कैसी हैं आप दोनों जी? हम लोग दोनों लोग ठीक हैं, आप कैसी हैं? कमल नयन जी, गुड आफ्टरनून आरजे मैम, आप दोनों को तो गुड आफ्टरनून कमल नयन जी। एंड आशु जी आ गई है, शुभ दोपहरिया दोनों आरजे मैम,
8: शुभ दोपहरिया आशु जी, कमल नयन जी, मीनू जी, कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सभी ने सुना होगा और आप सभी भी जरूर ट्राई करें।
9: पार्ले बिस्किट से भी कोई पेड़े बना सकता है, मतलब ये तो बहुत ही वाकई में अतरंगी है, तो आप इसको जरूर से बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हो सके तो हम तक भी जरूर पहुंचाइए।
8: बिल्कुल। अब मैंने तो अभी नहीं बनाए हैं, लेकिन जब भी बनाऊंगी तो मैं जरूर लाऊंगी यहाँ पे सबको खिलाने के लिए, क्योंकि मैं टेस्ट करूंगी ना कि मैंने कैसे बनाए हैं।
9: कैसे बनाए? तो चलिए यहाँ ले लें ब्रेक।
8: बिल्कुल मैम। तो चलिए लिस्टनर्स, मीठे मीठे स्वाद के साथ चलते हैं मीठे मीठे ब्रेक पर। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है अंशिका। तो आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आज है लजीज मंडे, मंडे के दिन हम लेकर के आते हैं बहुत सारी रेसिपीज को और साथ में खाना खजाना। आप सभी को पता है कि हर दिन हमारे लिए किचन में कुछ न कुछ

0: खास होता है। तो हर दिन खास को और बेहतरीन बनाने के लिए हम हर मंडे को लेकर के आते हैं अपनी मास्टर शेफ यानी कि हमारी रंजना मैम। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उसके बाद में जानेंगे कुछ आज कुछ खास उनके द्वारा बताई गई रेसिपीज। तो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: कैसी है मैम?
1: बिल्कुल ठीक है
0: मैम। आज आप क्या खिलाने वाली हैं हमें और हमारे सारे लिसनर्स को?
1: अब देखो, आज तो इधर हम लोग तो होली में इतना बना बुनू के बहुत थक चुके हैं, तो कुछ तो अच्छा बनना ही चाहिए स्पेशल। तो आज हम जो है, एक तो आलू बहुत आया हुआ है, तो हम पकौड़ी पोटैटो चाट सिखा रहे हैं
0: जी।
1: ये पकौड़ी भी है और चाट भी है।
0: ओके।
1: तो इसको आप बनाइए, बहुत सरल ढंग से बता रहे हैं। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, तो उसको लिख लीजिए। और एक हम जो है छोले चाट वाले वो भी बताएंगे, क्योंकि आजकल रमजान भी चल रहा है, शाम को उनके यहाँ बड़ा अच्छा रोजा अफ्तार होता है, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए तरह तरह। और हम लोग भी इतने सारे पकवान खा के होली में घी तेल वाले थक चुके हैं, तो थोड़ा हम लोग को भी रेस्ट मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी के अनुसार ये जो है डिशेस है, चलिए आप लोग नोट करिए। सबसे पहले पोटैटो पकौड़ी चाट।
0: ओके, पोटैटो पकौड़ी चाट, मतलब पकौड़ी भी है, चाट भी है, पोटैटो भी है।
1: पोटैटो भी है। तो चलिए लिखिए सामग्री। आधा किलो बेबी पोटैटो, ना तो बहुत छोटे हो ना बहुत, एक इंच के लगभग होने चाहिए, एक से डेढ़ इंच वाले। इस समय बहुत आ रहे हैं, चाहे लाल आए चाहे सफ़ेद, जो भी आपको मिले आप उन्हें ले लीजिए। और आधा किलो, और खूब अच्छे से धो लीजिए। इतना मैश करिए कि उस पर कोई भी स्पॉट दाग धब्बा ना रह जाए। खूब धोने के बाद आप उन्हें कुकर में डाल दीजिए। कुकर में बहुत थोड़ा पानी डालिएगा, लगभग आधा प्याला
0: जी,
1: इसलिए कि कुकर फटने ना पाए, पानी तो होना ही होना।
0: हाँ।
1: तो बस आधा प्याला पानी डाल के आप कुकर को चढ़ा दीजिए गैस पे। एक स्टीम आए, जब एक स्टीम आए तो आप 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए उन्हें और गैस बंद कर दीजिए। अब इससे जो होगा, ज़्यादा तो ना पकेंगे ना फूटेंगे, हमें साबुत ही साबुत चाहिए आलू। उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे। अगर कोई आलू बड़ा है तो उसमें हम दो टुकड़े कर लेंगे, अगर नहीं बड़ा है तो गोल गोल अलग निकाल के रख लेंगे
0: जी।
1: अब एक अलग बाउल में या थाली में हम क्या करेंगे, एक टेबल स्पून चावल का आटा लेंगे, एक टेबल स्पून हम इसका लेंगे बेसन लेंगे, और एक टेबल स्पून हम आरा रोट लेंगे
0: जी।
1: इनको हम आलुओं पे डाल देंगे, साथ ही हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया एक चाय का चम्मच, भुना पिसा जीरा एक चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, और थोड़ा सा अमचूर एक चौथाई चाय का चम्मच डाल देंगे, थोड़ा सा पिसा लाल मिर्च हम एक चाय का चम्मच डाल लें, और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा रंग आने के लिए आधा चाय का चम्मच डाल देंगे, और सबको खूब अच्छे से हिला देंगे। ऐसा करेंगे कि सभी आलुओं पे ये मसाला एक सा लग जाए
0: जी।
1: यदि नहीं लग पा रहा है तो आप थोड़ा सा पानी हाथ में लीजिएगा और पानी का छींटा दे करके उसमें सान लीजिएगा
0: जी,
1: ताकि जितने भी मेरे आलू हैं सब पे जो है वो मसाला चढ़ जाए। अब जब, और नमक अपने अंदाज से सबसे बाद में डालिएगा, जब सब मसाला मिल जाए सब हो जाए तब आप नमक मिलाइए। थोड़ा सा काला नमक डालिए और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालिए
0: जी,
1: जरूरी रहता है, काला नमक से अलग सा स्वाद आता है। अब आप क्या करेंगी, कढ़ाई में तेल गरम करिए, इतना डालिएगा कि हम जो आलू डालें तो डूबे रहें। अब आप उनमें जब आंच तेज हो जाए फिर आप धीमी कर दीजिए, मध्यम आंच। अब एक एक करके आलू उठा करके उसमें डाल दीजिए तेल में
0: जी,
1: और गुलाबी गुलाबी सेक लीजिए। इसमें देखिएगा मसाला बिल्कुल भी तेल में नहीं निकल रहा है और सभी आलुओं पे मसाला जो है हमारा वो कोटेड हो गया है
0: जी।
1: अब आप उनको निकाल लेंगे, निकाल करके एक थाली में रख लेंगे। जब सब तल जाए, और तुरंत तुरंत मत परसी पलटिएगा इसको, आप करिएगा आलू को पहले डाल दीजिए, एक दो मिनट वेट करिए, वो खुद ही नीचे से छोड़ के ऊपर आने लगे।
0: हाँ।
1: तब आप पलटिएगा, तो इससे मसाला बिल्कुल भी आलुओं से दूर नहीं होने पाएगा। अब जब आपने थाली में निकाल लिया तब गैस बंद कर दीजिए अब सभी जितने भी आलू हैं उनको आप क्या करिए कि किसी कटोरी से या गिलास से जिससे भी आप उसको दबा दीजिए,
0: उसको मैश कर लेना है।
1: मैश नहीं करना,
0: अच्छा दबा लेना
1: है। हर एक को दबा देंगे। हाँ, हाँ। दबा देंगे तो एक छोटी छोटी पतली पतली टिकिया ऐसी हो जाएगी।
0: हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा।
1: अब इसको आप अलग रख लेंगे। अब उससे पहले आप हरी चटनी पीस लीजिए, अगर आप चाहती हैं सफेद मटर उसमें चाट ऐसा बनाना, नहीं तो मीठी चटनी अलग से बना लीजिए, दही रख लीजिए, सेव रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं आप मटर रखिए, सेव रख लीजिए, दही रख लीजिए, मीठी चटनी बना लीजिए, हरी चटनी मस्त है, वो हरी धनिये वाली आप पुदीना डाल के बना लीजिए। अब आप क्या करेंगी, फिर से गैस गरम करेंगी, चढ़ाएंगी मतलब जलाएंगी गैस, कढ़ाई को पुनः गरम करेंगी, फिर आप एक एक करके जो आपने आलू को टिकिया का बना दिया शेप, उसको फिर डाल के तलेंगी। अब आप जब तोड़ के देखेंगी कि आलू अंदर से एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, तब आप उनको निकाल लेंगी, पर यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी जलने ना पाए। ये विशेष। अब आप इनको दोने में रखिए, हरी चटनी डालिए, दही डालिए फेटा हुआ, मीठी चटनी डालिए, हरी धनिया डालिए, और डाल करके आप जिसको भी सर्व करना है उसको करिए। देखिए ये आपकी डिश कितनी अच्छी लजीज और कितनी जल्दी बन जाती है। अगर आपके मेहमान आए हैं तो घर की ही चीज़ है, इसमें कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी है, और जरा जरा सा चाट मसाला छिड़क करके आप जो भी हैं अपने मेहमान को खिलाइए।
0: बहुत ही अच्छा। और इसमें तो मैम हम लोग अपने आप से कुछ अलग सा वेरिएशन भी कर
1: बिल्कुल,
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे मटर डाल दिया या फिर कुछ और क्या कहते हैं वेजीज को काट के ऊपर से डाल दिया, तो ये चाट का भी रूप ले सकती है।
1: बिल्कुल, अनारदाना डाल दो, कुछ भी, आजकल तो इतने फ्रूट्स आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे से इसका टेस्ट जो है ना वो चार गुना भी बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो लिसनर्स ये थी हमारी पहली डिश, तो आइए हम यहाँ छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आएंगे एक और लजीज डिश को जानने के लिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज है अंशिका। तो आइए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है मंडे, हमारा लजीज सा मंडे। तो जानेंगे मास्टर शेफ से दूसरी डिश कौन सी है और किस पकवान को बनाने के बाद में ये एक नई डिश बन के आई है। जी मैम,
2: आज हम जो है छोला चाट बना रहे हैं, जो बड़ी सरल है और बड़ी अच्छी लगती है देखने में।
1: आज
2: मैम,
1: आज सारी टिक्की बताशे और चाट ही आज आप खिलाने वाली हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसके लिए सफेद चना, जिसे हम छोले कहते हैं, आप 250 ग्राम ले लीजिए।
1: जी,
2: लगभग ये भीगने के बाद दो प्याले हो जाएंगे। अब आप इनको भिगो लीजिए, रात भर उबाल लीजिए नमक डाल करके, और गला देखिएगा अच्छे से गला हो पर फूटे ना, इस चीज़ को कि ध्यान रखिए। अब आप इसको अलग रख लीजिए। अब आप उसके लिए क्या करेंगे, एक बड़ी प्याज ले लीजिए, लगभग अगर मीडियम साइज़ की हैं तो आप दो प्याज ले लीजिए, वरना एक प्याज आप काट लीजिए चौकोर टुकड़ों में, छोटा छोटा महीन महीन काट लीजिए। करी पत्ता रख लीजिए, अनारसी राई रख लीजिए, जीरा है, अजवाइन है, इन सबको रख लीजिए। दो टमाटर मीडियम साइज़ के ले लीजिए, इसको भी आप खूब पतले पतले काट लीजिए ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और गल भी जाए। अब आप क्या करेंगी, एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगी, आपकी मर्जी, चाहे रिफाइंड डालिए चाहे सरसों का डालिए, जो भी आपकी इच्छा हो। अब आप इसमें क्या करेंगी कि सबसे पहले आप इसमें डालेंगी करी पत्ता, बनारसी राई, जब टटक जाए तब आप अजवाइन डालिएगा 1 चाय का चम्मच और जीरा 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। जब ये चटक जाए तब आप इसमें प्याज डाल दीजिए जो आपने महीन चौकोर टुकड़ों में काटा है।
1: जी।
2: जब महीन हो जाए सैलो फ्राई करो, उसको लाल नहीं करना है। जब हल्की सी मुलायम हो जाए तब आप चने डाल दीजिए। चने डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा चलाइए तो उसके संग थोड़ा प्याज और भुनेगा।
1: हाँ।
2: इसके बाद इसमें आप टमाटर डाल दीजिए जो आपने महीन काट के रखा है।
1: जी।
2: पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून डाल दीजिए।
1: हाँ, लगभग
2: एक भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून डाल दीजिए। चाट मसाला थोड़ा सा डाल दीजिए। पिसा हुआ मिर्चा डाल दीजिए। थोड़ा मिर्चा कौन सा डालेंगे, जो बीजे वाला होता है,
1: जो बीजे वाला होता
2: बहुत महीन पिसा,
1: चिली फ्लेक्स
2: भी कहते हैं। वैसे आप घर में थोड़ा दरदरा पीस के अलग से रख लीजिए, बाजार से मंगा के वो हमेशा काम आता है।
1: जी।
2: उसको रख लीजिए और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नहीं तो इमली का पानी, हम तो ज्यादातर छोलों में इमली का पानी डालते हैं। आप इमली का 2 टुकड़े पल्प भिगो लीजिए, उसको मैश करके इसमें डाल दीजिए, और काला नमक और सफेद नमक भी डाल दीजिएगा।
1: जी।
2: 2 हरी मिर्च काट के डाल दीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा घिस दीजिए, जो चाय वाले आता नहीं है कद्दूकस महीन, उसी से कस दीजिए, 1/2 इंच का टुकड़ा बस इतना। अब आप जो है मीडियम साइज के वो रखिए, फ्लेम मीडियम रखिए, और इन सबको ढक करके आप पकाती रहिए।
1: जी।
2: कब तक पकाएंगी, जब तक कि आपका टमाटर गल नहीं जाता।
1: हाँ।
2: चने के संग एक सार हो जाए।
1: जी।
2: और देखिएगा इसी के संग मसाले भी सब भुन गए हैं, जो भी हल्दी धनिया।
1: हाँ।
2: हल्दी भी डालिए तो आप 1/4 चाय का चम्मच डाल लीजिएगा। इन सबको जब आप चलाएंगी तो देखिएगा बड़ी सुंदर रंगत आ गई है। अब आप क्या करेंगी, इन्हें आप सर्विस बाउल में निकाल लेंगी, ऊपर से नींबू भी थोड़ा निचोड़ लेंगी।
1: जी।
2: चाहिएगा तो नींबू डाल दीजिएगा, नहीं है तो खटाई, लेकिन सर्व आप कर सकती हैं नींबू के संग। अनार दाने, आजकल अनार के इतने दाने आ रहे हैं, उसमें डाल दीजिए, और करके सेव डाल करके आप गरम गरम सर्व कीजिए। देखिए ये जो है छोले की चाट आपको बहुत पसंद आएगी, और ये बहुत कम घी तेल की है इसलिए इसको कोई भी खा सकता है, हर उम्र के बच्चे भी पसंद करेंगे, बूढ़े भी पसंद करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो खाइए, बनाइए और खिलाइए,
1: बहुत ही बढ़िया टेस्टी। मैम एक बात बता दूं कि आप जो भी कभी कोई डिश बताती है ना, तो मुझे लगता है कि वो एक क्या कहते हैं विजुअल होता है, और वो सामने प्लेट क्यों नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया अच्छी सी डिश हम लोगों ने आज सीखी है। एक्चुअली हम लोगों ने आज चाट ही चाट सीखी है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हाइजीन का भी काम करेगा, क्योंकि जो आजकल ना धूल मिट्टी भी बहुत चल रही है, तो आप इसे घर पे बनाएं और घर पे खाएं, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। फेस्टिवल पे फेस्टिवल है ही, ऐसा नहीं है कि एक फेस्टिवल बीत गया तो अभी
2: नवरात्र
1: आ रहा है, तो आप और ये जो कि अभी मैम ने डिश बताई है वो स्पेशली आलू की बताई है, तो जो चीजें जो इंग्रेडिएंट्स हम व्रत में खा सकते हैं उसको बना करके आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हर बार की तरीके से इस बार भी बहुत ही अच्छी सी डिश हमें बताई है, ऐसे ही हर बार आकर के हमें और हमारे सभी लिसनर्स को अजीबो गरीब और अलग सी चीजें जो आप खिलाती है ना वो खिलाती रहा करिए। थैंक यू सो मच,
2: चलिए सभी को मेरा नमस्कार।
1: चलिए हम मिलते हैं आपसे एक छोटू से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तो आप कहीं नहीं जाइए, आप सुनते रहिए हमारी 89.6 FM में ये प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा गाना, बस हम यूं गए यूं आए।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। और अब वक्त आ गया है बहुत ही लजीज लजीज एक डिश खाने का, लेकिन उससे पहले दो लाइन से इस डिश की हम उसको मतलब आह्वान कर लेते हैं कि आप आ जाइए।
3: आह्वान करना है?
2: हाँ, उस डिश को हम कहेंगे कि आप आइए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वो दो लाइन है कि हर कोई होता है अपने किले का सुरमा, हर कोई होता है अपने किले का सुरमा, और आज हम आपको खिलाएंगे दाल बाटी चूरमा।
3: कैसी रही? ओके, बहुत बढ़िया। ये तो एक नई टेक्निक हो गई, बहुत ही अच्छा वाली हो गई। तो बाटी चूरमा के लिए उसको बुलाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है वो सभी की फेवरेट है।
2: बिल्कुल।
3: और मैं बता दूं कि मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ ना, तो ऑन द वे एक छोटी सी एक ढाबली है और वहाँ पर बाटी चूरमा मिलता है, बाटी चोखा मिलता है, जो बहुत टेस्टी है। और हम लोग रुक करके वहाँ ज़रूर खाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। और वापसी में भी यही होता है कि जब भी हम लोग वहाँ से गुजरते हैं ना, तो उसको ज़रूर हम लोग टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत पुरानी सी दुकान है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊँगी कि अमूमन आप लोगों ने जैसे उसमें सत्तू भर के बनाते हैं, या फिर आटे की लोई होती है, फिर हाँ। या तो फिर उसको आप लोगों ने मतलब सबको
2: आग पर सेक करके बनाते
3: आग हैं। पर सेक करके, तो कुछ लोगों के दिमाग में बाटी को जब हम लोग बोलते हैं तो क्या आ जाता है कि अरे यार कौन अंगेठी जलाए, हाँ। कौन उसको रेत इकट्ठी करे गरम गरम
2: और कौन
3: सेके, तो बहुत ही बवाल। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी वे में क्या करना है। आपको आटा लेना है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये चार से पांच लोगों के लिए, ठीक है?
2: जी मैम।
3: तो आपको आटा सबसे पहले आपको आटा लगाना है, मतलब जैसे गेहूं का आटा लेना है बस, ठीक है? गेहूं का आटा लेना है और उसमें आधा मान लीजिए कि तीन कटोरी आपने गेहूं का आटा लिया है
2: जी,
3: तो उसमें आधी कटोरी आपने सूजी डाल देनी है,
2: आधी कटोरी सूजी।
3: सूजी क्योंकि उससे थोड़ा सा ना एक क्रिस्पी
2: थोड़ा क्रंची वाला टेस्ट,
3: क्रंची वाला टेस्ट आ जाता है,
2: तो आप सूजी डाल सकते हैं।
3: और उसके बाद में उसमें डालनी है थोड़ी सी हाथ से क्रश करके अजवाइन और दो से ढाई चम्मच घी,
2: अजवाइन और घी,
3: हाँ, और हल्का सा नमक, क्योंकि हम अगर उसको चोखे के साथ खा रहे हैं, चूरमे के साथ खा रहे हैं, तो फिर नमक हमको हिसाब से डालना है,
2: मतलब हल्का थोड़ा डालना,
3: हाँ, और थोड़ी सी खाने वाली जो मीठी सोडा होती है ना
2: जी मैम,
3: वो डाल देनी है आधा चम्मच, क्योंकि वो जब फूलेगी ना तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी फिर,
2: हाँ।
3: तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और टाइट आटा गूंथ लेना है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा टाइट, मीडियम वाला आटा आपको इसको लगा के कम से कम 15 से 20 मिनट पहले इसको आटे को आपको लगा के और मलमल के कपड़े से ढक करके इसको रख देना है, ठीक है?
2: ओके,
3: ये आटा लग गया, हम लोगों ने इसको रख दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने सत्तू भर करके खाया होगा
2: जी,
3: पर आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपके लिए स्पेशल से स्पेशल है कि अभी तक आपने समोसा खाया होगा,
2: हाँ।
3: कचौरी खाई होगी,
2: हाँ।
3: लेकिन जो बाटी है वो आलू भरी बाटी नहीं खाई होगी, आलू भर की बाटी,
2: ठीक
3: है? तो आपने इसका चोखा लगाना है। चोखा कैसे लगाना है कि आलू को बॉईल कर लेना है, आलू को अच्छे से मैश कर लेना है, और उसके बाद में आपने रखना है एक खुली हुई कढ़ाई जिसमें थोड़ा सा दो से तीन मतलब दो ही चम्मच काफी है रिफाइंड ऑयल, या फिर आप जो भी ऑयल आपको जो खाते हैं आप वो उसको रख सकते हैं दो चम्मच। फिर उसमें डालना है राई, जीरा और लौंग और थोड़े से सौंफ, सूखी धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार और बहुत ही महीन कटा हुआ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हींग, ये डाल करके आपको थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेना है और उसी में ही मतलब गैस को बंद नहीं करना है, उसी में ही आपको डाल देना है जो मैश किए हुए आलू है,
2: यानी कि एक तरीके से छौंक लेना है
3: आलू को और अच्छे से उसका भरता लगा लेना है
2: जी,
3: ठीक है? उसको बहुत अच्छे से मिला के भरता लगा लेना है। अब भरता ठंडा होने दीजिए और आपने अब इधर हमारा आटा भी फूल करके रेडी हो गया है
2: जी।
3: अब आपको मैं बताऊंगी कि ना आपको आग जलानी है, ना आपको अंगीठी बनानी है, ना आपको इसमें रेत का इंतजाम करना है। आपके घर में होगा अप्पे पैन,
2: हाँ।
3: अप्पे पैन होता है, सभी के घर होता है आजकल, तो सभी के घर में होता है। मतलब अप्पे पैन लेना है और अप्पे पैन को आपने ग्रीस कर देना है और अभी आपको गैस ऑन नहीं करना है, ठीक है। और छोटी सी लोई लेनी है, मतलब बहुत छोटी भी नहीं करिएगा, बहुत मोटी भी लोई नहीं,
2: मीडियम।
3: अगर आप मोटी करेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा अंदर से, है ना, और अगर पतली करेंगे तो वो जल्दी फट जाएगा।
2: ओके।
3: तो मीडियम, थोड़ी सी छोटी सी, जैसे आटे की लोई लेते हैं हम लोग,
2: रोटी
3: एक रोटी की लेते हैं, बस वही लेनी है, रोटी वाली लेनी है, और उसमें से हाथ से उसको गोल गोल करके उसकी कैविटी बनानी है, मतलब गोल जैसे उसमें,
2: जैसे बाटी की तरह होता है ना, वैसा ही आपको बनाना है।
3: हाथ में लेना है और उसका छोटा सा मतलब गोला कर लेना है और उसमें जो आलू का चोखा बनाया है वो उसमें फिल कर देना है
2: जी,
3: और उसको घुमा घुमा के अच्छे से उसको पैक कर लेना है। अच्छा, अब एक टेक्निक बता रही हूँ कि जब आपका वो एक बाटी पैक हो जाए, उसके बाद में जिस तरफ से आपने उसको पैक किया है उसके उल्टे तरफ से चाकू से क्रॉस का निशान लगा देना है, हल्का सा, हल्का, बहुत तेज से मत करिएगा वरना फट जाएगी।
2: हल्के हाथ,
3: हल्के हाथ से चाकू का दो जैसे क्रॉस में प्लस का निशान लगा देना
2: जी मैम।
3: ऐसे ही आपने सारी बाटियों को तैयार कर लेना है। अब आपको गैस को ऑन करना है, अप्पे पैन रखना है, उसमें अच्छे से ग्रीस कर लेनी है, ऑयल की ग्रीस कर लेनी है, ठीक है। और अब आपने वो एक एक कैविटी में एक एक आपने पूरे
2: बाटी रख देनी है,
3: ठीक है, और ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा देना है। गैस को सिम कर देना है, बिल्कुल सिम टू मीडियम नहीं, बिल्कुल सिम कर,
2: बिल्कुल सिम कर,
3: सिम कर देना है और ढक्कन ऊपर से ढक देना है। आपने देखना है मतलब 6 से 7 मिनट के बाद में आपने उसको पलटना है, जैसे ही वो पक जाएगी जो क्रॉस किया था निशान
2: जी
3: वहीं से वो खुलने लगेगी।
2: ओके।
3: और जब वो खुलने लगेगी वो इतनी क्रिस्पी हो जाती है कि बस आपने कटोरे में ऑयल को मतलब जो देसी घी को अलग से गरम करके रख लेना है और फिर उसमें जैसे आप अप्पे से निकाल रहे हैं उसमें डुबो रहे हैं। अब आपने एक चटनी तैयार करनी है, चाहे आप सूखे लाल मिर्च और टमाटर की चटनी बना सकते हैं, हरी धनिया की चटनी बना सकते हैं और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, या तो चोखा भी बना सकते हैं। तो चोखे के लिए आपको 3 चीज को पका लेना है गैस पे, जिसमें बैगन होगा, टमाटर होगा और आलू होगा
2: जी।
3: सबको गैस पे पका लेना है, मतलब जैसे बॉयल नहीं करना है,
2: पका लेना है, भून लेना है।
3: हाँ, भून लेना है।
2: आलू आग पे भूनते हैं ना कभी-कभी, उसी तरह
3: आलू को भले आप बॉयल कर लीजिए लेकिन टमाटर और बैगन को तो भून लेना है और बस उसके छिलके उतार करके उसमें प्याज, लहसुन, हरी धनिया, हरा मिर्चा, जो भी आपको डालना हो अच्छे से उसको मैश करिए और ये आलू वाली जो बाटी है आप इसको उसके साथ एंजॉय करिए।
2: मतलब आज तो बोलना ही पड़ेगा
3: क्या?
2: और आज बहुत दिन बाद मुझे बोलना पड़ेगा
3: क्या?
2: कि हमारा मंडे जो है वो हिट है और हमारी ये बहुत ही बेहतरीन बाटी चूरमा, तो मतलब सॉरी बाटी चोखा जो है वो सुपर से भी सुपर हिट है। मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे, मेरे मुंह में पानी तो आ ही रहा था लेकिन मैं गांव भी पहुंच गई ये बैठे बैठे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ये गांव में और जो मतलब बहुत ही टेस्टी बनता है,
3: लेकिन गांव का जरूर है, लेकिन ये न्यू ट्रेडिशनल जो हमने बनाई वो अप्पे पैन में बनाई
2: जी मैम,
3: तो ट्रेडिशनल हुआ क्योंकि देखिए मतलब काफी लोग जो है ना लेडीज होती हैं जो वो पीछे हटती हैं कि यार बाटी चोखा कौन बनाएगा, बहुत मेहनत का काम है। पर मैं बताती हूँ आपको कि ये मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का काम है, अगर आपने तैयारी करके रखी है ना बैठ करके अच्छे से, फिर तो आपने सिम करके उस पे आपने लगा देना एक साथ बैठ करके कहीं पे पूरी उसको फिल करके आपने क्या कहते हैं उसमें लगा दीजिए और 5-6 मिनट के बाद में आपको फिर से उसको चेंज करना है और गर्मी में आपको किचन में खड़े होने की भी नीड नहीं है, सिम गैस में करके आपको आराम से वो
2: अब तो मैं मम्मी को काम पे लगाने वाली कि अब तो मुझे इसे खाना ही खाना है।
3: बहुत अच्छी लगी ना, जब मैं बनाऊंगी तो तुम्हें खिलाऊंगी पक्का।
2: श्योर मैम, लेकिन मैं भी मम्मी से जरूर कहूंगी कि मम्मी अब तो बनाओ। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कौन इतना वो करे, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि मतलब अब इंस्टेंट बनने वाले
3: हैं, इंस्टेंट बनने वाली है, ठीक है। तो नागेश्वर जी आ गए हैं, इट्स कुमार जी आ गए हैं एंड मुस्तफा सिद्दीकी जी, क्योंकि मुझे पता है कि 2:50 हो गए हैं तो ये जो लिसनर्स हैं वो आएंगे ही अभी, ठीक है। लेकिन हम लेंगे यहाँ पर ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे आज का टिप ऑफ द डे बताने के लिए। तो चलिए बस हम यूं गए यूं आए।

0: करा दे, हम क्या मांगे, क्या मांगे बताइए, लिसनर्स बताएं क्या मांगा जाए, क्योंकि जो मांगो वो तो मिलता नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बी पॉजिटिव, क्योंकि हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो चलिए मजाक से हट करके अब आते हैं हमारे टिप ऑफ द डे पे। तो आज जो टिप ऑफ द डे शुरू होने वाला है ना, वो भी थोड़ा सा मजाक को लेकर के ही है। अच्छा, ये कहते हैं ना मैम कि अगर आँखों में प्याज में मतलब प्याज काटते हैं तो अगर आँखों में आंसू आते हैं तो सांस बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब मुझे क्या पता। तो चलिए फिलहाल टिप्स बता देते हैं आपको, और आज का टिप ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि प्याज काटते वक्त आपकी आँखों में बहुत आंसू आते हैं, तो प्याज को छील करके और काटने से 10 मिनट पहले उसे फ्रिज में रख दीजिए, और 10 मिनट बाद निकालिए और फिर काटिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी आंखों में वो नहीं लगेगा और आंसू नहीं आएगा
1: और आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी।
0: हाँ, ये सास प्यार करती है फिर, मतलब हो सकता है नो, अगर नेचुरली भी प्यार करें,
1: मतलब मानती है कुछ सासें अच्छी होती हैं,
0: कुछ अच्छी होती है, क्वेश्चन मार्क कुछ,
1: मेरी मदर है।
0: हाँ मैम, मैं तो वही मैंने ना कुछ
1: कुछ
0: और कुछ तो ऐसी। चलिए खैर,
1: चलो
0: नेक्स्ट वाला बता देते हैं, एक और बहुत ही यूजफुल है, वो ये है कि अगर आपकी फ्रिज में से भी थोड़ी अजीब सी बदबू कभी कभी होता है ना कि आने लगती है, तो क्या करना है आपको कि छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और भर करके फ्रिज के एक कोने में रख देना। वो क्या होगा कि जो भी बदबू वगैरह उसको सबको सोप कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर आपके फ्रिज में से कोई भी बदबू नहीं आएगी।
1: ओके, वाओ, तो ये तो बहुत ही अच्छी सी टेक्निक थी। तो चलिए आज के खाना खजाना में हम लेते हैं आपसे विदा, और कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
0: बाय दोस्तों।
1: क्या, अरे बाय, जाने का टाइम हो गया आंटी का।
0: हाँ मैम, जाने का टाइम।
1: तो वंस अगेन टेक केयर, बाय
0: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
7: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
8: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
9: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
10: अरे सुना?
11: क्या?
10: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
11: वाओ!
10: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
12: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
13: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
12: और जेंट्स के लिए?
13: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
12: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स, मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
13: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
11: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
14: मतलब?
11: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
13: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

गर्मियों में केक तो बिना हवाओं के नहीं मिलती, बिना पानी के नहीं मिलती और बिना कुछ ठंडे एहसास के नहीं मिलती। और ये ठंडा एहसास दिलाता है आपको आपका अपना शो यानी के कॉलर ट्यून गुंडा। हाँ जी, जब आप अपनी फरमाइशों को करवाते हैं ट्यून। फिलहाल के लिए आपने अभी ये वाला गाना तो आनंद ले ही लिया है, मतलब कि जरा सा मुखड़ा ही हमने सुना दिया आप सभी को। आज का थोड़ा सा हटके एंट्री ले लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो कि सबसे पहली डिमांड हमारे पास में आई हुई है प्रबल मिश्रा पंडित जी की। चलिए तो आपको सुना देते हैं कि आज ही क्या सुनना चाहते हैं। और अगर आपको भी अपने सॉन्ग्स को ट्यून करवाना है और आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा केक चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में थोड़ा सा सुकून अगर कोई देता है तो आपकी होती है पसंद। पसंद कैसी भी हो सकती है, वैसे बोलते हैं ना जब मोहब्बत हो किसी से और उसके बाद में वो जो गूज़बम्स आते हैं या फिर कुछ समथिंग स्पेशल सा फील होता है, तो किससे होता है, इन्हीं नगमों से जो कि जज्बात से मिलकर बने होते हैं। तो अगर आपको भी अपने गानों को ट्यून करवाना है तो मिला लीजिए 6393316429। फिलहाल के लिए चलते हैं इस वाली डिमांड की ओर। एंजॉय द ट्रैक।

डिमांड किसी और की नहीं है, और मुझे लगता है कि ये गाने का जवाब अगर कोई दे सकता है तो ये गाना ही दे सकता है। इसलिए हम लेंगे अब अमित कुमार जी की डिमांड को, उसके बाद आएंगे हम राम भवन जी की डिमांड पे, बड़े दिनों बाद जो हमें दिख रहे हैं बभनान की गलियों से। उसके बाद होंगे हमारे इंडिया वाले देवी प्रसाद जी, फिर होंगी हमारी प्यारी दरक्षा अंसारी जी सीतापुर से। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए और एंजॉय करिए इस ट्रैक को इन योर ओन शो कॉलर ट्यून गोंडा।

आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को, जो कि है राजा हिंदुस्तानी मूवी से 90s हिट्स में से। अगर बात करें बहुत ही प्यारे प्यारे रंगमुखी, तो इसके सारे नगमे एक से बढ़ के एक है। कोई भी गाना आप ट्यून कर लीजिए, आपका सफर बड़ी आसानी से कट जाया करता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो की है राम भवन जी की, जो की आज बड़े दिनों बाद बभनान गोंडा से इधर की ओर, जिन्होंने रुक किया, हमें लग रहा है गर्मी का सीजन इनको थोड़ा सा रास आ गया कि चलिए आज एक गाना सुन ही लेते हैं। तो चलिए हम भी सुनते हैं इनकी पसंद का ये वाला गाना, 3 से 4 के सफर में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा, आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाना 69.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

भाइयों और बहनों, श्रोताओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। नैना जरा बीमार नहीं होते, बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, और इसीलिए नैनो के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि नैनो की बात तो नैना ही जाने रे। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं, हमारे इंडिया वाले देव प्रसाद जी की, और उसके बाद आएंगे हम अपनी प्यारी प्यारी प्यारी सीतापुर वाले लिसनर की ओर। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, और अगर आपको भी अपने प्यारे नगमों को ट्रैक करवाना, नहीं नहीं ट्यून करवाना है, तो मिला लीजिए 6393316429 यानी कि 6393316429। क्या बात, बहुत खूबसूरत सा नगमा। थैंक यू देव प्रसाद जी, आज हमने बहुत सही सिलेक्शन किया।

हाँ जी, और देवी जी के इस सॉन्ग के बाद अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि मेरे मोस्टेस्ट फेवरेट मूवी में से है। भाई कम से कम मैंने इसको 30 दफा देखा होगा, इससे कम बार तो मैंने इस मूवी को नहीं देखा। चलिए आप भी सुन लीजिए और जान लीजिए कि मेरी इतनी पसंदीदा मूवी कौन सी है।

0: तुम प्लीज मेरे साथ शादी की शॉपिंग के लिए चलोगे? अकेले मैंने जो भी सिलेक्ट किया उसमें पुरानी सरू लग रही थी।
1: प्लीज अंदर,
0: मुझे उस दिन सुंदर लगना है।

हाँ जी, और ये मूवी आपको ये समझाती है कि हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन अगर कोई हमसे मोहब्बत करता है ना तो उसके लिए हम पूरी दुनिया होते हैं। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ज़्यादा वाली फीलिंगफुल मूवी है। और रक्षा जी का भी यही कहना है कि भैया इन्होंने भी कई दफ़ा देखा है। फिलहाल बढ़ेंगे हम रेणु तिवारी जी की डिमांड की ओर और देखते हैं रेणु जी आगे मैं सुनना क्या चाहती हैं।

भाषा में। अभी आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को जो कि है भोले भंडारी का एक प्यारा सा भजन, जिसकी डिमांड की गई थी रेणु तिवारी जी की ओर से। और अगर आपको भी अपने गानों को नगमों को ट्यून करवाना है तो मिला लीजिए वही नंबर जो कि आपका जी हाँ पसंदीदा चैनल यानी के रेडियो गाना 89.6 FM के स्टूडियो का नंबर है। नंबर वही है 6933316429 यानी कि 6393 इससे पहले कि मैं और कोई गाना प्ले करूं, चलते हैं उस ओर जिस ओर आपके पैगाम आता है यानी कि आपके मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं आपका प्यारा जी हाँ आप घर भी कह सकते हैं छोटा वाला जिसको कहते हैं चैट बॉक्स। और उसमें अगर मैं सबसे पहले मैसेज की बात करूं तो हमारे पास में जो सबसे पहला मैसेज में दिख रहा है वो है हमारे मुस्तफा जी का, जी हाँ हमारे इंटरनेशनल लिसनर। और इसके अलावा राम भवन जी हैं बबनान गोंडा से, इसके अलावा है सुरेंद्र यादव जी, हाँ जी सुरेंद्र यादव जी हैं। और इसके बाद में है कमल नयन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दर्शन सारी जी हैं, प्रबल मिश्र जी पंडित जी हैं और नागेश्वर धाकर जी भी आ गए हैं रतलाम की गलियों से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और है हमारे अब्दुल मुजीन जी जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से, लिखते हैं उम्मीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार में रखना याद, रब तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है भाई, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मुझे देने वालों की कतार में रखना याद, रब तेरे सिवा तेरे दर के सिवा सर झुकाना कहीं अच्छा नहीं लगता। और यकीन मानिए हम जिस भी इंसान के आगे सर झुकाते हैं या कुछ कहते हैं कि भाई मेरे से तेरे को ये चाहिए, तो वो हमारे लिए ऊपर वाले की रहमत से बढ़ के मतलब उसे कम नहीं होता है। तो अगर आप किसी के लिए रहमत हैं तो उसको बना के रखिएगा, आप बहुत खास है किसी के लिए, फिर ही वो आपसे उम्मीद लगाता है, अदरवाइज कोई किसी से उम्मीद नहीं लगाता आज के ज़माने में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मैसेज की ओर जिसमें हैं जस्सी जी हमें दिख रहे हैं और इनको डेविल गाना काफ़ी पसंद है, डेविल मेरा यार थैंक यू। और मीनू जी हैं गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और वो गर्मी में भी सजा देता है, वो सर्दी में भी सजा देता है, टंकी का पानी हर मौसम में दगा देता है। अच्छा किसको दाग दिया ये भी बता दीजिए, पानी अगर हद हो गई है क्या मजाक है, कोई बात नहीं, टंकी का पानी दगा कैसे देता है किसी को, दग कैसे सकता है कोई टंकी के पानी से, भाई टंकी के पानी में कोई नहा सकता है, कोई उसको पी सकता है, उसका आनंद ले सकता है, लेकिन दग कैसे सकता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर और इस डिमांड को सुनने के बाद हम आएंगे नेक्स्ट डिमांड को लेकर के, और कुछ और मैसेजेस हैं उधर की ओर भी रुक करेंगे। और ये है अब्दुल मुजीम जी की डिमांड अहमदाबाद से और इसको डेडिकेट किया गया है अजीज साहब को जो कि हैं मुंबई से। एंजॉय द ट्रैक।

गाने ने तो हमको भी थोड़ा सा भाव विभोर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इमोशनल वाले सॉन्ग सुनते हैं ऐसे वाले, तो आपको आपके अपने वो याद आ जाते हैं जो आपसे बिछड़ गए हैं। हो सकता है वो दोस्त हों, हो सकता है वो पेट्स हों, या फिर कोई आपका जज्बात। हाँ, इंसान को आप जज्बात का भी नाम दे सकते हैं, या कोई ख़ास तोहफा जो आपका टूट गया हो, या फिर कुछ उसके साथ में हो गया, वो गुम गया हो। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की, और उससे पहले कुछ और मैसेजेस हैं, जैसे कि हमारे कैफ मोबाइल जी हैं गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एस जी हैं, एस जी का भी स्वागत है। और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो बादशाह जी हैं, प्यारी सी आवाज़ वाली गर्मी की दोपहर में ठंडाई भरी, ओके ठंडाई भरी एनर्जी वाली फीलिंग देने वाली सुपर मैम को नमस्कार हमारा। ओके क्या बात है भाई बादशाह जी, आप ही ऐसी बातें कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आयुषी जी हैं, वंडरफुल सॉन्ग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नीतू जी हमारे साथ में बनी हुई, नाइस सॉन्ग बोला है, थैंक यू। ओके और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की ओर अगर बढ़ेंगे तो अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, और मुँह मीठा कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारा निक नेम रखा हुआ गुलाब जामुन, इसलिए हम कहते हैं इन्होंने हमारा मुँह मीठा करा दिया है, और हमें तो मिले जिंदगी मिल गई है ऐसा कहना है नागेश्वर जी का, थैंक यू सो मच। और आपने काफ़ी दफ़ा पिक्चर देखी है मुझे मालूम है, क्योंकि जो इस पिक्चर को कई दफ़ा देखा है जिसने सनम तेरी कसम को, वही इसके गानों को काफ़ी पसंद कर सकता है। वाओ ग्रेट सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में हमारी चंगू जी हैं, मंगू जी लापता है, कोई बात नहीं चंगू जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक वाला अभिनंदन है, आज नेहा नीना साथ साथ हैं। ओके आप दोनों एक ही रूप में हैं, चलिए ठीक है, वैसे भी बहनों के अंदर आत्माएं बसती हैं एक दूसरे की और हम मान लेते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है किसकी ये बता देते हैं, ये है डिमांड हमारे सुनील कुशवाहा जी की, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वाली डिमांड पे जो हो गई हमारे सुरेंद्र यादव जी की, फिर होंगे हमारे राजू सलमानी जी यानी रॉबिनहुड जी, राजेश कुमार जी फ्रॉम सॉरी रमेश कुमार जी फ्रॉम महाराष्ट्र में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसके बाद राजेश जी बैंगलोर से। एंजॉय करते रहिए अपने अपने गानों को।

एक्टर साहब को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि हम एक लोग का मोबाइल नंबर ढूंढते रह गए, आज तक ना पता चला। सामने से कहा भी गया आप किसी से भी ले लीजिए, हम तो अपना नंबर नहीं देंगे, और आज तक हम नंबर ले नहीं पाए। लेकिन इस बार उम्मीद है जब नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी उनसे, उनका नंबर उन्हीं के फोन से लेंगे। हाँ, थोड़ा सा दिमाग तो हम भी लगा लेंगे, अभी तक दिमाग नहीं, अभी तक जज्बात लगाया था इसलिए हमें नंबर नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार आपकी आरजे आकांक्षा जरूर अपने उस प्यारे वाले फ्रेंड से वो नंबर जरूर निकाल पाएगी। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की, जो कि सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

अपनी मर्जी नहीं थोपते हैं किसी पे, सामने वाले की मर्जी को अगर प्रायोरिटी देते हैं तो फिर आपका दिल कभी नहीं टूटेगा। यकीन मानिए, नीना जी का कहना वाटर सॉन्ग। आकांक्षा जी, आप यकीन मानिए इसके आगे जितने भी सॉन्ग है सब वाटर वाटर सॉन्ग वाले ही सॉन्ग है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली सॉन्ग की ओर, और ये हमारे राजू सलमानी जी यानी कि रॉबिन हुड जी की डिमांड। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना, वो तो भाई मैं प्ले करके इतना थिरकती हूँ कि मुझे भी नहीं पता है मैं कितना थिरकती हूँ। बने रहिए 3 से 4 के सफर में, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजू आकांक्षा। फिलहाल ये गाना आप तक पहुँच रहा है आपके रेडियो सेट पे, कहां से? रेडियो गाना 89.6 FM के शो कॉलर ट्यून गोंडा से। एंजॉय द कैट।

बाद जो लगातार दो गाने हैं ना वो आपको बिल्कुल से थिरकने पे मजबूर कर देंगे। थोड़ी गर्मी मानते लेकिन कूलर के सामने अगर आप बैठोगे झूम तो जाएंगे, आपका दिल मन जरूर झूमेगा। और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट सॉन्ग होगा वो होगा हमारी चंगू मंगू जी की जोड़ी को डेडिकेट, और अगर हमारे नागेश्वर जी सुने होंगे तो उसके बाद वाला सॉन्ग उनके लिए स्पेशली है।

जी हाँ, आपने इस गाने का कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में। और डिमांड किसी और की नहीं भैया, महाराष्ट्र से आई हुई है, बड़ी ही प्यारी सी डिमांड है जिसपे हम अक्सर डांस करना पसंद करते हैं। रमेश कुमार जी हैं, अगर आपने कोई गाना नहीं बजाई, ये बजा दे तो अपन बिल्कुल नाचने लगता है। और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे अपने चंगू मंगू जी की जोड़ी को। एंजॉय करिए आप भी हमारे साथ में, क्या ट्रैक है, वाह वाह वाह। और मुझे ये भी पता है कि अनुष्का जी का भी ये फेवरेट है। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

माय गॉड, श्रोताओं बता रही हूँ, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होती है इस सॉन्ग के साथ में मेरी, मैं पागल सी हो जाती हूँ। और अगर आपका भी कोई पसंदीदा सॉन्ग हो और वो ट्यून हो जाए, आप भी पागल होने से रह नहीं सकते। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को और थिरकिए हमारे साथ में।

वाली डिमांड की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमको थिरकने पे मजबूर किया, रमेश कुमार जी फ्रॉम महाराष्ट्र। और अभी बढ़ेंगे बैंगलोर वाले बाबू जी की ओर, यानी कि राजेश जी की ओर, और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे अपने प्यारे नागू जी को, जो हमें सुनते हैं रतलाम की गलियों से। और एंजॉय करिए, व्हाट अ सॉन्ग।

हवाई रोग कैसा भी हो सबका इलाज है, लेकिन प्रेम रोग का कोई इलाज नहीं है सिवाय महबूब के। और ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है बड़े बड़े महाज्ञानियों का। और प्रमुख जी का कहना है भाई ओके, तो उम्मीद है आप बहुत जल्दी सकुशल हो जाएंगे, इनकी दवा भी 6 महीने तक चलेगी। इनसे हमने इनका हाल चाल पूछा था, फिलहाल आप लोग इनके लिए दुआ करिएगा थोड़ा जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि हमारी महफिल में ये आया करें और हम इनके खैर मकदम की दुआ करते रहे यूं ही। और आप सभी की भी फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है हमारे मोहम्मद अजीज जी की डिमांड, जो हमें सुनते हैं मुंबई से। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड है ना, वो बहुत खास है। खास इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि आज है किसी का बर्थडे और डेडिकेशन में एक सॉन्ग बोला गया है बजाने का। तो भाई हम तो हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग नहीं बजाएंगे, हम तो बजाएंगे उनकी पर्सनैलिटी पर सूटेड एक सॉन्ग। और वो कौन सा सॉन्ग होगा वो आपको बताएंगे इस नगमे के बाद में। एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर को, यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा को।

कुछ गाने माने जाते हैं बेंचमार्क्स, उन्हीं में से एक ये गाना आपने अभी एंजॉय किया। म्यूजिक है यार रहमान जी का, लिरिक्स की बात करें तो जावेद अख्तर जी, और आवाज थी हमारी ऋचा शर्मा जी की। वक्त के तकाजे के कारण हमें आगे बढ़ना होगा, और बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी अजी साहब जो हमें सुनते हैं मुंबई से उनकी। और अभी नेक्स्ट डिमांड है हमारी सविता जी की, गीतू जी के लिए। आज है हमारी गीता श्रीवास्तव जी का बर्थडे, तो सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन की, और हमारी ओर से जो हमें लगता है कि इनको डेडिकेट करना चाहिए ये वाला सॉन्ग। भैया हम थोड़े से खिसके हुए इंसान है, और खिसका हुआ सॉन्ग हमारा हमारी प्यारी गीतू जी के लिए। सविता जी जरूर रेटिंग करिएगा, बताइएगा जरूर कि आप दोनों पे क्या ये गाना सूट करता है। वैसे मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया है, और आप सभी बता सकते हैं ये गाना क्या हमारी सविता जी और गीता जी पे सूटेड है या नहीं। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन गीतू जी।

भाई जिन्होंने नहीं देखा है वो क्या जानेंगे खूबसूरती की मिसाल क्या होती है। सविता जी और गीतू जी दोनों हमारी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लिसनर हैं और इसलिए हमने ये गाना उन्हें डेडिकेट कर दिया है। और आज हमारी प्यारी गीता जी का बर्थडे और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लगातार, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कमल जी का कहना एकदम फिट है, बिल्कुल सही बोला भाई साहब आपने, बिल्कुल फिट है। प्रबल जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे गीता दीदी, सदा खुश रहें और हम सभी भी खुश रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजर जाएगी और आप सभी का साथ और आशीर्वाद बना रहे। गीता दीदी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक हमारी प्यारी लिसनर जिनका नाम है टू डियर, ओके गीता दी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्होंने भी जी हम मोहर मार दिया, काफ़ी बढ़िया गाना है और गाना बिल्कुल बढ़िया है भाई। जो जो औरतें घर को संवारे जिनकी वजह से पूरा मतलब माहौल बन जाए वो तो इस गाने को बिल्कुल से उन पे डेडिकेशन बनता है। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को और आएंगे फिर नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ जो कि होगी हमारे अक्षय त्रिपाठी जी की डिमांड। और बस एंजॉय करिए ना।

बात है भाई, मजा आ गया हमको तो सुन के, बड़ा मजा आया और आप सभी को भी आया क्योंकि आपकी रेटिंग बता रही है। सविता जी आपका भी शुक्रिया और नागेश्वर ढाकर जी ने भी भाई विश कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। कैफ मोबाइल जी आपने अगर प्लीज से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं भोजपुरी गाने नहीं बजाती, बड़े बवाल होते हैं आप लोग के भोजपुरी गानों पर, इसलिए मैंने एकदम से अवॉइड ही कर दिया। कोई और सॉन्ग होता जरूर बजा देती। फिलहाल बढ़ेंगे अक्षय जी की डिमांड की और उसके बाद हम आएंगे अपने मुस्तफा जी की डिमांड के पास में, फिर चलेंगे अगर वक्त रहा तो रीत लाल जी की लास्ट डिमांड में भी आज मैं लूं, या फिर मोहिनी जी ने एक सॉन्ग डेडिकेशन किया था उस गाने को मैं चुनना चाहूंगी। देखते हैं फिलहाल किसके गाने को मैं बजाने वाली हूँ। फिलहाल ये गाना सुनिए जो कि अक्षय जी की डिमांड है, फ्रॉम गायत्रीपुरम।

0: गया।
1: ये डिमांड हमारे मुस्तफा जी की और इसको एंजॉय करिए, उसके बाद में बहुत सारी डिमांड आज रह जाएगी, जबकि मैंने ज्यादा बक बक बक बक नहीं की है, फिर भी क्या कर सकते हैं यार, एक ही घंटा कम पड़ जाता है, पता नहीं क्यों।

हाँ जी, ये अंताक्षरी वाला सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया हमारे मुस्तफा जी की डिमांड पे, जो मैं सुनते हैं सऊदी अरेबिया से। और अभी आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे रीत लाल जी की डिमांड है। बड़ी खूबसूरत सी डिमांड, इसको तो हम बिना ट्यून के रह ही नहीं सकते थे। और आज की लास्ट डिमांड हम लेंगे फिर मोहिनी तिवारी जी की, जो कि डेडिकेशन में आया हुआ है कविता पांडे जी के। एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

0: भाई यकीन माने किसी का इंतजार करिए ना तो सभी आ जाएंगे, लेकिन वही इंसान नहीं दिखता जिसका हम इंतजार करते हैं।
1: आ गए सारे कब आएगा मेरे बंजारे,
0: क्या गाना है, मजा आ गया।

शर्मा जी और मनीष शर्मा जी को भी हमारी ओर से गुड मॉर्निंग। पहला वाला नमन वंदन जो होता है वो गुड मॉर्निंग ही होता है, इसलिए आपको भी गुड मॉर्निंग। और रिंकू जैन जी हमारे बीच में है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इनके सेन साहब इनसे मिलने नहीं आए, इसलिए इन्होंने ये मैसेज लिख दिया है कि भाई ये गाना हमारे सेन साहब के लिए, द ग्रेट सेन साहब जो हमें राजस्थान से सुनते हैं। और आज जिन जिनके रंग में रह जाएंगे उनसे माफीनामा मैं जारी करती हूँ। सुरेश कुमार जी चौगुंडा से, निशा जी हैं हमारी पटेल नगर से, संतोष मौर्य जी हैं पटेल नगर से, इसके अलावा मुमताज अंसारी जी हैं और रोशन लाल जी, और एक दिलीप कुमार जी की भी कॉल आ रही थी जो मैं रिसीव नहीं कर पाई थी, और एक आध कॉल और भी मुझसे छूटी है। तो आप सभी का दिल से पहले शुक्रिया और माफी भी चाहूंगी। वक्त एक ही घंटा होता है और आप सभी का प्यार बहुत ज्यादा होता है, और क्या करें, प्यार ऐसी चीज होती है जिसको हर कोई नहीं झेल सकता, पर कोशिश करती हूँ कि मैं बर्दाश्त कर पाऊँ आप सभी की मोहब्बत को। फिलहाल इस गाने को

बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड थी रीतलाल जी फ्रॉम अलाहाबाद, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट डिमांड की ओर, जो कि मोहिनी तिवारी जी की तरफ से उनकी बेस्टी के लिए, जो उनसे रूट की जा रही हैं कविता पांडे जी के लिए। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मंडे का आज का ये सफर यहीं पे मैं रोकती हूँ, कल फिर से मुलाकात होगी 3 से 4 के सफर में। मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, आपने ट्यून करके रखा होता रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन को, और शो चल रहा था आपका फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। पानी पीते रहिएगा, खाते रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो 89.6 एफएम, आप सभी की धड़कन यानी गोंडा शहर की धड़कन। टेक केयर, टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स और अपने अपनों का भी ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now you listening ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज गोधूली प्रोग्राम में गोंडा की कुछ ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने क्षेत्र के खास होते हैं, उनके बारे में जानते हैं ताकि हमें ये पता चल सके हमको कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। उसके बाद आज वो यहाँ स्टैंड करते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि वो अपने क्षेत्र के खास होते हैं तो उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां भी हम हासिल करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर नीतू सिंह मैम, जो कि HOD पॉलिटिकल साइंस सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा से हैं। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में।
2: थैंक यू अदनान,
1: थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी हमने शेयर किया है अपने श्रोताओं से बताया है, तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, जिसमें मैं सबसे पहले आपसे बोलूंगा कि आप कहाँ की आपकी पैदाइश है, अपने माता पिता और अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए।
2: बिल्कुल अदनान, मेरी जो पैदाइश है वो बहराइच जिले की है, और जो मेरा मायका था वो बलरामपुर का है। मेरे मम्मी पापा जो वो बलरामपुर से थे, तो मेरी पढ़ाई भी बलरामपुर से ही हुई है। छोटी थी जब तक, चूँकि हमारे चार भाई और मैं अकेली बहन थी, तो जो तीन भाई थे वो बलरामपुर में रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, और जो मम्मी पापा थे वो गांव पे रहते थे। तो इसलिए हम भाई, जो हमारे तीन बड़े भाई थे, उन्हीं के साथ रहकर मैं पढ़ती थी, भाभी थी, और उसके बाद करीब 6 तक मैं उनके साथ रहकर पढ़ी। और फिर किसी कारण से मैं अपने मम्मी पापा के पास 7th में चली गई, तो 7th चूँकि गांव पे मम्मी पापा रहते थे, वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी होती थी, पापा हमको लेके आते थे, फिर बैठे रहते थे घर पे, फिर जब हमारी छुट्टी होती थी तब वो हमको लेके जाते थे। तो पूरा साल पापा ऐसे ही लाते थे और बैठे रहते थे, फिर उसके बाद में जब हमारी छुट्टी होती थी हमको लेकर घर जाते थे। और उसके बाद जब हम ऐसे 8th में आई, तो मैं खुद ही साइकिल चलाकर 5-6 किलोमीटर जाती थी। और फिर 9th, 10th, 11th, 12th वहीं GGIC बलरामपुर, वहीं पर हमने 9th, 10th, 11th, 12th किया। खैर जब मैं 11th में थी, हो गया था मेरा 18, चल ही रहा था तभी मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैंने इंटर किया, और उसके बाद 2 साल बाद बच्चा भी हो गया, और इस वजह से मेरी पढ़ाई में ब्रेक हो गया। और जब मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था, यानी जब वो BA करने चला, तो हम भी उसी के साथ, हमने भी अपना BA किया, MA किया, और फिर उसके बाद PhD की पढ़ाई की। जो मेरे मम्मी पापा थे, वो पापा काफ़ी लगभग 30 साल तक गांव के प्रधान रहे हैं, और उसके बाद हमारी मम्मी जब महिला सी, तो हमारी मम्मी काफ़ी दिनों तक गांव की प्रधान रही हैं, उसके बाद जिला पंचायत के सदस्य भी वो रही हैं, और काफ़ी वो कह सकते हैं वो समाज सेविका की तरह थी। जो अगर कोई भी आ जाता था कि बीमार है, किसी महिला की डिलीवरी है, कुछ भी दिक्कत है, तबीयत खराब है, तो वो साथ में लेकर तुरंत डॉक्टर के यहाँ चली जाती थी। यहाँ तक कि इतनी चाहे जितनी भी गर्मी हो, लखनऊ तक ले जाना हो तो लेके चली जाती थी, लखनऊ तक, दिल्ली भी एक आध बार गई हैं किसी को लेकर। तो मतलब सेवा में बिल्कुल, हमारे घर में गाँव वालों का आना जाना बिल्कुल लगा रहता था। तो काफ़ी उनके हिसाब से जितना उन्होंने सेवा किया है, उस हिसाब से देखें तो उनके आगे हम कुछ भी नहीं हैं। और जो पापा थे हमारे, चार भाई होने के बाद भी भाइयों से ज़्यादा हमको प्यार करते थे। जब मेरा जो छोटा भाई है, वो चूँकि थोड़ा सा चाहे पापा से डरता था, तो जब पापा बाजार जा जाते थे, लौट के आते थे, तो भाई कहता था कि देखो नीतू के पापा आ गए। तो अम्मा, जो हमारी मम्मी हैं, वो कहती थी कि क्यों, खाली नीतू के पापा हैं, वो तुम्हारे पापा नहीं हैं? तो कहता नहीं, वो खाली नीतू के पापा हैं।
1: मतलब इतना प्यार आपको मिला हुआ था कि भाइयों में भी मतलब ये होता था कि कितना ज्यादा वो सिर्फ आपके पापा है, क्योंकि आपको सपोर्ट बहुत करते थे। कहीं ना कहीं भाइयों में आप इकलौती थी।
2: जी जी बिल्कुल, चार भाइयों में अकेली थी, तो पापा सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते थे, भाइयों को भी करते थे, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन कुछ अटैचमेंट मेरा पापा के साथ ज्यादा ही रहा है।
1: और ऐसा कहा भी तो जाता है मैम कि जो वालिद होते हैं उनका बेटियों के साथ रिश्ता ज्यादा अच्छा होता है और माँ का थोड़ा सा लड़कों की तरफ झुकाव होता है।
2: जी,
1: ऐसा कहा जाता है।
2: हाँ, वो था उस मम्मी का जो थोड़ा है वो छोटे भाई की तरफ रहता था, पापा का मेरे तरफ। हम आते थे तो दोपहर में लेटते नहीं थे तो शाम को जल्दी सो जाते थे, तो पापा उठा के कि चलो खाना खाओ, अपने साथी खाना खिलाते थे, तो उनका थोड़ा लगाव मेरे तरफ ज्यादा था, तो इसीलिए भाई कहता था कि वो नीतू के पापा हैं।
1: अच्छा, बस यही वजह थी कि वो भाई बहनों में आ भी जाता है कहीं ना कहीं, वो थोड़ा सा होता है कि भाई मुझे नहीं मान रहे, देखो बहन का सब कुछ हो रहा है, एक जबान कहती है सब कुछ हाजिर हो जाता है। तो ये भाई बहनों में कंपटीशन तो खैर हमेशा रहता है। अभी आपके बाकी भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं?
2: अभी ज़्यादातर भाई तो अपना, चूंकि पहले बाबा हमारे जो थे वो जिम्मेदार थे, तो थोड़ा खेती उती ज़्यादा होने के कारण सब लोग खेती उती ही देख रहे हैं। अब उनके बच्चे जॉब वॉब कर रहे हैं। हाँ, मेरा छोटा भाई जो है वो सिंचाई विभाग में जॉब कर रहा है, बाकी तीन भाई अपना खेती उती देखते हैं।
1: ओके, तीन भाई अपना वही गांव पे ही खेती वगैरह देखते हैं, क्योंकि भाई वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो विरासत में मिली हुई है, खेती बाड़ी भी करना। और छोटे भाई जो हैं आपके वो सिंचाई विभाग में हैं, और आप अभी यहाँ अपनी सेवा दे रही हैं सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज में। बिल्कुल,
2: मैं बताना चाहूँगी कि जब मेरा लगभग तीन साल का ब्रेक हो गया, तब उसके बाद में हमें तो लगा कि इंटर करके ही रह जाना है, लेकिन फिर बाद में मेरी सहेलियों ने कहा कि फिर से करो, उसमें क्या छूट गया छूट गया, फिर से शुरुआत करो। तो तब जाकर हमने, जब हमारा छोटा भाई बीए करने जा रहा था, तो उसी के साथ मैंने भी फॉर्म डाल दिया और बीए किया, उसके बाद एमए किया। और एमए करते ही, चूँकि यहाँ जॉब उस समय पॉलिटिकल साइंस का कॉलेज में वो आया था कि यहाँ नया सब्जेक्ट आया है पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक, तो चूँकि यहाँ पर एक पाठक जी हैं बाबूजी, तो वो हमारे यहाँ नंदों को ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उनके द्वारा पता चला कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आया है। तो हमने आके अपना फॉर्म रेज्यूम दिया और उसके बाद में हमारा फ़ोन आया कि हाँ आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। उसके बाद बड़ी मैम सब टीचर्स को सपोर्ट करती थी कि हाँ आगे पढ़ो, कुछ करो, पीएचडी करो, जैसे अनुमोदन हो जाए, परमानेंट टीचर हो जाओ। तब मैंने पीएचडी के लिए सोचा, और फिर इसमें हमारे हस्बैंड का विशेष सहयोग रहा, उनके बिना ये ना होता, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। जो भी भागने दौड़ने का काम था वो उन्होंने ही किया, तो मेरा धीरे धीरे करके तीन चार साल में लगभग पीएचडी कंप्लीट हो गया। काफ़ी कुछ उसमें दौड़ना भागना पड़ा, वहाँ फैजाबाद जाना पड़ता था, तो हस्बैंड जाते थे, उसको लेके आते थे, फिर घर पे लेके आते थे, उसको करेक्शन करना पड़ता था, फिर बैठ के करेक्शन का मैटर होता था, कहीं बलरामपुर जाना है, कहीं फैजाबाद जाना है, मैटर के लिए भी दौड़ भाग करनी पड़ती थी। जो हमारे पीएचडी के सर थे वो बलरामपुर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के ओपी सर थे, ओपी सिंह सर, तो उनके अंडर में हमने पीएचडी किया है, जो हमारा तीन साल, लगभग तीन साल में कंप्लीट हो गया, और फिर थीसिस जमा हो गई, साल भर बाद उसका इंटरव्यू हुआ, ऐसे करके लगभग मैंने 2010 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया।
1: तो ये तो आपने बात कही पीएचडी की बताई, अब हम जानना एक बार फिर से आपके बचपन की तरफ मुड़ते हैं और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हैं।
2: जी जी जी, हम तो हैं बाल डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन चूंकि हमारी बुआ वहाँ थी तो घर में दादी बाबा थे नहीं, तो जब वो होना हुआ तो मम्मी बुआ के पास चली गई, तो इसलिए मेरा जो पैदाइश है वो बहराइच जिले में।
1: बहराइच की बात करें या फिर बलरामपुर की, दोनों देवीपाटन मंडल के ही जिले हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं नीति आयोग की लिस्ट में पिछले जिलों में आते हैं। यानी कहा जाए तो अभी रिसोर्सेज की काफी कमी है, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट होना वहाँ बाकी है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो उसके मद्देनजर अगर हम बात करें तो एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको पढ़ाई के दौरान किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल चाहिए होते हैं, अच्छे टीचर्स चाहिए होते हैं। दूसरी बात, आपका बचपन कैसा बीता, क्योंकि आप दुलारी थी पापा की।
2: जी जी बिल्कुल।
1: और चार भाई आपके अलग से, तो क्या आप शरारती थी या पढ़ने में बहुत अच्छी थी या एवरेज थी, कैसा रहा आपका बचपना?
2: नहीं, पढ़ने में तो एवरेज ही उस समय थी मैं, बचपन तो बहुत अच्छा बीता क्योंकि मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट रहा। उन्होंने स्ट्रगल तो काफ़ी करना पड़ा, चूँकि सेवन्थ से ही बताया कि पापा लेके आते थे, बैठे रहते थे, इंतज़ार करते थे, और फिर उसके बाद जब छुट्टी होती थी साथ में लेके जाते थे। फिर अगले साल फिर हम खुद साइकिल से, चूँकि एट्थ में थे, बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी, तो साइकिल से आते थे तो साथ में एक आदमी को भेज देते थे पापा कि जाओ साथ में रहो, जब लौटेंगी तो चले आना। तो लगभग 5-6 किलोमीटर जाना, 5-6 किलोमीटर आना, उसके बाद तो इसी तरह से हुई। और कोई उस समय बहुत सारे इंटर कॉलेज नहीं हुआ करते थे, 1-2-3 ऐसे इंटर कॉलेज थे, तो आगे की पढ़ाई, चूँकि सड़क भी उस समय बहुत ख़राब होती थी, रिक्शे से आना पड़ता था, घंटों लग जाता था बलरामपुर आने में, फिर जो समय दिया कॉलेज को उसके बाद फिर लौटने में घंटों लग जाता था, तो पहुँचते पहुँचते शाम के 4 बज जाते थे।
1: यानी पढ़ाई में कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल थी ही काफ़ी ज़्यादा। और ये बात बहुत सही बात है कि जिन लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं उनको परेशानियों का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कीमत भी पता होती है किस तरह से रिसोर्सेज की क्या कीमत है। यानी उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको ऑलरेडी रिसोर्स मिला है लेकिन अगर वो उनका ध्यान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनको कंसंट्रेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
2: बिल्कुल, अगर कंसंट्रेट नहीं होंगे तो आगे वो जो भी पाना चाहते हैं, चाह तो बहुत होती है कि हमको ये मिले, हमको वो मिले, लेकिन उसको पाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लगन होगी कि हाँ पाना ही पाना है, तभी उसको पा सकेगा कोई।
1: बिल्कुल सही बात है। आपने बताया कि आपके जो पापा थे वो 30 सालों तक लगातार प्रधान रह चुके हैं और माता जी का भी यही रहा टेन्योर, और उसके बाद वो जिला पंचायत सदस्य भी रहीं।
2: जी बिल्कुल।
1: तो आपने बताया वो समाज सेवी थे। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि घर वालों की छाप का असर आप पे पड़ता है, यानी आपकी जिंदगी पे पड़ता है, तो पापा का या मम्मी का कोई असर पड़ा क्या? आपने भी समाज सेवा में कभी हाथ आजमाया क्या, या आपने किस लेवल पे लोगों की हेल्प की?
2: नहीं, उस लेवल तक तो हम नहीं जा सकते क्योंकि जब मम्मी किसी को लेकर डॉक्टर दिखाने या कोई काम करवाने उनको लेकर जाती थी तो हम सोचते थे इतनी गर्मी है, ये कहाँ लेके जा रही हैं, कैसे लेके जा रही हैं, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। मत थोड़ा सा उतना हमको इस

0: साल तक जिला पंचायत सदस्य थी, करीब 25 साल तक वो प्रधान थी। अभी भी जब भी सीट आती है महिला सीट या सामान्य सीट तो वो हमेशा प्रधान चुनी जाती हैं।
1: आपने पॉलिटिकल होने की बात बताई कि मम्मी भी आपकी कहीं ना कहीं प्रधान रह चुकी हैं और जिला पंचायत सदस्य, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो पॉलिटिकल फैमिली होती है उनके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, बड़ी दिक्कतें भी होती हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी भी फैमिली होती है जहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस हुई, क्या कभी डर के साए में आप भी जिए, क्या आप लोगों को भी निकलने पे बाहर रिस्ट्रिक्शंस लगती थी मम्मी पापा की तरफ से कि नहीं ऐसे नहीं जाना, हूं क्या नहीं जाना, क्या ऐसा कुछ कभी आपने फेस किया?
0: नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रधान का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव इतने बड़े स्तर पे होता नहीं है। कुछ गांव होते हैं प्रधान के लिए तो एक दो गांव, तीन गांव ऐसे होते हैं, जिला पंचायत के लिए 10-12-15-20 गांव होते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे कोई ऐसा हुआ नहीं कि हाँ कुछ डरने की बात हो। हाँ, विरोध करने वाले तो बहुत सारे होते हैं, विरोध हैं, लेकिन फिर बाद में सब स्थिति जो होती है सामान्य हो जाती है।
1: बिल्कुल सही बात आपने कहा कि देखिए बाद में तो स्थितियां सामान्य हो जाती है, और फिर चुनाव तो ऐसा होता ही है जहां पे आपको पूरा राइट होता है कि कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर उसका क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं तो आप भी एक कैंडिडेट बन सकते हैं। उसमें कोई खैर कहने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो समाज है, ये जो देश है, वो लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन से क्या आपका कोई एम्बिशन था कि आपको आगे जाके टीचिंग ही करनी है, या कुछ और था, या अगर आज आप टीचिंग कर रही हैं तो उसपे माताजी का हाथ है या पिताजी का, उन्होंने कहा था इसको करने के लिए?
0: नहीं,
1: क्या रहा?
0: थोड़ा सा शादी जल्दी होने का कारण मेरा ये था कि पिताजी की हमारी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो इस कारण से मेरी जो शादी हो गई जल्दी हो गई। तो चूंकि तब इंटर भी नहीं हुआ था, इंटर में वही गई थी तभी शादी हो गई, तो तब उतना कुछ सोचने समझने उम्र भी वो नहीं थी। शादी हो गई फिर क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे फिर पढ़ाई की फिर जुड़ते गए तो थोड़ा सा बाद में हुआ कि हाँ कुछ करना, ये तो सोच थी कि कुछ करेंगे, कुछ बैठेंगे नहीं, कुछ करना,
1: करना तो है ही है,
0: हाँ, कुछ करना है। और दूसरों को भी मैं कहती थी कि नहीं है, मान लो तो वो गांव से जुड़ी है तो कहती, गांव में भी स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल होते, तो कहते थे कुछ भी मिलेगा, मान लो 1000 रुपये मिलेगा तो तुम जाके थोड़ा एक्सपीरियंस लो, सीखो, और जब सीखोगी तो तुम बाहर भी जा सकती हो, बलरामपुर भी जा सकती हो पढ़ाने, थोड़ा एक्सपीरियंस लो। तो हम ये तो हमने भी सोचा था कि कुछ करेंगे।
1: क्या बात है, तो कुछ ना कुछ तो करने की वो ठानी ली थी, और आज बहुत कुछ कर रही हैं, बल्कि कुछ नहीं काफ़ी कुछ कर रही हैं आप। इससे बड़ी बात क्या होगी कि स्टूडेंट्स का आप करियर बना रही हैं, उनको गाइड कर रही हैं, उनको जीने का सलीका तरीका सिखा रही हैं, और एक टीचर होना बहुत बड़ी बात होती है। स्पेशली आपने PhD भी कर रखा है, तो इससे जाहिर होता है कि आपका डेडिकेशन दिखता है कि आप इस लाइन में कितना ज़्यादा आगे आई हैं और क्या क्या करना चाहती हैं। इसी बीच में वक्त हो चला एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का। हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा डॉक्टर नीतू सिंह मैम से, जो कि HOD हैं, पॉलिटिकल साइंस, सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली, PG कॉलेज गोंडा से। सो आप लोग कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर नीतू सिंह मैम से, जो कि HOD हैं, पॉलिटिकल साइंस, सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज से। अभी चूंकि आपने जिक्र किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि आपकी जो शादी हुई थी वो 12th में ही हो गई थी, क्योंकि शायद पिताजी ज्यादा बीमार थे। इस वजह से हर आदमी चाहता है पेरेंट्स की उनके रहते सामने ही एक अच्छी जगह, एक अच्छी फैमिली में उनकी बेटी बेटे की शादी हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें एज की, तो 12th में कोई बहुत ज्यादा बड़ी एज नहीं होती है और उस टाइम आप चीजों को समझ ही रहे होते, यानी अभी आप अपने को भी शायद संभालना सीख रहे होते। उस एज में आपकी शादी हुई, आप यहाँ पे ससुराल में आई, कैसे आपने खुद को मैनेज किया, कैसा रवैया रहा ससुराल वालों का, कितना सपोर्ट मिला और कितना आपने चैलेंजेस को फेस किया?
1: सपोर्ट तो उनका काफ़ी रहा, बिना सपोर्ट के ये जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ नहीं पहुँच पाती अगर सपोर्ट नहीं करते तो। उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं था, काफ़ी सपोर्ट किया पढ़ाई में, कोई वो नहीं, जैसे भी आना हो जाओ पढ़ो, कोई दिक्कत उनकी तरफ से कोई बाधा नहीं थी कि हाँ तुम पढ़ नहीं सकती या ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती या जैसे भी तुम पढ़ना चाहो पढ़ो, आगे जितना भी पढ़ पाओ पढ़ो, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया।
0: देखिए, आपकी इस बात से ही ये सच्चाई नजर आती है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 12th भी पूरा नहीं हुआ था, आप यहाँ चली आई थी, तो आपने 12th भी किया, उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स किया, फिर PhD किया, यानी इतना सब कुछ होने के लिए जाहिर सी बात है ससुराल का सपोर्ट रहा होगा, हस्बैंड का साथ रहा होगा, तो ही आपने ये सारी चीजें की मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं वो तो खैर एक अप्रिशिएबल ही है, उनकी तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर कोई साथ देता है, आपको यहाँ तक आई हैं आप, तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट रहा है, तो उन सभी का खैर आप शुक्रिया भी अदा कर ही रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि उनका साथ रहा। लेकिन खुद को एक मैनेज करना, मतलब आने के बाद आपका क्या रहा रवैया, आपने क्या सोचा कि अब हमें सिर्फ घरेलू ही हो जाना है, या फिर आपको अंदर वो कैसे जागा कि आपको जॉब करना है, और कैसे परमिशन मिली आपको आपके ससुराल से?
1: नहीं तो ये तो जब इंटर के बाद फिर बीच में BA का मैंने डाला था फॉर्म, लेकिन कुछ कारण से मेरा एग्ज़ाम छूट गया, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो फिर 3 साल का उसमें बीच में गैप हो गया। लेकिन बाद में जब मेरा छोटा भाई कर रहा था तो साथ में मैंने भी उसी में डाला, और मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट रहा, क्योंकि बलरामपुर से ही मैंने इंटर भी किया है, BA भी किया है, MA भी वहीं से किया है, PhD भी मेरी वहीं की है, तो दौड़ भाग करने का काम मेरे हस्बैंड ही किए हैं। PhD में भी उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, PhD में जो भी दौड़ भाग का मेडल लाना है, अगर फैजाबाद जाना है तो दौड़ के जाते थे, लेके आते थे, फिर लिख के देते थे, फिर वो जाते थे बैठ के कंप्यूटर पे उसको टाइप कराते थे, लेके फिर आते थे। उस समय यहाँ पर नहीं होता था, करीब 11-12 साल हो गया, तो वहीं फैजाबाद ही टाइप होता था, तो बैठ के टाइप कराते थे, रात रात रुकना पड़ता था, फिर लेके आते थे, फिर उसमें करेक्शन करते थे, फिर जो करेक्शन होता था फिर वो जाते थे। तो काफ़ी बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का भी रहा है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ।
0: बिल्कुल सही बात है कि बिना हस्बैंड के सपोर्ट के तो खैर यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल ही है, काफ़ी हद तक मुश्किल है। और अच्छी बात है कि खाली हस्बैंड का ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली का आपको सपोर्ट मिला है, क्योंकि आज आप अगर पढ़ा रही हैं तो जाहिर सी बात है फैमिली का सपोर्ट है, इस वजह से भी आप कर पा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि हम ये जानना चाहेंगे कि आप गोंडा आई, आपने PhD किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आप यहाँ से कैसे जुड़ी, मतलब आपकी पहली जॉब कहाँ थी, और अगर पहली जॉब आपकी यहाँ थी तो कैसे आपने यहाँ पे वैकेंसी के बारे में सुना, कैसे आप यहाँ से जुड़े इस बारे में बताइए।
1: मैंने बताया कि यहाँ पर जो बाबू जी हैं अरविंद पाठक जी, तो वो हमारे यहाँ नंदों को तब वो ट्यूशन पढ़ाते थे, तो हमारे घर उनका आना जाना था, तो उन्हीं के मुँह से हमने सुना कि नारी ज्ञान स्थली पी जी, उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आया है, म्यूजिक सब्जेक्ट आया है, तो उसमें टीचर्स की ज़रूरत है। तो जब सुना तो हम आके अपना रिज्यूम डाल के गए, फिर बाद में फ़ोन गया कि हाँ आ जाइए। तो मेरी पहली जॉब जो है वो यहीं हुई है। हम इससे पहले, क्योंकि उस समय मेरा एमए फाइनल ही हुआ था, और एमए फाइनल करते ही जब ये जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया तो मेरा यहीं पर सिलेक्शन हो गया।
0: ओके, तो आपने ज्वाइन किया था उसके बाद, चूंकि आपके यहाँ के, यहाँ के जो बाबू हैं वो घर आते थे, तो उन्होंने वैकेंसी के बारे में बताया, आप यहाँ से जुड़ी, और उस वक्त आपने ये भी जिक्र किया था कि पॉलिटिकल साइंस एकदम नया नया आया था, यानी आपके टाइम से यहाँ पे स्टार्ट हुआ।
1: जी बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक सब्जेक्ट जो था वो एक साथ ही आया था, तो तब से 2006 में ये आया था। मैं 2006 से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, लगभग 17 साल हो गए मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ।
0: 17 साल एक छोटी सी बात नहीं होती, अगर एक छोटा सा बेबी होता है और 17 साल में वो एक टीनेजर हो जाता है, आपने इतना ज्यादा वक्त दिया है, आपने एक पूरी जर्नी देखी है यहाँ पे। आप जब आई थी तब ये कॉलेज कैसा था, और आज आप इस कॉलेज में क्या देख रही हैं?
1: मैं जब आई थी तो कॉलेज में यहाँ जो ऊपर के जितने भी रूम हैं, एक भी रूम नहीं थे। फिर मेरे आने के बाद ये ऑडिटोरियम, ये सारे चीज़ें, तो एक एक करके 9 नंबर 10 नंबर एक एक करके सब बनता चला गया, ऑडिटोरियम बना, और रेडियो एफएम का, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कंप्यूटर लैब बना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं आई थी तो उतना डेवलप था, आज जो है काफ़ी डेवलप हो चुका है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं आई थी तो मेरी बेटी 2 महीने की थी, तो वो भी आज 17 साल की हो गई है। जून में वो हुई थी, अगस्त में मैंने 24 अगस्त को ज्वाइन किया था, तो वो भी 17 साल की हो गई, और मेरे जॉब का भी 17 साल हो।
0: क्या बात है, तो बेटी और जॉब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और ये बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि उसी टाइम बेबी आपका हुआ, और फिर आपने किस तरह से ज्वाइन किया यहाँ पे, और आपको खैर साथ भी मिला यहाँ पे, सपोर्ट भी मिला। ये तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताई कि जब आप आई थी तो ऊपर के जो रूम्स बने हैं इस वक्त, ये ऑडिटोरियम वगैरह है, या एफएम तो अभी आया है जस्ट हाल में, लेकिन मैं जानना ही चाहूंगा, क्योंकि तारीफ अक्सर होती है सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज की, कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और मैनेजमेंट है, या कह सकते हैं कि रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में बड़ी बात की जाती है। आपने कितना यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस को देखा, कितना फॉलो होता है, टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे बेनिफिट्स मिलता है, इसके बारे में बताइए।
1: नहीं, रूल ये तो हर काम रूल पे ही होता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ नियम के तहत ही सारे काम होने चाहिए। एग्जाम होगा, नियम के तहत होगा, कोई उसमें नकल नहीं होगी। अक्सर करके जब यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करने जाते हैं और नाम बताते हैं कि हाँ हम नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज से, अच्छा मैडम आप नारी ज्ञान स्थली से हैं, तो अच्छा लगता है। तो यानी यूनिवर्सिटी तक ज्ञान स्थली का नाम है, तो क्यों नाम है, तो इस वजह से नाम है कि हाँ नियमों पे चलता है, पढ़ाई अच्छी होती है। जब हम आए थे तो मैम क्या करती थी कि देखती थी, क्लास में जाके देखती थी कि हाँ बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, नोट्स दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं, या पढ़ाने का तरीका क्या है। तो मैम टहल टहल के, बरामदे में टहल के अपना देखा करती थी कि टीचर्स कैसे पढ़ा रही हैं, बच्चों से पूछती थी कि क्या समझ में आता है क्या नहीं समझ में आता था। तो मैम भी बहुत ध्यान रखती थी कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो ध्यान वो भी काफ़ी रखती थी, और टीचर्स भी अपना मेहनत करती थी, नोट्स देती थी, लेक्चर देती थी। ऐसा नहीं है कि सब जगह है कि चलो आज ये पढ़ाया तो कल आगे अगले उस पे यूनिट पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप जो होगा वही पढ़ाया जाता है, कोर्स कंप्लीट किया जाता है, नोट्स बनवाए जाते हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, तो बिल्कुल नियमों के तहत ही यहाँ पर काम होता है।
0: तो आपने बताया कि नियमों के तहत काम होता है, दूसरी बात एक आइडियल जो कॉलेज होना चाहिए उसी तरह ये भी वर्क कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हमने सबसे पहले जब आपको इंट्रोड्यूस कराया तो बताया कि आप एचओडी हैं, पॉलिटिकल साइंस है, तो सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए, ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आखिर किस चीज़ के बारे में अध्ययन कराया जाता है?
1: पॉलिटिकल साइंस के में जो है, पहले तो ये शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे पहले राजतंत्र हुआ था हुआ करता था, फिर कुलीन तंत्र हुआ करता था, अब प्रजातंत्र कह लो या लोकतंत्र कह लो, अब लोकतंत्र हो गया है। तो इन सब के बारे में कि कैसे शासन व्यवस्था होती है, कैसे सरकार चलाई जाती है, तो इन सब के बारे में पॉलिटिकल साइंस में बताया जाता है।
0: यानी एक देश पूरा जो चलता है, जो एक ढांचा है, जो एक व्यवस्था का ढांचा है कह सकते हैं, उसके बारे में पूरा अध्ययन आपसे कराया जाता है। चूंकि हमेशा से कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पहले तो हमारे श्रोताओं को अभी बताइए कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है।
1: लोकतंत्र का मतलब होता है कि जैसे लोकतंत्र भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, जनतंत्र भी कह सकते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का या जनता का शासन। जैसे अमेरिकी एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र। यानी जनता का, यानी जनता का शासन हो, जनता के लिए शासन हो, और जनता के द्वारा ही जब शासन हो तो वो लोकतंत्र होता है। जो लोकतंत्र होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो ज़्यादातर देशों में आपने सुना होगा कि जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष को प्रतिनिध्यात्मक शासन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अप्रत्यक्ष में जनता स्वयं शासन का संचालन नहीं करती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो शासन का संचालन करती है। तो और जो प्रत्यक्ष होता है, जनता नियम बनाना या शासन का संचालन करना, वो जनता स्वयं करती है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो खाली स्विट्जरलैंड में है, उसको प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है, जननी भी कहा जाता है। कि तो वहाँ पर भी पूरे देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है, 5 कैंटन है, जिसमें से एक पूर्ण कैंटन, 4 जो है अर्ध कैंटन। ये कैंटन क्या है? जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं, तो वहाँ पर राज्यों को कैंटन कहा जाता है। तो पूर्ण कैंटन का मतलब जो बड़े राज्य हैं उनको पूर्ण कैंटन कहा जाता है, जो छोटे राज्य होते हैं उनको अर्ध कैंटन कहा जाता है। तो खाली पूरे स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो ये जो स्विट्जरलैंड है वो भारत के एक छोटे से राज्य केरल के बराबर उसका पूरा पूरा वो स्विट्जरलैंड जो है,
0: देश है पूरा वो।
1: हाँ, तो वहाँ पर भी पूरे देश में नहीं है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, खाली 5 कैंटनों में है। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। तो इस वजह से ज़्यादातर क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधियात्मक शासन जिसको कहते हैं, कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है।
0: बिल्कुल। एक बात जो बहुत कॉमनली सुनने में आती है वो ये होती है कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रथम नागरिक होता है देश का। तो पहले तो हम राष्ट्रपति के बारे में जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति का आखिर काम क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, राष्ट्रपति क्यों बनाया जाता है।
1: तो राष्ट्रपति को जैसे अदनान आपने कहा कि प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देश का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है, तो इसलिए उसको प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। उसी श्रेणी में और भी सब आता है कि दूसरे क्रम में उपराष्ट्रपति होता है, तीसरे में प्रधानमंत्री होता है, चौथे में सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनका क्रम आता है, पाँचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति जो होता है उसका नंबर आता है, फिर छठवें पर मुख्य न्यायाधीश या और लोकसभा का स्पीकर। तो ऐसे क्रम निर्धारित किया गया है, तो उस क्रम में जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च है, इस वजह से राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है।
0: तो ये तो आपने बताया कि क्यों प्रथम नागरिक उनको कहा जाता है, राष्ट्रपति को। लेकिन एक बात मुझे ये समझनी है, जैसे कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे कितनी पावर है राष्ट्रपति को, लेकिन अगर यही अमेरिका की बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पूरी पावर है। यहाँ बात करें तो शायद प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर होती है बनिस्बत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के। इस पहले अंतर को आप समझाइए कि ऐसा क्यों होता है, राष्ट्रपति का क्यों वहाँ पावर ज्यादा है अमेरिका में, और भारत में प्रधानमंत्री की क्यों पावर ज्यादा है सरल शब्दों में।
1: इसमें ये होता है कि एक होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है और एक होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो जो अध्यक्षात्मक, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो उसमें सर्वे सर्वा वो राष्ट्रपति है, जबकि यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो इसमें आपने कार्यपालिका, व्यवस्थापका, न्यायपालिका का नाम सुना होगा। तो कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापका के प्रति, उसमें आपस में घनिष्ठ संबंध भी होता है, और कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। तो इसलिए भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसी वजह से जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर नाम मात्र का और वास्तविक कार्यपालक अलग अलग होता है। नाम मात्र का, जैसे हमारे राष्ट्रपति को सारी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग कौन कर रहा है, तो उसका वास्तविक प्रयोग गहलोत प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो उसका प्रयोग करती है। तो इसीलिए वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो सर्वे सर्वा है, चूँकि वहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक, वहाँ पर वास्तविक ही है अमेरिका में, जबकि भारत में जो है वो नाम मात्र का अलग है, यानी नाम के लिए शक्ति किसी को मिली है और वास्तव में उसका प्रयोग कोई और कर रहा है, तो यानी नाम मात्र की और वास्तविक शक्ति भारत में अलग अलग है।
0: ठीक है, तो ये तो आपने डिफरेंसेस बताए कि क्या डिफरेंसेस है, कि अमेरिका में राष्ट्रपति को बहुत सारी पावर मिली होती है और इंडिया में नहीं। तो आपने बताया एक तो नॉमिनल होता है जिसे हम नाम मात्र बोलते हैं, एक होता है रियल यानी वास्तविक। तो वास्तविक होता है अमेरिका में ताकि उनके पास पूरी पावर है, और यहाँ पे होता है नॉमिनल राष्ट्रपति की। अगर बात करें राष्ट्रपति की बात है, तो अब ये भी हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है।
1: राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष पद्धति, जैसे चुनाव का भी तरीका होता है, एक होता है प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष होता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, तो निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जिसमें सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, चूँकि जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति जो निर्वाचित करता है, इसलिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो पहले होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरे तरह के जो होते हैं राज्य की जो विधानसभा होती, राज्यों में भी 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है, बाकी सब जगह विधानसभा ही है, तो जो विधानसभा राज्यों में विधानसभा होती है उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन खाली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और तीसरे तरह के जो सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल में, वो संघीय क्षेत्रों के जो क्षेत्र होते हैं उनकी भी विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य, वो भी ये पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन 1992 में जो 76वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसमें इन सदस्यों को जोड़ा गया, तो इन सदस्यों को मिलाकर जो है वो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, और निर्वाचक मंडल जो होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है।
0: तो आपने ये बताया कि क्या प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के चुनाव का और निर्वाचक मंडल के बारे में बताया। अभी चूंकि बातचीत करने के दौरान मैंने देखा कि वक्त हो चला है शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, सो अपने श्रोताओं से हम कहेंगे कि इस सब्जेक्ट की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसको आने के बाद भी हम डिस्कस करते रहेंगे, आपके बहुत सारे काम की जानकारियां आपको मिलेगी, इसलिए कहीं मत जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो क्या रस्ते 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर नीतू सिंह मैम, जो कि HOD हैं, पॉलिटिकल साइंस सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज। ब्रेक में जाने से पहले अभी तक आपने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं। अब चूंकि आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि अंतर क्या होता है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके पास पावर्स हैं, हमारे यहाँ नॉमिनल हैं, तो अब एक्चुअल शक्तियों की बात बताइए कि राष्ट्रपति के पास किस तरह की शक्ति होती है।
5: राष्ट्रपति के पास जो है, वैसे तो दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक सामान्य शक्तियाँ होती हैं, दूसरा संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं। वैसे तो जो भी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो कह लीजिए मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वो सारे काम करता है। तो जो भी शक्तियाँ उसको दी गई हैं वो स्वयं नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो मैं शक्तियों के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि जैसे पहला है सामान्य शक्तियों में कि नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार, यानी कुछ लोगों को नियुक्त करता है, कुछ लोगों को पद से हटा भी सकता है। तो पहले तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य पदाधिकारियों जैसे मंत्रियों, राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महान्यायवादी, इसको अटर्नी ऑफ जनरल भी कहते हैं, यह संवैधानिक सलाहकार के रूप में होता है, सरकार का जो होता है संवैधानिक सलाहकार होता है, और महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऐसे बहुत जल थल वायु सेना के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी भी, तो बहुत सारी नियुक्तियाँ ये राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कुछ लोगों को वो व्यक्तिगत रूप से पद से हटा भी सकता है, जैसे मंत्रियों को, राज्यपाल को, महान्यायवादी को, तो इन लोगों को पद से हटा भी वो सकता है।
4: तो ये आपने शक्तियों की बात की। अगर हम दो अलग से शक्तियों के बारे में सुने तो शायद वो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती है, जैसे किसी को मृत्युदंड को माफ करना, फांसी की सजा को माफ करना।
5: हाँ, तो ये भी प्रधानमंत्री के पास तो नहीं होती है, लेकिन जो भी वो करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, तो चाहे अगर किसी को फांसी की सजा भी मिली है तो राष्ट्रपति उसको चाहे तो मृत्युदंड की सजा को सीधे सीधे माफ कर सकता है, ये पावर उसके पास है, चाहे तो आजीवन कारावास में बदल दे, चाहे तो और भी कम कर दे। तो अगर किसी को मृत्युदंड की सजा मिली है तो वो चाहे तो बिल्कुल माफ़ भी कर सकता है, लेकिन वो भी चूँकि इतने सर्वोच्च पद पर है तो वो भी देखता है कि किसको माफ़ करने लायक है किसको माफ़ करने लायक नहीं है। तो ये देखते हुए अक्सर देखो अभी ये कौन सा कसाब था, उसका भी केस राष्ट्रपति के पास गया कि माफ़ी दी जाए, लेकिन नहीं दी गई, उसको फांसी दी गई। तो वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि किसको माफ़ी देना चाहता है और किसको नहीं देना चाहता है।
4: जी, और दूसरी जो पावर मैंने देखी है कि जहाँ पे सिचुएशंस ओवर कंट्रोल हो जाती है, जब कोई राज्य नहीं संभाल पाता है और स्थितियां जो है उसके नियंत्रण के बाहर हो जाती है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।
5: ये जैसे हमने बताया था, एक सामान्य शक्तियां होती हैं, एक जो होती हैं वो संकटकालीन शक्तियां होती हैं। तो ये आप जो बात कर रहे हैं वो संकटकालीन शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मान लो सरकार गिर जाती है कि हाँ जितनी सीटें चाहिए और उससे उसको कम मिल रही हैं, किसी को जोड़कर उसने अपना पूरा किया है आंकड़ा, और वो पार्टी जो है हट जाए और सरकार गिर जाए, तो पहले तो उसको बैठक होगी, बुलाया जाएगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, और बहुमत अगर वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वो वहाँ पर वो सरकार गिर जाएगी और वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा वहाँ का शासन किया जाएगा, उसको राष्ट्रपति शासन कहा जाएगा।
4: जी, तो ये तो आपने बताया। अभी एक जो चीज सबसे अहम होती है वो सुनने में आता है कि भाई तीन चीजें होती हैं, एक तो है व्यवस्थापिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये होते क्या है और इनके काम क्या है?
5: ये जो हैं वो सरकार के तीन अभिन्न अंग हैं, इसके बिना सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो जैसे हम पहले व्यवस्थापिका के वैसे बोलने में आता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, लेकिन काम जो करने का तरीका होता है तो व्यवस्थापिका यानी संसद की बात हो रही है जिसमें लोकसभा राज्यसभा होता है, तो व्यवस्थापिका क्या करती है कि कानूनों का निर्माण करती है, और जो कार्यपालिका होती है वो उन्हीं कानूनों को जिस जो व्यवस्थापिका ने बनाया है उन्हीं कानूनों को वो लागू कराती है। और लागू होने के बाद अगर कोई नागरिक उन कानूनों का उल्लंघन करता है, उसको नहीं मानता है, तो न्यायपालिका का काम होता है कि उसको दंडित करे। तो ये तीन सरकार के अभिन्न अंग हैं, जो तीनों का काम अपना कि एक कानून का निर्माण करना, एक को लागू करवाना और तीसरे को दंड देना।
4: जी, तो आपने ये तीनों बताया। जैसे कि अगर हम बात कर लें, बहुत सरल शब्दों में बात करें, तो व्यवस्थापिका में जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, यानी पार्टी, रूलिंग पार्टी कह सकते हैं, वो होती है, और कार्यपालिका में जैसे पुलिस होती है उस काम को लागू कराना, और न्यायपालिका में तो हम सभी को पता है कि जुडिशरी होती है, जजेस होते हैं, वकील होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा सरकार का अभिन्न अंग होता है, इन तीन लेयर्स पे काम करना।
5: मैं आपको अदनान एक बात और बताना चाहूँगी कि जो व्यवस्थापिका होती है, जैसे केंद्र की अलग होती है, जैसे केंद्र में संसद व्यवस्थापिका यानी संसद, तो संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है जो निम्न सदन है, राज्यसभा जो है उच्च सदन है। तो संसद भी तीन से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी इसको अलग नहीं किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कानून बनना होगा, कोई भी विधेयक बिल आएगा संसद में, तो पहले एक सदन में जाएगा, फिर जब एक सदन में मान लो लोकसभा में पहले आया और लोकसभा में पास होकर फिर राज्यसभा में भेजा गया, वहाँ पर भी सहमति हो गई, तो जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे तब तक वो बिल पास नहीं माना जाएगा। तो ये संसद यानी व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति भी लोकसभा और राज्यसभा के साथ अभिन्न अंग है।
4: जी, तो आपने यहाँ पे राष्ट्रपति की इम्पोर्टेंस बताया कि ये भी अभिन्न अंग होता है। एक जो नाम आता है बहुत अक्सर सुनने को मिलता है हमको अखबारों में, हमको न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, अध्यादेश। पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि अध्यादेश होता क्या है।
5: आपने जल्दी ही सुना होगा, दिल्ली की उसमें सुना होगा। वैसे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और ये भी सामान्य कानूनों के भांति, जैसे कानून होते हैं उसी तरह अध्यादेश भी होता है, लेकिन अध्यादेश तभी प्रभावी होता है जब संसद का अधिवेशन यानी संसद की जो बैठक है वो ना हो रही हो। क्योंकि अगर संसद की बैठक हो रही है तो विधेयक पास किया जाएगा, विधेयक बनाया जाएगा, बिल बनाया जाएगा, दोनों सदनों में जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, पास होगा। लेकिन जब संसद की बैठक ना हो रही हो तब अध्यादेश जारी किया जाता है। उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव जो है वो सामान्य कानून के बराबर ही होता है और यह तत्काल लागू हो जाता है। इसके लिए किसी की जहां राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो ये प्रभावी हो जाता है। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में कि हाँ दिल्ली सरकार जो उच्च पदाधिकारी होते हैं तो जैसे IAS, PCS, IPS तो इनके तबादले की बात कह लो या नियुक्ति की बात कह लो,
4: लोक सेवा आयोग
5: तो ये था कि इनको ट्रांसफर करना है या नियुक्ति करना है तो वो दिल्ली सरकार करेगी, दिल्ली सरकार मतलब जो केजरीवाल की सरकार है तो वो करेगी, सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आया था। लेकिन इसी के विरुद्ध अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश क्या लाया गया कि इसमें जो ट्रांसफर होगा जो पोस्टिंग होगी उसका अधिकार दिल्ली सरकार नहीं बल्कि इसका अधिकार जो होगा अब ट्रांसफर होकर ट्रांसफर या पोस्टिंग का अधिकार जो है अब नई अथॉरिटी बनाई गई है जिसमें उसका मुख्यमंत्री भी उसका सदस्य है अब वो करेगा, अब दिल्ली सरकार ट्रांसफर या पोस्टिंग का अधिकार नहीं रखती है तो यही अध्यादेश लाया गया है।
4: जी तो आपने अध्यादेश बताया कि क्या होता है, उसके बाद उसका एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझाने की भी कोशिश की कि अध्यादेश किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से उसको लाया जाता है। ये तो बात हो गई अध्यादेश की। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो इस सब्जेक्ट को लेने के बाद स्कोप की बात की जाए, अगर मान लीजिए साइकोलॉजी लेते हैं तो वो साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, टीचिंग करते हैं, साइकेट्रिस्ट बन जाते हैं, ये सारे स्कोप्स होते हैं। और मैथ्स है, साइंस है, इनके बहुत सारे स्कोप्स हैं, यानी सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो अपना पॉलिटिकल साइंस ये जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसके क्या क्या स्कोप्स हैं?
5: इसके भी बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे अगर आप वैसे भी देखिए कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें GS के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मान लो 100 क्वेश्चन है तो उसमें आप 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक जो होंगे वो पॉलिटिकल साइंस के ही आते हैं। तो इसमें अगर बच्चे पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस तो सबसे टॉप पर तो सिविल सर्विसेज है, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं। फिर सब चूँकि सबके बस की बात तो है नहीं कि IAS और PCS बन जाए तो क्या है कि अगर इंटरेस्ट है उनका तो उस सब्जेक्ट में नेट कर सकते हैं, JRF कर सकते हैं और PhD करके अच्छे महाविद्यालय में भी पढ़ा सकते हैं। साथ में अगर आप LLB कर लेंगे तो वकील हो जाएंगे, लीगल एडवाइज़र भी हो जाएंगे और साथ में PCS-J की तैयारी करके आप जज भी बन सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप PGT कर लेंगे तो इंटर कॉलेज में आप जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जान लीजिए जो ये कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं उन कोचिंग सेंटर में सरकारी जो कॉलेज है उस या इंटर कॉलेज है तो उसमें जो सैलरी है उसके 2-3 गुना ज़्यादा वहाँ पर कोचिंग सेंटर में वो कमा सकते हैं। कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं उनसे जुड़ जाएंगे तो उससे ज़्यादा वो कमा सकते हैं।
4: तो ये आपने स्कोप्स बताए हैं। टीचिंग का स्कोप तो देखिए हर सब्जेक्ट का होता है क्योंकि टीचर्स तो होते ही हर सब्जेक्ट के। इसके अलावा बताया कि आपने भाई वकील बन सकता है, PCS-J की तैयारी करके जुडिशनरी में भी आ सकता है वकील, यानी कई सारे इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसी से मिलता जुलता कह सकते हैं एक और क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है कि पॉलिटिक्स तो बहुत सारे लोग करते हैं, जब भी चुनाव आता है हम देखते हैं गली मोहल्ले में चाय की दुकानों पर बड़ी जोर से चर्चा होती है कैंडिडेट्स के बारे में, पार्टीज के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस अगर जो भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं चुनाव, अगर उनको ये पॉलिटिकल साइंस पता हो, इस सब्जेक्ट के बारे में पता हो, या कोई स्टूडेंट अगर अपना भविष्य बनाना चाह रहा है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है सीरियसली कि वो सर्व करना चाहेगा, तो पॉलिटिकल साइंस उसके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट साबित होगा?
5: क्योंकि जब आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो उसमें देखिए चाहे संसद हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कार्यपालिका हो, हर चीज़ की जानकारी, दूसरे संविधानों की जानकारी। और अगर बच्चा पढ़ लिख कर पॉलिटिकल साइंस पढ़कर वो जाता है तो उसको काफ़ी कुछ नॉलेज होगा और नॉलेज होगा तो वो अच्छे से चला पाएगा। तो एक पढ़ा लिखा और वो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा व्यक्ति है वो अगर राजनीति में आता है तो उसका कार्य करने का तरीका और एक जो जिसको जानकारी नहीं है नया सीख रहा है तो उसके में बहुत अंतर हो जाएगा।
4: लेकिन कई बार ज्यादातर देखा जाता है कि ऐसे जो बैकग्राउंड से आते हैं वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं लोग का ये बहाना होता है कि भाई जाने के बाद तो चीजें सीख ही लेंगे हम, तो पहले पढ़ के क्यों जाए, इस पे आपका क्या मानना है?
5: नहीं वो तो है ही है कि ये इसमें भारत की राजनीति थोड़ी उतनी अच्छी नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते कि जिसके पास पैसा होगा पावर होगा वो राजनीति में आसानी से चला जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा पावर नहीं है उसके लिए काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो चूंकि यहाँ की राजनीति व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पढ़ के ही आना है, ये होना ही चाहिए, जबकि ऐसा होना चाहिए कि उनके अंदर एक वो रखना चाहिए कि हाँ ये जब उस क्वालिफाई करेगा या ऐसा होगा तभी वो राजनीति में आ सकता है। यहाँ पर अनपढ़ गंवार भी है, अगर जनता ने उनको चुन लिया तो फिर चाहे अनपढ़ हो चाहे गंवार हो सब शासन चला सकते हैं। तो ये चीज़ एक भारत में कमी हम कहते हैं।
4: तो आपको ये कमी लगती है, इसकी सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है कि कैंडिडेट्स को अगर देखा जाए चुनाव करने से पहले, या मान लीजिए लोग हैं हम ही और आप चुनाव के लिए वोट देते हैं, तो अभी आप उन श्रोताओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगी, उन मतदाताओं को जो किसी भी आप चुनाव में वोट देने से पहले उस कैंडिडेट्स के बारे में क्या क्या देखें, क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं?
5: वैसे तो यहाँ योग्य होना चाहिए, मेन है योग्यता में सभी चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ वो उस काबिल है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, तो पहली बात वो सब योग्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, अच्छा हम इसको सपोर्ट करते हैं तो हम इसको वोट दे देंगे, नोटा
4: जी
5: हाँ नोटा का चयन कर सकते हैं।
4: बिल्कुल सही आपने कहा, और कहीं ना कहीं जो कास्ट बेसिस पे होता है, रिलीजन बेसिस पे होता है, वहाँ उन कैंडिडेट्स को पता होता है कि इस तरह से हम लोगों को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि बात होती है मेन विकास की, और जब विकास का मुद्दा नहीं होता तो मुद्दे फिर अलग बन जाते हैं।
5: बिल्कुल।
4: तो आपके भी ख्याल से और मेरे भी ख्याल से जब भी वोट दे तो आप ये देखिए कि सर्व समाज को लेकर चलने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, उसका एक रोड मैप तैयार किया हो, आपके गांव का अगर प्रधान है तो गांव के लिए उसने क्या सोच के रखा है, अगर वो मोहल्ले के आपका मेंबर है तो मोहल्ले के लिए क्या करने वाला, और शहर डिस्ट्रिक्ट का तो हम लोग चुनते ही हैं तो उसमें विधायक हमारा किस टाइप का है कि हम उसके अपनी जब शिकायतों का निस्तारण करने उसके पास जाए तो वो कितना टाइम देगा, कितना वो सीरियसली लेगा, और शहर की जो व्यवस्थाएं उसको किस हद तक वो सही करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बातचीत की। सबसे पहले हमने आपके खुद के बारे में जाना, उसके बाद फिर आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कई पहलुओं को आज आपने शेयर किया, आपने फैमिली के बारे में बताया, साथ में सब्जेक्ट के स्कोप के बारे में बताया, और बहुत सारी चीजें जो आपके सब्जेक्ट के अंदर के टॉपिक हैं जो नॉर्मली लोगों को अक्सर कंफ्यूजन में रहता है उस पर भी हमने चर्चा की, जिसका आपने बहुत सरलता से जवाब दिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीतू सिंह मैम।
5: थैंक यू अदनान।
4: थैंक यू सो मच। और अपने श्रोताओं से भी हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनसे जुड़ी हुई बातों को करेंगे, इसलिए स्टे ट्यून रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए,
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125707093 और 9696740406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

सारे बोलो बेवफा, लेकिन बेवफा को सुनाई नहीं देगा तो फिर क्या फ़ायदा बेवफा बोलने का। तो वैसे आप लोगों ने बेवफा को बेवफा बना तो दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस बेवफा ने क्या बेवफाई की आपके साथ। मतलब ये शब्द बनाया कहाँ से? सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों से यही सवाल करना चाहती हूँ, ये जो बेवफा शब्द है ये किस भाषा में है? फारसी में, हिंदी में या फिर उर्दू में? किस भाषा का ये शब्द है बेवफा? और कई बार इस शब्द का प्रयोग करके मतलब इंसान को ताने दिए जाते हैं, ये ताना देने वाला शब्द है मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है? वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट यार, आप सभी का स्वागत है भाई। शाम के बज चुके हैं 6:10 और आपके साथ मौजूद है आरजे बिना, आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बिना वाला में। जी हाँ, जहाँ बातें भी होती हैं, मस्ती भी होती है और साथ ही साथ आपकी आवाज़ भी सुनने को मिलती है। तो भाई इस आवाज़ तो सुनते ही रहेंगे, और वो तो सुनाई है ना, आवाज़ मैं तो दूंगी ना। मैं आवाज़ नहीं देने वाली में से नहीं हूँ, मैं आपको बुलाती रहूँगी तब तक जब तक आप लोग आएंगे नहीं। जैसे कहते ना वो ढीठ वाली मम्मी टाइप्स, सुनो सुनो सुनो सुनो जब तक सुन ना लो ना तब तक, जो कहते हैं ना कि रेडियो स्टेशन चालू रहता है। बचपन में लोग यही कहते ना, क्या यार यार रेडियो स्टेशन बन के चिल्ला रही हो, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाओ। मतलब आपका रेडियो आपको एंटरटेन करता है, और फिर आपको लगता है कि यार मतलब वो कब आपका ताना बन जाता है पता ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट भी आपका

हमारे यहाँ तूफान नहीं आया, काफ़ी अच्छा खासा टेम्परेचर रहा आज, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिलहाल आपको बता दूं कि आज है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। म्यूज़ियम यानी कि जहाँ पे रखी जाती हैं बहुत सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन से जुड़ी चीज़ें, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज की हो, चाहे वो एनरिचमेंट की हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़ की हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। और देखिए आज ही से मलमास भी शुरू हो गया, और मलमास को अधिक मास भी बोलते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा महीना दिया जाता है आपके पापों को धोने के लिए, ऐसा लोग कहते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा महीना मिल रहा है तो हमें उस एक्स्ट्रा महीने में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको कहीं भी रिग्रेट ना करना पड़े। सबकी मदद करनी चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास, ये बात मलमास के साथ क्या बोलते हैं। तो चलिए आ जाइए सब लोग, कौन कौन आ गया चले देख लूँ मैं भी, मेरे सारे लिसनर्स कहाँ सो रहे हैं, जगाने का समय हुआ कि नहीं हुआ। और जग तो गए ही होंगे, कई बार मतलब लगता है कि हमें जगना नहीं चाहिए, थोड़ी देर सो लेना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल सोने से काम नहीं चलने वाला। और ये भाई कौन आ गया है मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि रेलिवेंट अच्छे अच्छे नामों के साथ आए करें। गुड इवनिंग अब्दुल मुजीम जी, मुकेश गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग भाई। देखिए आपको किसी को कुछ कहना है, अपने दिल की बात कहनी है, तो अपना नाम रख के कतई ना कहें, आप सीधे बोल दें जाके, ठीक है, अपने अंदर इतने गट्स रखें। तो बदलता मौसम आरजुबीना आपके साथ है, लेकिन बात कुछ खास है कौन सी खास बात होने वाली है सोच रहे होंगे ना। फिलहाल मैं आप लोग को एक लव सॉन्ग सुना के याद दिलाना चाहती हूँ कि आज बात होगी कुछ खास विषयों पर, कुछ खास लोगों पर, और एक खास इंसान पर जिसने अपनी तकदीर बदलने की सोची थी और शायद वो कर भी पाया। तो आज एक खास इंसान पर बात करूँगी, लेकिन आपको पहले एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद ले जाऊँगी उस इंसान के पास, उस इंसान की कहानी के पास, और हम करेंगे आप लोग के कॉल इन के साथ शुरुआत आज की शाम की। तो गर्मी बढ़ रही है, बढ़ती गर्मी के साथ आपके गाने बन जाएंगे, आपकी आवाज़ बन जाएगी आज शाम की एनर्जी। तो आज की एनर्जी आपके नाम, आज की पार्टी आपके नाम। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आप लोग के साथ, लेट्स एंजॉय।

तो चलिए हम आते हैं आप लोग के पास इस मस्त मस्त सी शाम में एनर्जी बढ़ाने, और एनर्जी बढ़ते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई आज की शाम ना सिर्फ इसलिए खास है क्योंकि आरजेबी नाम के साथ है, बल्कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ यार, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में अगर हम सोचने बैठ जाए ना तो सोच हमारी रुक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे किसकी बात कर रही हूँ, और मैं बात कर रही हूँ बदलते मौसम की और हमारे आसपास हो रही चीज़ों की। जी हाँ, नीट को लेके बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई, और हमारे स्टूडेंट्स यार कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं यार। अभी इधर जेई का रिज़ल्ट आया, बच्चे पास हो गए, लेकिन पता चला कि क्या हुआ बदले में ट्वेल्थ का रिज़ल्ट ख़राब हो गया। भाई इतने एक्सपेरिमेंट्स क्यों ही करने हैं, OSM लगा दिया, मतलब ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग हो गई, जिसकी वजह से बच्चों को सही होने के बावजूद भी आंसर्स मार्क्स नहीं मिले। भाई देखिए, कितना भी हम लोग स्मार्ट बन जाए लेकिन एक इंसान ही इंसान की फीलिंग को समझ सकता है, पूरी दुनिया को हम मशीन पे नहीं चला सकते। हो सकता है हमारे इस OSM की वजह से बहुत सारे बच्चों ने ऐसा रिज़ल्ट देख के सुसाइड करने का सोच लिया हो। और ये बताइए, 700 रुपये में जो कॉपी आप लोग क्या करते थे, प्रिंट आउट निकाल के देते थे, उस कॉपी को 100 रुपये पे आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि झोल तो OSM में हुआ है। तो हम सभी को वही सिस्टम के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ सिस्टम सही करे। देखिए, एक बार किसी ने कहा कि किसी चीज़ को क्या क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात है या सरकार को क्रिटिसाइज़ करना बुरी बात है, तो उस महान पुरुष ने बताया कि भाई देखो, क्रिटिसाइज़ करने से ही तो सामने वाले को पता चलेगा मेरी गलतियाँ क्या है, और अगर हम क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तब तो हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गलतियाँ भी करती जाएगी और हम मुस्कुरा देंगे, थैंक यू, तो वो नहीं करना है। तो हमें अपने NTA को, और हमें हमारी जो कहते हैं ना एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, उससे इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि बदलाव ज़रूरी है, लेकिन ऐसे बदलाव भी ना किए जाएं कि बच्चे डिप्रेशन में आके आत्महत्याएं करना शुरू कर दें, क्योंकि भविष्य बच्चों के हाथ में, आने वाली जनरेशन के हाथ में, ना कि सरकारों के हाथ में। तो ये तो बात हो गई एक, और देखिए मेरे पास बहुत सारी जानकारी रहती, मैं सोच रही आप लोग के साथ साझा कर दूँ, कुछ भी ना बचे मेरे पास, जो भी है मेरा तेरा मैंने कर दिया। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज है मंडे, तो मंडे यानी कि कॉलिंग डे, और मैं आप लोगों के कॉल्स का इंतज़ार कर रही हूं। तो फटाफट से अपना नंबर यानी कि 6393-31-64-29 नंबर डायल करिए और ऑन एयर आके अपनी आवाज़ में सुर बिखेरिए, सुर ही नहीं कविताएं, गज़ल, जो भी आप सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं। गुड इवनिंग अनिल शास्त्री जी, कैसे हैं? गोरखपुर से जनाब आप सुन रहे हैं, कैसे हैं ज़रूर बताइएगा हालचाल अपना, और आगे आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। समय भी हो चुका है आप लोग की आवाज़ सुनने का। चलिए देखते हैं सबसे पहला कॉल किसका आता है। अब्दुल मुजीम जी लिखते हैं, जो पाया था वो खोकर भी देख लिया, किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया, नहीं मिलता इस दुनिया में कुछ गिड़गिड़ाने से, मैंने उसके सामने रो रो कर भी देख लिया। क्या बात है, बिल्कुल सही, क्या सही कहा है आपने। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दिल से कुछ लिखते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखते हैं जो आप रिलेट करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं ना अपने दोस्तों का वो क्या कहते हैं कि स्टेटस देखते हैं, यार क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और फिर हम लोग सोचते हैं यार पता नहीं चल रहा क्या हो गया। आप लोग को बता दिया मैंने कि आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और क्यों खास है ये दिन, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो नेशनल म्यूज़ियम है वो न्यू दिल्ली में है, और 1947 और 48 में लंदन में आयोजित हुई थी पहली बार प्रदर्शनी, और इसी के बाद 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ये 1960 में अपने वर्तमान भवन में मतलब शिफ्ट किया गया, और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित ये जो संग्रहालय है, संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम, इसमें 22 दीर्घाओं से लगभग 2,00,000 वस्तुओं को संरक्षित किया गया है, जो भारत की विविध विरासत को प्रदर्शित करता है। और अभी जल्दी ही हमारे मोदी जी किसी दौरे पे गए थे और उन्हें कॉपर पे लिखे हुए हमारे इतिहास मिले हैं, कॉपर प्लेट्स थी उस पे उकेरा हुआ था कुछ हमारी हिस्ट्री, और लैंग्वेज शायद तमिल भाषा में वो लिखा हुआ था। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, हमारी चीज़ें हमें वापस मिल रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आपको बता दूँ कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि कोलकाता में है, 1921 में रानी विक्टोरिया की स्मृति में स्थापित किया गया था। स्मारक लॉर्ड कर्जन की परिकल्पना थी, इसमें ब्रिटिश और जो भारतीय
जो हमारी शैली थी उन दोनों को मिक्स करके दिखाया गया था। इसकी 8 दीर्घाओं में भारतीय साम्राज्य के इतिहास में 28,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं, यानी कि पेंटिंग्स हैं, और 3,900 चित्र संरक्षित किए गए हैं। भाई देखिए, हम लोग घर में भी संग्रहालय छोटा सा रखते हैं। किसके किसके घर में छोटा संग्रहालय है मैं बताऊँ? मेरे घर में मैंने अपना एक बचपन का एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ है, बक्सा हमारे यहाँ बोलते हैं, और वो मेरे पिताजी का है। मेरे फादर जब छोटे होते थे तो उनके यहाँ ये सिस्टम था कि जो भी स्कूल जाता था, मतलब पढ़ने वढ़ने वाले बच्चे थे, उनको एक एक बक्सा लकड़ी का बनवा के दे दिया जाता, तो वो अपना सामान सारा उसी में रखते थे। मतलब जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा नहीं, जैसे ज़रूरत की चीज़ें, बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट है, कोई मार्कशीट है, पेन है, स्लेट है, वो जो तख्ती है, वो एक लिक्विड होता था बचपन में उसको दिया जाता था, तो वो मैं उठा लाई थी अपने पास से। तो उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी रेयर वाली चीज़ें, मेरे मम्मी को मेरे नाना जी ने एक छोटी सी एक बुक दी थी रामायण की, जिसका साइज़ बहुत ही छोटा था, उसमें फुल रामायण थी विदाउट ट्रांसलेशन, जैसे रामायण एज इट इज़ है वो पूरी रामायण थी। ऐसे मेरे फादर को किसी ने, बहुत उनके खास दोस्त ने, एक चांदी का पेन दिया था। वो उस समय बहुत रेयर होता था, मतलब लोगों के पास नहीं होता था, और वो उन्हें गिफ्ट मिला था, वो हो गया। ऐसे मुझे मेरे स्कूल में मेरे एक टीचर ने पेन दिया था, वो पेन उनको उनके प्रोफेसर ने दिया था, वो पेन मैंने रखा हुआ है। तो एक छोटा संग्रहालय हम सभी के पास होता है। क्या आपके पास है? कभी कभी हमारी डायरी हमारा संग्रहालय बन जाती है, यादों का संग्रहालय, जहाँ पे हम अपनी यादों को सजो के रखते हैं। गुड इवनिंग तेज नारायण शुक्ला जी, कैसे हैं आप? और अब्दुल मुजीम जी लिखते हैं कि हर पल निगाहें टिकी हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, न जाने कब तुम्हारी इस बेताबी का कोई जवाब आएगा। अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए, आपके कॉल्स का इंतज़ार है, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी यादों का म्यूज़ियम मुझसे शेयर करें, और यादों पे कोई गाने सुनाएं, और यादों से ही आपके संग्रहालय की खोज शुरू हो, क्योंकि सबसे बड़ा संग्रहालय तो यादों का है, जिसमें हमारी अच्छी और बुरी दोनों यादें समेट के रखी हुई हैं। तो चलिए, एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं जो हमारी स्मृतियों को वापस से बैक टू बैक एनर्जी के साथ रिवाइव कर देगा, और लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग।

आज एक मैं पुराना गाना सुनाऊंगी और ये मुझे बहुत पुराना और बहुत ही प्यारा सा गाना लगता था और हो सकता है किसी ने सुना हो, जैसे सुनाओ वो ज़रूर बताइएगा किस फिल्म का गाना है। बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ।

तो देखिए कॉल आया था और वो कॉल हो चुका डिसकनेक्ट, और अब बारी है अगले गाने की। लेकिन अगला गाना जो है वो और मतलब जैसे मैंने कहा ना कि यादों का संग्रहालय किसी मतलब किसी एक दिन की याद से नहीं बनता, हर दिन की अलग अलग यादों से बनता है। और मैं ये जानती हूँ कि ये संग्रहालय अगर मैं अपनी रेडियो जर्नी की बात करूँ तो आप लोग की वजह से बहुत बड़ा हो गया, और इस बड़े से संग्रहालय में बहुत सारे लोगों की यादें हैं। इनफैक्ट आप लोगों से जुड़ने के बाद एक अलग ही दुनिया बस गई, एक अलग ही दुनिया में एक अलग ही पहचान बन गई। एंड मेरी जो यादों का संग्रहालय है उसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कोई कहीं जाएगा नहीं। एक और गाना है जो मुझे आप लोग को सुनाना है, जिसे सुन के आप लोग बहुत अच्छा सा मतलब फील करेंगे, और गाना बहुत ही प्यारा है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि यादों का संग्रहालय जो है वो किसी एक दिन की याद से नहीं बनता, कई दिनों की यादों से बनता है। तो गौर फरमाइएगा, और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपके घर में आपकी यादें कहाँ समेट के रखी हुई हैं, आपकी डायरी में, आपकी अलमारी में, या आपके किसी छोटे से ड्रॉअर में, ज़रूर जानना चाहूँगी। किसी किसी की यादों का संग्रहालय जानते हो क्या होता है? उसकी किचन। किसी किसी का यादों का संग्रहालय उसकी पॉकेट होती है। यार पॉकेट में सारे कागज़ रखे होते हैं, छोटे छोटे छोटे छोटे। किसी किसी की डायरी में बहुत पुरानी तारीखों से बहुत सारी चीज़ें, किसी के हिसाब में बहुत सारे संग्रहालय होते हैं। चलिए आज चलते हैं म्यूजियम ऑफ मेमोरीज में। मन के भीतर एक कोना है जो सबसे छुपा कर रखा है, मन के भीतर एक कोना है जो सबसे छुपा कर रखना है। वहाँ लगा है एक बोर्ड बड़ा सा, यादों का संग्रहालय लिखा सा। यहाँ दीवारों पर टंगी हुई हैं कुछ हंसती रोती तस्वीरें, बचपन की वो कागज़ की कश्ती और वो टूटे और कुछ अधूरी तकदीरें। एक कांच के मर्तबान में रखी वो पहली बारिश की बूंदें, वो दोस्तों की बेपरवाह हंसी और वो ख्वाब अब भी अधूरे। एक शेल्फ पे सजी है वो खामोशी जो किसी के जाने पर आई थी, और दूसरी तरफ रखी है वो बात जो कहते कहते होठों तक आई थी। जहां कोई टिकट नहीं लगता बस फुर्सत के पल होने चाहिए, जब दुनिया से मन भर जाए तो यहाँ खो जाने के लिए दिल होना चाहिए। ये बीता हुआ कल संजोए हैं, ये मेरा अपना एक जहाँ है। हाँ मेरे इस छोटे से दिल में यादों का संग्रहालय है। सो हमारे लिसनर बिल्कुल सही, अब्दुल जी आपने गेस किया है, मेरे महबूब फिल्म का गाना था। चलती फिरती हुई आंखों से अंजा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी पर मेरी माँ देखी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूब लिखते हैं आप लोग। और एक कविता जो हमेशा से माँ को डेडिकेटेड रही है, और मदर्स डे भी बिता भी है, और मेरे मन में ये पंक्तियाँ आती हैं हमेशा। जब भी मैं कुछ आप लोगों से लिखा हुआ देखती हूँ तो मैं ये सुना देती हूँ। ताहिर फराज की पंक्तियाँ हैं लेकिन सुनाती अक्सर मैं हूँ, और मुझे बहुत पसंद भी है। तो यादों के संग्रहालय में एक बड़ा सा कोना माँ का है जिसमें माँ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कविता है माई, आप लोगों ने मुझसे सुनी होगी, अगर मदर्स डे वगैरह पर मैंने कभी सुनाई होगी तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं सुना रही हूँ आप लोग को। हमेशा जब मन करता है तो मैं आप लोग को सुनाती हूँ, और आज फिर सुनाने का मन है। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में समाई माई, ओ माँ।

तो ये मेरी पसंदीदा कविता है, जब नाम आता है तो मेरे जुबान से ये कविता भी निकल जाती है। तो चलिए एक नया गाना सुनाती हूँ यादों के संग्रहालय से। जब कुछ याद आता है तो बहुत कुछ किसी के साथ बिताया हुआ समय भी याद आता है, और ये गाना उसी समय के लिए, उसी रोमांटिक समय के लिए।

बिल्कुल शाम सवेरा पता नहीं चलता जब किसी की याद आती है। एंड मैंने आज आपको बताया कि यादों का म्यूज़ियम हम लोग का सबसे बड़ा होता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। फिलहाल मैंने कहा ना कि आपकी यादें कोई यादों की म्यूज़ियम में कुछ नहीं किसी को बताने के लिए, और मुझे तो लगता है कि हर किसी के पास एक छोटा सा म्यूज़ियम ज़रूर होगा, चाहे वो उसका पर्स हो, चाहे वो उसका बैग हो, चाहे वो ड्रॉर हो, चाहे वो अलमीरा हो, चाहे वो आपकी छोटी सी पॉकेट क्यों ना हो, चाहे आपका वॉलेट क्यों ना हो। मैंने बहुत सारे लड़कों के वॉलेट्स भी देखे हैं जिसमें वो लोग बहुत सारे खजाना रखते हैं। खजाना पैसों का नहीं, हाँ किसी की फ़ोटो, कोई क्वाइन, कोई छोटा सा पेपर, कोई पेपर नोट, किसी का मैसेज, कुछ भी, किसी का दिया विजिटिंग कार्ड। तो एक छोटा सा म्यूज़ियम आपके पॉकेट में भी होता है। वैसे आप बताइए, एंटिक्स की दुनिया में क्या आपने भी कुछ एंटिक छुपा के रखा है अपने म्यूज़ियम में? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा म्यूज़ियम, मेरी डायरीज़ हैं। हर उम्र में मैंने कुछ ना कुछ उन सब में लिखा हुआ है, और स्पेशली मैं डायरी लिखती हूँ तो मुझे डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और डायरी के पन्ने ही मेरे म्यूज़ियम का काम करते हैं। इसके अलावा मैं छोटे छोटे बैग्स रखती हूँ, पर्स जिसे बोलते हैं, हर साल पर्स चेंज करती हूँ। जो पुराना पर्स होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपा के रख देती हूँ, जैसे मेरे फेवरेट ईयरिंग्स हो गए, किसी ने गिफ्ट किया है, गिफ्टेड कार्ड्स, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, मेरे फ्रेंड्स ने दिया है। तो बहुत बड़ा सा संग्रहालय है मेरे पास कार्ड्स का। तो ग्रीटिंग कार्ड्स पहले होते थे, वो ग्रीटिंग कार्ड्स संग्रहालय का काम करते थे। वैसे आप लोग बताइए, आपके पास कौन से कार्ड्स हैं और वो कैसे हैं, जैसे आप रखना चाहते हैं? तो चलिए आगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप लोग के कॉल का इंतज़ार करते हैं।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: सो लिसनर्स, हमारे साथ हमारे कोई कॉलर जुड़ गए हैं। चलिए उनकी आवाज सुनते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम? अच्छा अब्दुल जी, कैसे हैं? क्या बात है, बहुत खूब लिख रहे हैं चैट रूम में आप, क्या बात है अब्दुल जी? कहाँ से बात कर रहे हैं आप, पहले ही बताएं जरा।
5: अब रहने वाला तो आपके बगल का ही मनकापुर का रहने वाला हूँ।
4: अच्छा, मेरे बगल के मनकापुर के, मैं भी मनकापुर से हूँ। क्या बात है। तो अब्दुल जी, जैसा कि हम लोग आज यादों के संग्रहालय की बात कर रहे हैं, और मॉडर्न जमाना आ गया है और संग्रहालय छोटा पड़ गया हम लोग का, क्योंकि ना तो कोई किसी को ग्रीटिंग कार्ड देता है, ना कोई किसी को चिट्ठी देता है, ना ही कोई किसी को दिल से कोई ऐसा गिफ्ट देता है जो उसको संभाल के रख सके। संग्रहालय इन्हीं चीज़ों से बनता है, सब कुछ मतलब बदल गया। और व्हाट्सएप एक संग्रहालय बन गया, जहाँ पे किसी का मैसेज आता है और मोबाइल गायब हुआ और वो संग्रहालय गायब।
5: जब से मोबाइल आया है, एक दूसरे से मोहब्बत भी कम हो गई है।
4: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप यादों पे कुछ कहना चाहेंगे?
5: हाँ, यादों पे ही पॉकेट का आपने बात की थी, पॉकेट का मेरे भी याद आ गया। पॉकेट मैंने भी कुछ रखा है, वो भी 2020 की लॉकडाउन जब लगा था, तो मैं यही गुजरात में फंसा हुआ था। तो जब घर जाने के लिए इतनी परेशानी थी, तो मुझे एक टोकन मिला था छोटा सा। वो टोकन आज भी मैं संभाल के रखा था, यही सोच के रखा था कि कल आने वाले बच्चे को मैं दिखाऊंगा कि देखो बेटा, एक टाइम था ऐसा कि हम लोग को जाने के लिए दिक्कत था, खाने के भी परेशानी हो गई थी, लेकिन ये टोकन की वजह से मैं घर पहुंचा था।
4: बिल्कुल सही बताया आपने। और उस समय अगर वो टोकन नहीं मिलता था, तो कोई एक सिटी से दूसरे सिटी में नहीं जा सकता था।
5: नहीं जा सकता था जी, नहीं। अरे मैं आपने आंसू आ गया था, मैं रो दिया था, अपने माँ को तो बोल दिया था कि अगर जिंदगी रहा तो मुलाकात होगी, लेकिन कोई भरोसा नहीं है उस टाइम, और वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता।
4: बिल्कुल, और वो सच में हम सभी की, जिसने भी मतलब 2020 से 2022 का समय देखा है और भारत में रहा है, वो स्पेशली उसको उसकी यादों के संग्रहालय में वो कोविड पीरियड एक बुरी याद बन के, किसी किसी के लिए शायद अच्छी याद बन के आया हो कि परिवार मिल गए हों। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो सालों से दूर रहते थे, लेकिन उस मिलन में भी बीमारी का डर था कि भाई कोई आया है तो बीमारी लेके आया होगा, और डर बना रहता था कि परिवार में कोई भी बीमार हो गया तो आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं है। और क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने।
5: बात ये है कि हम लोग हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग बहुत यानी मेहनत और तपस्या किए हैं कि वो सब परेशानियों को यानी अपने शरीर से रख के, परेशानी उठा के आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं।
4: हाँ बिल्कुल, हमने उस समय को हरा दिया। समय की जैसे खास बात होती है कि कैसा भी वो बदलता जरूर है, और उस समय को हमने बदल दिया, मात दे दी, और समय को मात दे के आज हम 2026 में आ चुके हैं। हाँ, उतार चढ़ाव तब से लगे हुए हैं, बदलाव बहुत सारे आए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर क्या कहते हैं, ये जिंदगी है। जिंदगी में एक समय अगर एक साथ चलता रहता तो वो जिंदगी ना होती, वो मशीन बन जाते हम लोग। तो मैं चाहूंगी
5: मैडम
4: जी,
5: कुछ लोग को भी अभी बहुत यानी अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए कि उस टाइम में हम लोग इतने इतने परेशानी में थे, लेकिन कुछ लोग कमाने के चक्कर में यानी दस वाली चीज बीच में तीस में देने लगे थे।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही।
5: ये सब अगर आदमी सोच ले कि हाँ कितने परेशानी में इंसान है, तो वो कम करना चाहिए कि आदमी की जो परेशानियाँ और कम हो, तो और हम लड़ सकते हैं।
4: बिल्कुल। और उस समय की जो चीजें थी, जैसे कि संग्रहालय करना, जैसे मैंने कहा संचय करना भी एक बड़ी बुरी आदत है। अभी जैसे पेट्रोल के लिए आया था कि पेट्रोल अब खत्म होने लगा है, डीजल खत्म हो जाएगा, लोगों ने मतलब कमी तभी आती है जब हम किसी चीज को अत्याधिक तरीके से यूज करने लगते हैं। मैंने देखा, मतलब मैंने ही डीजल के लिए देखा लोगों को लड़ते हुए, बड़े बड़े टैंकर्स ले लेके आ गए डीजल भरवाने के लिए। मैंने तो एक जगह देखा कि पानी का एक बड़ा सा जो टैंकर होता है जिससे रोड वगैरह को भिगोया जाता है, उसमें डीजल लेने के लिए आ गए। तो ये जब हम किसी चीज को संचय करेंगे, इस तरह संग्रहालय के रूप में इकट्ठा करेंगे, तो कमी तो आ ही जाएगी ग्राउंड लेवल पे। तो भाई हम ऐसी किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें कि जिससे और लोगों को, या मेरी मतलब मैं अपनी भी बात करूँगी कि मेरी वजह से किसी को भी परेशानी ना हो। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, सबके लिए बराबर है। बस
5: देखा जाए निगम, तो ये देश जो है एक परिवार है और हम सबका है, तो जरूरी ये है कि जैसे एक घर होता है, घर में अगर 10 रुपए हैं, अब 10 रुपए में पहले 100 रहता, 100 था, तो 100 के हिसाब से हम खर्चा करते थे, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे पास 10 रुपए है, अब 10 में ही घर चलाना है, तो वही परेशानी आज के माहौल में है। डीजल का तो जैसे पहले मिलता था तो कैसा भी करके घूमते फिरते थे, टहलते थे, लेकिन अभी थोड़ा कम किस्ती का है, यानी थोड़ा परेशानी है, तो जैसे हम नजायज जाते थे तो नजायज अब ना जाए, जरूरत से ही कहीं जाए आए।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं कहूंगी कि इतनी देर से आप बहुत सारी शायरी लिख रहे हैं, तो दो अल्फाज अपनी शायरी के ऑन एयर भी पढ़े।
5: जी
4: मैं चाहूंगी कि आपने इतनी सारी कविताएं, कविताओं के अंश लिखे हैं चैट रूम में, तो मैं चाहूंगी दो पंक्तियां आप उनकी पढ़ें, कोई भी अपनी पसंदीदा। हाँ हाँ ऑन एयर
5: पढ़ दूंगा, पढ़ने में क्या है, अच्छा है, बेहतर यही है कि जैसे कहते हैं कि हर दर्द है जो मुझे जीने नहीं देता, दिल सब्र कर जाता है मुझे रोने नहीं देता, मैं उसका हूँ ये राज वो जानती है, मगर वो किसी और की है ये सवाल मुझे सोने नहीं देते।
4: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आगे भी आपके कॉल का इंतजार रहेगा, थैंक यू सो मच। तो अब्दुल जी से बात हो गई, भाई हमें सुन रहे थे मनकापुर के पास से, इन्होंने किसी जगह का नाम बताया मोतीगंज, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भाई। देखिए सच में सबका यादों का संग्रहालय, इन्होंने बताया कि इनके पास, इनके वॉलेट में, जैसा कि मैंने कहा, इनके वॉलेट में एक टोकन रखा है जो 2020 की इन्हें याद दिलाता है कि उस टोकन के बिना ही अपने घर नहीं आ पा रहे थे। तो चलिए अगले कॉलर की तरफ रुख करती हूँ, देखती आवाज़ किसकी है। हेलो गुड इवनिंग।
6: नमस्कार,
4: कैसे हैं अनिल जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपकी आवाज़ का, और गोरखपुर में मौसम कैसा है जानना चाहती हूँ।
6: अरे बाबा ने बाबा, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी,
4: हमारे इधर भी 43 डिग्री टेम्परेचर था। तो चलिए थोड़ी सा गर्मी की भी थोड़ी अदा देख लेते हैं हम लोग भी इधर, तो थोड़ा
6: तो उसके शब्द से आपने बोला गाने गाने।
4: वैसे मैं शब्द से पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हर किसी के पास एक छोटी सी यादों की अलमीरा होती है, क्या आपने भी कहीं अपनी कुछ पुरानी यादों को संचय करके रखा है किसी डायरी में, किसी वॉलेट में?
6: मेरे पास भी है ऐसी बहुत सी यादें जो मैंने अपने दिल की डायरी में बंद रखी,
4: मतलब मेजोरिटी आपने, अच्छा दिल की डायरी में रखी, ओहो क्या बात है।
6: क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो गुम हो जाती है लेकिन दिल नहीं गुम होता, दिल तो साथ ही रहे।
4: ये बात सही कही आपने कि दिल से बड़ा कोई भी मतलब म्यूजियम नहीं हो सकता, इसने हर अच्छे बुरे पल को कहीं ना कहीं मतलब विजिलेंस किया है। और सबसे खास बात ये है कि मतलब अब तो मैं एल्बम लोगों की बहुत कमी देखती हूँ, लोग शादी के एल्बम बनवा लेते, काम वहीं खत्म, हम लोग के पास हर चीज के एल्बम्स हुआ करते थे, किसी का बर्थडे,
6: हमारा एल्बम के प्रति कुछ नजरिया अलग है।
4: क्या बताइए,
6: मेरा नजरिया ये है कि ऐसा वो क्षण क्या जो आपके पास में ना, या आपके सोच में ना,
4: वो बात सही है।
6: भाई तस्वीर ले गया
4: क्या बात,
6: फिर उसको तस्वीर में देखने की क्या जरूरत
4: है। हाँ ये बात तो सही है,
6: जब हम बैठते हैं तो हमको एक एक क्षण एक एक चीजें यार मतलब मेमोरी मेरी साथ होना चालू होती है, तो मुझे उसकी तस्वीर की क्या आवश्यकता, इसीलिए कहा दिल की तिजोरी में मैं रखता हूँ अपने संग्रह में।
4: क्या बात है, तो मैं चाहूंगी यादों से कोई बढ़िया सा गाना आप सुना दें आज, आपकी आवाज़
6: तो
4: वैसे
6: ही है। मैं यादों से ही मैं सुना रहे वाला सुना रहा
4: हूँ। स्वागत है,
6: मैं गाना सुना रहा हूँ, रफी साहब का गाना है
4: जी,
6: याद न जाए बीते दिनों।
4: अरे वाह क्या बात है,
6: याद न जाए

बीते दिनों की याद के नाए जो दिन दिल को बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए। जो पखेरु होते पिजरे में मैं रख लेता। दिन जो पखेरु होते पिजरे में मैं रख लेता। पालता उनको जतन से मोती के दाने देता। तीन सर रहता लगाए याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए वो दिन दिल

0: धन्यवाद है।
1: क्या बात है, क्या अदा है और क्या निभाया है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी आपने गाने को
0: धन्यवाद।
1: शिद्दत से
0: अगर मैंने
1: निभाया है।
0: कोशिश किया और थोड़ा बहुत, बाकी कोई कमियां रहती है।
1: कमियां तो मैं तो इस कमी ढूंढने के लिए मैं उस काबिल होनी चाहिए हूँ पहले से तो, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप निभाते अंदाज में हैं और यही अंदाज आपको सबसे अलग बनाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि आपका दिल का जो संग्रहालय है यादों का वो बढ़ता जाए उस कोने और उस संग्रहालय में हमें भी छोटी सी जगह
0: अरे
1: मिले
0: बिल्कुल है, तभी तो मैं यार, मतलब अगर मैं रहता तो मैं फोन क्यों करता।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
0: ओके ओके धन्यवाद।
1: तो भाई अनिल जी ने अपनी आवाज़ में अपनी यादों का, जो कहते हैं ना, यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो,
2: दिल की आवाज कोई पहचानता नहीं, दिल का दर्द कोई जानता नहीं, हम भी नहीं चाहते आपको परेशान करना, मगर क्या करें, ये दिल है कि मानता नहीं।

0: छुपा के रखे हैं। तो बताइए आपके पास
1: कुछ यादें दिल चुरा लेती हैं, कुछ बातें दिल जला देती हैं। हम चुप रहकर भी सब सह जाते हैं क्योंकि खामोशी हाल बता देती है। हम टूटे जरूर हैं मगर हारे नहीं, हालातों से लड़े हैं मगर डरे नहीं। आज दर्द ने थोड़ा झुका दिया है, कल यही दर्द हमें और निखारेगा। इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, इश्क वो है जो दिल को निभाया जाए। लफ्ज गम है और एहसास ज्यादा हो तभी प्यार का सच्चा कहा जाए। हर किसी को हम समझा नहीं पाते और हर दर्द किसी को दिखा नहीं पाते। मुस्कान ओढ़ कर जीना पड़ता है, किसी हर आंसू किसी को दिखा नहीं पाते।
0: क्या बात है, बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे पहले तो मेरे सवाल का भी जवाब मुझे नहीं मिला। सृष्टि, आपने अपने घर में किस कोने को या किस जगह को अपनी मेमोरी स्पॉट बना के रखा है?
1: मेमोरी में तो मेरे सबसे पहले वॉलपेपर होती है।
0: ओहो क्या बात है,
1: वॉलपेपर मेरी पेंटिंग भी लगी है और कुछ आर्ट बनाए वो भी लगाए हुए हैं।
0: अच्छा, तो मुझे आपकी कोई पेंटिंग मिलने वाली है या नहीं, जिसे मैं भी अपने यादों के म्यूजियम में सृष्टि की एक पेंटिंग छुपा के रख सकूं? थैंक यू सो मच। और सृष्टि, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा से कुछ अलग लिखती हैं और लिखने की कोशिश भी करती हैं, सुनाती भी हैं। तो मेरे लिए सबसे खास बात और खास याद ये है आपके लिए कि आपका अंदाज, आपका ये भोलापन, ये आपको बरकरार रखना चाहिए, जिससे हमारी यादों में आप याद नहीं बन के रहें, आप करंट मेमोरी बन के रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: बाय।
0: तो सृष्टि ने भी भाई अपनी शायरी के अंदाज से बताया कि दर्द और मुस्कान इन सब का रिश्ता क्या है। फिलहाल ये रिश्ता आगे भी बरकरार रहेगा, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनाना ज़रूर बनता है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना आप लोग के साथ।

0: तो इस गाने को शुरू करने के पहले मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक कॉल और आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए, देखते कौन है। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
1: श्रद्धा तिवारी।
0: श्रद्धा, ओ माय गॉड, कैसी हैं आप?
1: हेलो मैम,
0: कैसी हैं श्रद्धा आप? हेलो श्रद्धा, कैसी हैं आप? सबसे पहले हालचाल जानना चाहूंगी आपका।
1: यस मैम, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: अच्छी तो आप हमेशा से मुझे लगती है और आज भी लग रही हैं। फिलहाल आपसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगी कि आपके घर में आपकी यादों को या आपके मेमोरीज का कोई ऐसा स्पॉट है जहां आप जाती तो आपको बहुत सारी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं?
1: जी, हमारा कमरा, हमारी मम्मी का जो कमरा है उसमें हम और दीदी रहते थे एक साथ, तो जब हम जाते हैं तो उनकी यादें आती हैं और अपनी बुक्स सारी कुछ उसी में रखे हैं।
0: छोटे छोटे कटिंग्स, छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर छुपा छुपा के रखे रहते थे। हाँ भाई, कॉन्टेक्ट लिख दिया किसी का ग्रीटिंग है तो उसको रख दिया, फ्रेंड का ग्रीटिंग है और बहुत सारी चीजें, कोई गाना लिख दिया।
1: अभी बहुत सारी ग्रीटिंग हम रखे हुए हैं जो फिफ्थ में हमारी फ्रेंड ने मुझे दिया था।
0: किताबों के पीछे गाने लिख देना गाने वालों का ये काम रहता
1: है। बहुत सारी चीजें,
0: क्या बात है। तो आज श्रद्धा यादों पे मैं चाहूंगी आप कोई गाना सुनाए अच्छा सा।
1: मैम, जहाँ याद की बात आती है, हमें सबसे ज्यादा अपनी दीदी की याद आती है जो हमसे दूर चली गई है अपने ससुराल, तो हम उनके लिए गाना सुनाना चाहते हैं।
0: स्वागत है।
1: जो हमने खुद से लिखा है।
0: वाओ, क्या बात है सिस्टर लव, क्या बात है।
1: यस मैम,
0: स्वागत है।
1: ओ दीदी।

हरा के भुला नाही पाए बहन, माँ के प्यार मिलल बा तोहसे मिलल बहन के प्यार हो, यार के यारे बा तोहसे सौक दुलार हो, तोहसे

0: तोहरा बिना ना रह पाए बहन। यदि एक रिश्ता रहे तो रउआ के भूल जाती, यदि एक रिश्ता रहे तो रउआ के भूल जाती, लेकिन रवि से तो हमार हर रिश्ता अकेला। आई लव यू दीदी।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई अपनी बहन को इतना प्यार कर सकता है तो वो आप हैं। क्या लिखा आपने, और उससे भी खास आपके गाने का अंदाज। थैंक यू सो मच श्रद्धा। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे साथ एक प्यारी सी लड़की ने, एक आर्टिस्ट है जिसको लिखने की कलाकारी आती है, जो कभी शिव पे लिखती है, कभी अपनी बहन पे लिखती है, और कभी हम सभी पे लिखती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच श्रद्धा, यू आर द बेस्ट लिसनर। क्या बात है, यू विल बी ऑलवेज इन द टॉप। और मुझे पता है आप थोड़ा भावुक भी हो गए अपनी दीदी को याद करके। कोई बात नहीं, देखिए ये तो ज़िंदगी का, मतलब कह सकते हैं कि एक चरण है, हम सभी को उसे से गुजरना होता है। कोई किसी के साथ परमानेंटली नहीं रहता, अब वो आती जाती रहती हैं, इस बात की खुशी है। कोई भी परमानेंटली साथ नहीं है, ना वो समय है, ना हम है, ना कोई भी। ठीक है, थैंक यू सो मच श्रद्धा। तो श्रद्धा ने हमें इतना प्यारा सा गाना सुनाया, और वो इमोशनल भी होगी, पर मैं नहीं चाहती कि श्रद्धा बहुत इमोशनल हो। लेकिन चलिए, एक गाना मैं आप लोग को ज़रूर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी चलें यादों के पुराने एल्बम में, और उस एल्बम में छुपा के जो दिन रखें उन्हें जिएं। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग फ्रॉम छिछोरे।

0: वो जो सीनियर्स है ना, उन लोगों ने बोला कि आपके साथ कॉफी पीनी पड़ेगी वरना बहुत धोएंगे।
1: मैं कॉफी नहीं पीती।
0: हाँ तो ठीक है ना, चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं। दो चाय स्पेशल।

0: आज क्या हुआ?
1: ओ, आज सीनियर्स ने बोला है कि तुम्हारे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी।
0: मैंने बोला मूड नहीं है।
1: तो फिर उनका मूड खराब हो जाएगा।
0: अन्नी की यही बात दूसरों से अलग थी। उसने कभी मुझ पे गिव अप नहीं मारा।
2: भाई तो प्यार मांगने जा रहा है कि भीख? ये भाई अब लग रहा ना हीरो।
0: तुम ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे ना?
1: अगर मुझे पता ही होता कि तुम्हें कैसे इम्प्रेस करना है तो मैं कर नहीं लेता।
3: राघव की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, लेकिन डिटेरियरेट भी नहीं हो रही है। लेट्स वेट एंड वॉच।

0: कुछ भी मैंने कर देना कपड़े। अरे अरे यार सुनो तो, अरे
1: हाय, आज मेरे सीनियर से भेजा है।

0: तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और अब देखते हैं किसकी आवाज हमें सुनने को मिलने वाली है। हेलो,
1: शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम तेज नारायण शुक्ल है।
0: ओ तेज नारायण जी, फैजाबाद से, आपको कैसे भूल सकते हैं, आपकी कलम जादू करती है और उस जादू को कई बार हम लोग महसूस कर चुके हैं। कैसे हैं?
1: जी, धन्यवाद। तो जैसे आज बात यादों की चल रही थी, तो थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यादें होती हैं, जैसे जो दिमाग में पैबस्त हो जाती हैं, तो वो मतलब मैं उनको लिखने की कोशिश करता हूँ तो कविता की शक्ल में आ जाती हैं।
0: क्या बात है।
1: तो एक मतलब ये मेमोरी से ही उपजी हुई कविता है जो
0: क्या बात है।
1: जी मैं शुरू करूँ? मैं
0: जी स्वागत है आपकी आवाज।
1: दर्द को जीने की सलाहियत रखो, दर्द को जीने की सलाहियत रखो, जख्म खुद सीने की काबिलियत रखो। वक्त तो जैसा भी है गुजर जाएगा, वक्त तो जैसा भी है गुजर जाएगा, साथ इसको लेके चलने की अलामत रखो। रिश्तों में बन रही दीवार को पहचानो, रिश्तों में बन रही दीवार को पहचानो, हंसी में पनप रही नागवारी को जानो। तुमने क्या सोचा था सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, तुमने क्या सोचा था सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, बदलाव भी मुकद्दर है इसे भी मानो। ये फिर आगे आगे का मकता है कि रिश्ते भी गुजरते वक्त के साथ एक नया मुकाम तय करते हैं, रिश्ते भी गुजरते वक्त के साथ एक नया मुकाम तय करते हैं। पहले इनकी कैफियत कुछ और थी, अब तो इनकी तलब ही पता नहीं, शायद ये कुछ और ही कहते हैं। वक्ती हवा है बदल जाएगी, आज थोड़ी सर्द है कल बहार लाएगी। वैसे भी दर्द के जानी भी सुकून का मजा है, वैसे भी दर्द के जानी भी सुकून का मजा है, वरना पहाड़ों पर मौसम हमेशा एक सा है। जी तो ये छोटी सी कविता थी। हेलो,
0: कविता नहीं थी ये, मुझे लगता है कि एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं कैनवस था जिसपे आपने बहुत सारे दिल की बातें लिख दी थी और हम उसको आंखों से देख तो नहीं पा रहे थे लेकिन महसूस कर रहे थे।
1: भी एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा और सुनाना चाहता हूँ। मतलब जैसे हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो ये कहते हैं कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ।
0: क्या बात है।
1: और जी ये कहते हैं मैं बहुत साफ बोलता हूँ। मैं तो इसके अलावा कुछ सुनते नहीं, उनको लगता कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनका सबसे बड़ा गुण यही है। इस पे मैंने 4-6 लाइन लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: जी। किस्सा ए साफ गोई बहुत हुआ, अब रहने भी दो यार। किस्सा ए साफ गोई बहुत हुआ, अब रहने भी दो यार। नजाकत नफासत सदाकत भी कोई चीज है, इन्हें भी कोई रखेगा सामने तो रखने भी दो यार। हवाओं का रुख है, जी धन्यवाद। हवाओं का रुख है बदल सकता है तो बदलने भी दो यार।
0: क्या बात।
1: जी अब तो घर भी बहुत हो गए हैं मोहल्ले में और इनमें भी लोग रहते हैं तो रहने भी दो यार। जी ये छोटा सा है।
0: क्या बात है, बेहतरीन अंदाज। मतलब थोड़ा सा व्यंगात्मक लेकिन मजेदार। क्या बात है।
1: जी, क्या बात है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तेज नारायण जी, आपकी आवाज हमारी शान है, शाम की शान है।
1: जी, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सो तेज नारायण जी ने आज महफिल लूट ली और लिखते हैं खुद और खुद लिख के बहुत सुंदर सुनाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान खान, गुड इवनिंग, कैसे हैं? सविता जी, सविता शास्त्री जी गोरखपुर से हमारी, कैसी हैं आप? और बंटी गुर्जर हमें राजस्थान से सुन रहे हैं, कैसे बंटी, आपका क्या हाल है? और अगले कॉलर को भी मैं मौका देना चाहूँगी, आवाज़ सुनते हैं क्या है इसकी। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम?
2: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: मुमताज जी कैसे हैं? सबसे पहले तो स्वागत है आपकी आवाज़ का।
2: बस ऊपर वाले का दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है और क्या चाहिए।
0: क्या बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे।
2: जी
0: आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपने घर में अगर कोई जगह बनाई है जहाँ पे आप अपनी पुरानी चीजें रखते हैं, तो वो कौन सी जगह है? मतलब आपकी अलमीरा, आपके कई लोग क्या करते हैं ना, अपने गद्दे के नीचे जहाँ सोते हैं उसके नीचे बहुत सारे कागज, बहुत जरूरी चीजें रखते हैं। कोई पेन रख देगा, कोई कॉपी रख देगा, कोई डायरी रख देगा। आप बताइए कहाँ अपनी पुरानी, अभी आपने जरूरत की अपनी मेमोरेबल चीजों को रखते हैं?
2: क्या चीज रखते हैं मैडम?
0: अपनी यादों की चीज, जैसे आपके पास किसी की डायरी हो या किसी ने आपको तोहफा दिया है कोई, तो उनको कहाँ आप सजो के रखते हैं? मतलब
2: हम अपने पास उसको रखते हैं, बैग में छुपा के।
0: अरे वाह क्या बात है, मतलब आपका बैग ही आपका खजाना है, आपका म्यूजियम है। क्या बात है। तो आज क्या सुनाना चाहते हैं आप?
2: कुछ शायर सुनाना चाहता हूँ।
0: क्या बात है, शायरी स्वागत है।
2: इजाजत है?
0: बिल्कुल स्वागत है।
2: कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मेरी धरती की बेचैनी को ये बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जी मैडम
0: क्या बात है। और मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तुम मुझसे दूर कैसे है, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। आपने बहुत प्यारी कविता, और मैं अगर इस कविता की बात करूँ, बहुत लंबी चौड़ी कविता है, लेकिन आपने कुछ अंश सुना के ही पूरी कविता को महफिल में जिंदा कर दिया। क्या बात है।
2: एक लाइन और सुना देता हूँ।
0: स्वागत है, स्वागत।
2: दूसरा सुनाता हूँ आपको।
0: जी बिल्कुल।
2: ओठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, ओठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, दानिश्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए, बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, अपना दुबट्टा छत पे उड़ाती हो किस लिए, दानिश्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए।
0: क्या बात है।
2: जब तुमसे पूछता हूँ मैं अंजाम इश्क का, जब तुमसे पूछता हूँ मैं अंजाम इश्क का, हंस हंस के सहेलियों को सुनाती हो किस लिए, दानिश्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए। जी मैडम
0: क्या बात है। और हम भी जानना चाहते हैं कौन है जो जला रहा है आपके जी को। फिलहाल आपके कॉल के लिए शुक्रिया। और मुमताज़ जी आपने सच में जान डाल दी शाम में, क्या अंदाज़ है, गाने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा, और मतलब कविताएं भी चुन चुन के आप सुनाते हैं वो जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो। क्या बात है।
2: आपके लिए एक है, कहिए तो सुना देता हूँ।
0: बिल्कुल स्वागत है।
2: एक दुआ भरा गज़ल है। तमाम उम्र तुम्हें जिंदगी का प्यार मिले।
0: क्या बात है।
2: और खुदा करे ये खुशी आपको बार बार मिले।
0: वाह वाह वाह वाह क्या कहने।
2: और बना के रस में मुलाकात को सदा रखना, बिछड़ भी जाऊं तो ख्वाबों का सिलसिला रखना।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ख्वाबों में ही क्यों, हम ऑन एयर हमेशा ऐसे ही मिलते रहेंगे, और अगर खुदा ने चाहा तो ताउम्र ऐसे मिलते रहेंगे। क्या बात है।
2: जी जी जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मुमताज़ जी से बात हो गई, शाम मुकम्मल हो गई, और हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ने को तैयार है। फिलहाल आप लोग बताइए आपकी एनर्जी कहाँ है।

0: हमारे साथ एक लिसनर और जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम उनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम?
1: राजेंद्र प्रसाद तिवारी।
0: आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं?
1: आपको अमृतसर से सुन रहा हूँ।
0: अमृतसर से? ओहो, अमृतसर पंजाब से हमारे लिसनर राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं, क्या बात है। तो सर, आप हमें सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं? रेगुलर सुनते हैं या फिर आज आपने पहली बार?
1: आपको सुनता हूँ क्योंकि बेसिकली मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, तो आपका यार देख के फिर हम कहा आज हम बात करते हैं आपसे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हमका एक छोटा सा भजन है, आपको सुना डालता हूँ।
0: बिल्कुल, आप हमें ही नहीं पूरे गोंडा शहर को, और मैं चाहूंगी जहाँ जहाँ से जो लोग सुन रहे हैं आप उनको सुनाएं। स्वागत है आपकी आवाज का।
1: सतगुर तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं बस मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरे दर पे रहमत हर रोज बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मेरी दिल की कली खिल जाए। सतगुर तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए।
0: क्या बात है, और बहुत खूबसूरत अंदाज था आपका, और शुक्रिया कॉल करने के लिए, और उम्मीद करूंगी कि आगे भी आपका कॉल आएगा।
1: जरूर करेंगे आपको कॉल, क्योंकि हमसे आपसे हमारी बात होकर बहुत मन को खुशी हुई है कि हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक IR स्टेशन खुल गया है। बहुत अच्छा लगता है हमको सुन के।
0: क्या बात है, और उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसे ही हमारा जो सिलसिला है बातों का चलता रहेगा, और ऐसे ही कॉल पे कॉल आते रहेंगे। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, आपने कॉल किया। और लिसनर्स, अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की बारी है, और इस ब्रेक के बाद वापस से आपके कॉल का सिलसिला चलता रहेगा। और आज मुझे लगता है यादों का जो एल्बम है वो आसानी से खुल गया, और ना सिर्फ खुल गया बल्कि बहुत सारे गानों के साथ खुला, बहुत सारी शायरी और कविता के साथ खुला, और लगता है कि यह एल्बम काफ़ी बड़ा है। और बंटी जी, आपके साथ आशीर्वाद नहीं, हम सबकी दुआएं हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, और देखते देखते मतलब मुझे लगता है कि टाइम भी हो चुका है आप लोगों से दूर जाने का, और दूरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, जब जाएंगे तभी तो वापस आप लोग के पास आएंगे। और आज की शाम सबने जिन्होंने भी कॉल किया, और जिसने कॉल नहीं भी किया मैं उन्हें भी बोलूँगी, आप सबने सच में आज की शाम में 4 चांद लगाए हैं, और ये याद का जो सिलसिला है ये आप लोग के साथ ऐसे ही बना रहेगा, और मैं चाहूँगी कि हम आगे भी इन यादों को बरकरार रखें। और इसी के साथ RJ बीना को अब दीजिए इजाज़त, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए अपना वाला फेवरेट रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में बहुत खास खास बहुत प्यारी प्यारी बात जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की कटरी को नहीं खोली है, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह फटाफट से अपनी फरमाइशी की कटरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपकी, महफिल आपकी, और ये आज सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा के लिए आपकी, यू नो ना। सो वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सबलू सावंत जी बोरीवली मुंबई से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, दीपक हथियागढ़ गोंडा से, उदालक शर्मा मनकापुर से, रिंकू जैन बंटी गुर्जर, सविता शास्त्री उस्मान खान, अब्दुल मुजीम जी आपका भी स्वागत है, तेज नारायण शुक्ला, अनिल शास्त्री गोरखपुर से, सुरेश कुमार जी चौक से, मुकेश यादव गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक गोंडा से, निब्बजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, आप सभी का तहे हुए दिल से स्वागत है और इस्तकबाल है। सो कैसा रहा कल का आपका संडे मुझे जरूर बताना। लेकिन उसके पहले आज मंडे में क्या चटपटी सी बात है, क्या ताजी सी खबर है, और क्या ठंडे ठंडे जज्बात हैं या फिर गरम गरम जज्बात हैं, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ, क्योंकि आज मेरा तो गॉसिप करने का बहुत ज्यादा मन है। कल के हिस्से का आज भी मेरे मन में क्यूरियोसिटी है आप लोग के बारे में जानने की, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल चल रहा है, क्या किसी ने आपका दिल तोड़ा या फिर आपने किसी का दिल तोड़ा, क्या किसी ने आपके जज्बातों के साथ खेला या फिर आपने किसी के जज्बातों के साथ में खेला है, मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिख के बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारा पहला गाना। सो हमारे पास में पहली फरमाइश है हमारी प्यारी सी नटखटी सी अनुष्का जी की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना। चल छैया छैया छैया छैया, ओ माय गॉड, दिल से मूवी का ये गाना एंजॉय करते हैं, ये सुपर डुपर हिट एवरग्रीन सॉन्ग एंजॉय करेंगे अनुष्का की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए दोस्तों सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन का आप बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट फरमाइशी, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड, टड़न टड़न टड़न। मेरे पाँव के नीचे है ना जन्नत, क्योंकि मेरे सर पे आप सभी के इश्क की छांव है दोस्तों।

दोस्तों सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी का ये सुपर डुपर हिट नगमा छैया छैया हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ हमारी छैया छैया मींस अनुष्का जी की फरमाइश पे जो कि हैं श्रावस्ती से। नाउ नाउ नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों और बिना किसी देरी के बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सबीहा फ्रॉम पटेल नगर गोंडा। स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपक की हथियागढ़ गोंडा से। दीपक जी को हथियागढ़ गोंडा से सुनना है गाना कौन हो जो तुम दिल में समाए जाते हो। तो माशूक मूवी का ये गाना एंजॉय करते हैं हाउ रोमांटिक वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे हाउ रोमांटिक दीपक जी की फरमाइश पर जो की है हथियागढ़ गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। म्यूजिक ही कितनी रोमांटिक लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि सालसा चल रहा हो।

प्यार मैं हूँ प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार हाँ, ये प्यार तो ऐसी चीज है, प्रेम तो ऐसा रोग है कि जिसको लग जाए जिंदगी भर पीछा ना छोड़ा जाए, आए हाय। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, सुमित मिश्रा आपका स्वागत है, उसी के साथ में सौरभ मौर्य गुड़वा घाट गोंडा से आपका भी स्वागत है। और एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से, और सबलू सावंत को बोरीवली मुंबई से सुनना है गाना नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, शायद यही वाला। सो एंजॉय करते हैं बिल्कुल ये वाला गाना नहीं, दूसरा वाला गाना सबलू सावंत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, कुछ भी

ज्ञानी मैं बन जाऊँ तेरी टमटम, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, तो बन जाओ ना मेरी टमटम। अगर मैं होती तो मैं तो ये बोलती कि सब कुछ छोड़ो, टमटम बन जाओ। लेकिन दोस्तों, क्या टमटम नाम का कोई भी चीज दुनिया में होता है थिंग? मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की, बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। तो सच में मोहम्मद मुशीब जी, मैं चाहे जहां जाऊंगी मैं आपका नाम जरूर याद रखूंगी, और जब भी आप मुझे मिलेंगे मैं आपको जरूर पहचान जाऊंगी। सो एंजॉय करते हैं नरसिम्हा का ये गाना, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल जले दिल पे काशिक, बाराबंकी के मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड में एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। निशा पटेल नगर गोंडा से आपका स्वागत है।

जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। हमने एंजॉय किया है अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नरसिम्हा मूवी का। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और बिना किसी देरी के बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, जो की है उदालक शर्मा की मनकापुर से। और उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना, ए मेरी नटखटी कॉलेज की लड़कियों लड़कियों, यूं मोहब्बत से हमको ना देखा करो। तो मोहब्बत का गुनाह थोड़ी है कॉलेज के लड़कों, ये मेरा कहना है कॉलेज की लड़कियों की तरफ से।

सभी कॉलेज की लड़कियों, यू मोहब्बत से मुझको ना देखा करो, हमने उदित नारायण की आवाज में इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। हमारे उदालक शर्मा की फरमाइश पर जो कि है मनकापुर से, नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन उसके पहले मोहम्मद मुशीब जी का बाराबंकी से कहना है कि आरजे सिंपल जी, कल हमारी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, ओह माय गॉड। और इसी के साथ में इन्होंने कुछ कहा भी है, इनका कहना है कि ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में, सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे हैं, सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे हैं, जिन्हें कुछ खबर ही नहीं वफा के बारे में। वाह वाह, बहुत खूब मोहम्मद मुशीब जी। और इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है रिंकू जैन की, और उनको सुनना है गाना ये दिल बेवफा से वफा कर रहा है। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये दर्द भरा नगमा रिंकू जैन की फरमाइश पर, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है द ग्रेट सेन साहब को। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, मीनू फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड।

0: वफा से वफा कर रहा है। हमने एंजॉय किया है लता जी की आवाज में ये बहुत ही दर्द भरा सा नगमा रिंकू जैन की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू दोस्तों अगली वाली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की पटेल नगर गोंडा से, और सबीहा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना प्यार करते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सबीहा की फरमाइश पर, जो कि है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: हेलो,
2: हे
1: नील, मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
2: यार आई एम रियली सॉरी ऐश्वर्या, मैं इस ट्रिप के लिए नहीं आ पाऊंगा।
1: क्यों?
2: लास्ट मिनट बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है।
1: एनीवे मैं अकेली चली जाऊंगी।
2: हेलो लिसन,
1: बाय।
2: लिसन,

चांद भी देखे तो तेरा दीदार करते हैं, हमसे पूछो तुमसे कितना प्यार करते हैं। हमने एंजॉय किया है सबीहा की फरमाइश पर ये गाना, और सबीहा है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सौरभ मौर्य की गुड़वा घाट गोंडा से। उनको सुनना है पंजाबी सॉन्ग, सतिंदर सरताज का गाना उडारियां टू। तो एंजॉय करते हैं सौरभ मौर्य की फरमाइश पर ये वाला गाना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुस्तफा जी, आपका स्वागत है। दोस्तों मुझे सतिंदर सरताज की आवाज़ बहुत पसंद है, इनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग को कैसे लगते हैं मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो सतिंदर सरताज की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सौरभ मौर्य की फरमाइश पर जो की है गुड़वा घाट पूना से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से आपका स्वागत है और जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से आपका भी स्वागत है। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से। निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, चाह के भी हम मुस्कुरा ना सकेंगे। और तुझको तो मिल गया प्यार अपना, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे। सो इश्क ना करना, हम इंजॉय करते हैं फिर बेवफाई का ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी निशा जी की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। हाय हाय, दर्द भरे नगमे हो तो एकदम ऐसे ही होने चाहिए कि जब तक आंसू टपक ना जाए दो बूंद, तब तक गाने सुनने का मजा ही क्या। क्यों, सही कहा ना मैंने?

सो दोस्तों हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले स्वागत है आपका अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी।

0: सताया नहीं करते।
1: सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारे आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है पंडित आशीष शुक्ला की, और उनको सुनना है गाना रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा गुनाह मूवी का, सिर्फ और सिर्फ पंडित आशीष शुक्ला की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। मिलते हैं सीधे 9 बजे आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, आपके अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही दर्द भरा सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

था, बस जरा सी ठेस में टूट गया। कांच का तोहफा था, बस जरा सी ठेस में टूट गया। वो जो साथ चलने का वादा था, बीच राह में छूट गया। हम तो संभल भी जाते अपनी बेबसी को छुपा कर हम तो संभल भी जाते अपनी बेबसी को छुपा कर, पर इस बार किस्मत का भी हमसे दामन छूट गया। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब और क्या है हालचाल और क्या आप लोगों ने पेट पूजा किया मुझे जरूर बताना, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। मुकेश यादव गोंडा से, प्रमोद श्रीवास्तव गोंडा से आप दोनों का स्वागत और इस्तकबाल है, और बिना किसी देरी के एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अक्षय कुमार की, जो कि है गोंडा से, और अक्षय कुमार को गोंडा से सुनना है गाना तुम सांसों में तुम जिगर में। सो एंजॉय करते हैं हमको दीवाना कर गए का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, हिमेश रेशमिया तुलसी कुमार का गाना, सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी और कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दीवाना दीवाना कर गए। हमने एंजॉय किया है अक्षय कुमार की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की। उनको सुनना है गाना उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। सो अंगूठी और नगीना वाला गाना हम जरूर इंजॉय करेंगे, लेकिन इसके पहले मुकेश यादव का कहना है कि वो सामने था और हम पलके उठा ना सके, वो सामने था और हम पलके उठा ना सके, चाहते थे मगर पास उनके जा ना सके, ना देख ले वो अपनी तस्वीर हमारी आंखों में, ना देख ले वो अपनी तस्वीर हमारी आंखों में, बस यही सोचकर हम उनसे नजरें मिला ना सके। इंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश, मींस मुस्तफा जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

0: करो
1: तुम याद ना आया करो और याद आने के पहले आ जाया करो। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा संतोष कुमार जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली से। और इस नगमे को सुन के आपकी आज सिंपल कुछ कहना चाहती है कि वो रोए तो बहुत पर मुझसे मुंह मोड़ कर रोए, कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए, मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े, आहा मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े, सुना है बाद में उन्हें जोड़ जोड़ कर रोए। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है आवाज विकास गोंडा से रवि की, उनको सुनना है गाना एक कुआरा फिर गया मारा। सो एंजॉय करते हैं मस्ती का ये गाना उदित नारायण अभिजीत जी की आवाज में हमारे आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम धर्मेंद्र मोहन जी, आवाज विकास गोंडा से आपका भी स्वागत है। आहा, स्टे ट्यून्ड।

रह गया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आवाज विकास कुंडल से रवि की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है मुकेश यादव की गोंडा से और नागेश्वर धाकड़ की राजस्थान से। राजस्थान से नागेश्वर धाकड़ को और मुकेश यादव को गोंडा से सुनना है रईस मूवी का गाना लैला में लैला। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि लफ्जों का कारवा आज यही रुकता है मगर जज्बात जिंदा रहेंगे। लफ्जों का कारवा आज यही रुकता है मगर जज्बात जिंदा रहेंगे। हम दूर जाएंगे भले ही पर हवाओं में हमारे पैगाम जिंदा रहेंगे। अब इजाजत दीजिए इस मोड़ पर अपनी सारजे सिंपल नॉट सो सिंपल को। कल फिर मिलेंगे महफिल सजेगी, कल फिर मिलेंगे महफिल सजेगी और ये हंसी सिलसिले जिंदा रहेंगे। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल सो मच लव, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये एनर्जी से भरपूर गाना। सो दोस्तों शायद आज हमारे लिसनर गीता श्रीवास्तव जी का है हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। अगर हाँ तो गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से आपको जन्मदिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से और हमारे सभी लिसनर्स की तरफ से और ज्ञान स्थली के पूरे परिवार की तरफ से। और ये गाना डेडिकेट करती है आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल सिर्फ और सिर्फ हमारी बर्थडे गर्ल गीता श्रीवास्तव जी को। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप। आदाब आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशकी 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और मैं हूँ आप सभी के साथ, आप सभी का दोस्त मनु, ताकि आपकी शाम थोड़ी सी हो सके और खास। आज जिस शायरा को आपके बीच लेकर आए हैं, कल हमने जिंदगी के मुख्तलिफ लहजों पर बात की थी, आज एक ऐसी आवाज पे बात करते हैं जिस आवाज को अगर आप मुशायरे नहीं सुनते हैं तो शायद आपने न सुना हो। वो नाम है जुबीना अयाज। बहुत ही कम समय में बहुत ही तबील सफर तय किया, एक बहुत बड़ा नाम कमाया, और भारत ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी उर्दू और हिंदी ज़ुबान बोली और समझी जाती है, रुबीना अयाज को वहाँ बड़ी शिद्दत के साथ याद किया जाता है। उन्होंने लिखा कि होती है जो रगों में वो हलचल उदास है, जो होती है जो रगों में वो हलचल उदास है, दिल भी तेरे बगैर मुसलसल उदास है। मुसलसल मतलब हमेशा। दिल भी तेरे बगैर मुसलसल उदास है, ऐसी मोहब्बतों की भी क्या होगी अब मिसाल, ऐसी मोहब्बतों की भी क्या होगी अब मिसाल, लिपटे नहीं जो सांप तो संदल उदास है। संदल मतलब चंदन का पेड़, यानी अगर सांप नहीं लिपटा तो चंदन का पेड़ उदास हो गया। तुमने मेरे यकीन का ऐसे किया है कत्ल। अब देखिए साहब, बात भरोसे की हो गई। तुमने मेरे यकीन का ऐसे किया है कत्ल, जो देख कर के शहर का मक्तल उदास है। मक्तल बोलते हैं वो स्थान जहाँ पर, यहाँ नहीं लेकिन जहाँ पर कानून चलता है शरिया का, वहाँ पर लोगों को जो गलत काम करते हैं उनको वहीं पर ले जाकर मृत्युदंड दिया जाता है, गर्दन काट दी जाती है, तो उस स्थान को मक्तल बोलते हैं। तुमने मेरे यकीन का ऐसे किया है कत्ल, जो देख कर के शहर का मक्तल उदास है। मशहूर है जमाने में जंगल की खामोशी, मशहूर है जमाने में जंगल की खामोशी, लेकिन मेरी खामोशी पे जंगल उदास है। जी हाँ, होता है कि इंसान के जब भरोसा टूटता है, यकीन टूटता है, तो वो कुछ देर तक तो समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हुआ, और जब उसको समझ में आ चुका होता है तब तक तो थोड़ी सी देर हो चुकी होती है। 1987 में एक फिल्म आई थी उत्तर दक्षिण, बहुत ही प्यारी फिल्म, कई मौका मिलेगा तो देखिएगा आप लोग। और मोहम्मद अजीज ने उसमें एक बहुत ही प्यारी सी गजल गाई थी। कभी कभी होता है कि एक ही शख्स से आपको प्यार भी होता है और उसी शख्स से आपको नफरत भी होती है। समझ में नहीं आता कि वास्तव में उसे हम प्यार कर रहे हैं या उससे हम नफरत कर रहे हैं। एक लाइन कहीं पढ़ी थी मैंने कि दुनिया में एतबार के काबिल नहीं कोई, दुनिया में एतबार के काबिल नहीं कोई, एहसास हो रहा है तुम्हें जानने के बाद। यानी आपको जाना तो इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया में यकीन के लायक कोई नहीं है, और जब यकीन के लायक कोई नहीं है साहब, तो फिर क्या किया जाए, फिर भी यकीन करना पड़ता है। कहा जाता है, एक शब्द होता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थियों ने कहते पढ़ा मैंने, नेसेसरी इविल, बुराई है लेकिन जरूरी है। तो जब
कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जो हमारी जिंदगी का सच होती हैं। मतलब अगर हम इसको अपने अवधी भाषा की कहावत में बोलें तो एक कहावत कही जाती है कि कनवक देखे जीव जल जाए और कनवा बिना रहू ना जाए। मतलब उसको देखते हैं तो एकदम मन करता है कि क्या बोल दें और उसके बिना रह भी नहीं सकते। जी हाँ, कुछ इसी तरह की कभी कशमकश आपकी जिंदगी में भी आई होगी, कभी आपने महसूस किया होगा। चलिए आज की पहली गजल कुछ ऐसे ही एहसासात को बयां करती हुई आपके समक्ष आएगी और उम्मीद है कि आप इस गजल का पूरा लुत्फ उठाएंगे। और फिलहाल भाई जो लोग हमारे साथ चैट बॉक्स में हैं, आज पहला संदेश हमको प्राप्त हुआ भाई प्रबल मिश्रा जी का। गुड इवनिंग सर जी, प्रणाम प्रबल जी, आपको कैसे हैं? आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मुस्तफ़ा सऊदी से हैं भाई, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या, आदाब, कैसे हैं आप? और कायनात जी आ चुकी हैं भाई। और सर मुखालिफत तो हमारे बेटे का नाम है, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने बेटे की का नाम मुखालफत रख दिया, कि ये दोस्ती नहीं रखा, ये तो बड़ी। और मुखालफत बहुत अच्छी चीज़ है बशीर, बस एक बहुत अच्छे गज़ल कहने वाले हुए, उन्होंने कहा था कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा था कि मुझे खुदा ने गज़ल का दयाल बख्शा है, ये सल्तनत में हुकूमत के नाम करता हूँ। जी हाँ, हमारे साथ मुस्तफ़ा सऊदी जी हैं, कायनात जी हैं, और वो आए और दिल में उतर गए, देख के बस एक नज़र हमको देखे, बस उसी पता चला, क्या भाई क्या पता चला। और जी हाँ, कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ पता चली, क्या बात तकली भाई कायनात जी की, ये इस आपको बताएंगे इस प्यारे से संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल आइए जिंदगी की एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर जो इंसान आप, जिस इंसान को आप बहुत प्यार करते हैं, उसी इंसान के द्वारा कोई ऐसा कृत्य हो जाए जिसे आप मुआफ़ न कर सकें, तो हालात कुछ ऐसे बनते हैं। सुनते रहिए और रेडियो गाना 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए, 1987 में आई ये फिल्म, फिल्म का नाम उत्तर दक्षिण, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गजल को लिखा आनंद बख्शी ने और आवाज दी मोहम्मद अजीज। बहुत ही प्यारी गजल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखते हैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस गजल को पहली बार सुन रहे हो, अगर पहली बार आप सुन रहे हो तो जरा बताइएगा कि ये गजल आपको कैसी लगी।

जी हाँ, दर्द सीने में छुपा लेते हैं और छुपाना भी चाहिए, मेरा अपना भी मानना यही है। इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु की अपनी एक जगह है और अगर उस जगह से वो चीज़ हटेगी तो वो हास्यास्पद होगी, वो मजाक का विषय होगी। 20,000 रुपये का जूता पहनेंगे तो पैर में ही पहनेंगे और 50 रुपये की कैप लगेगी तो सर पे। अब अगर ये हम सोचें कि 20,000 का जूता है, लाओ इसको सर पे रख लें, तो क्या होगा? हास्यास्पद होगी ऐसी स्थिति। तो दर्द को सीने में छुपाए रखना ये अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी कविता भी यही कहती है कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी ठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। अक्सर होता है दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो कोई बात नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करता है। तो आप अपने दिल के छाले बता रहे हैं और उधर वाह होती है, क्या बताएं साहब, ऐसी ही जिंदगी है। हमारे ऐसा भाई कायनात जी बताते हैं, मुख्तलिफ बोला सर, मुखालफत नहीं, क्या बात है, मुख्तलिफ क्या बात है, ये शब्द बड़ा अच्छा लगा हमको, मुख्तलिफ आपके बेटे का नाम है। और मुख्तलिफ का मतलब होता है दूसरों से जुदा, एकदम अलग अंदाज का। अब मुख्तलिफ से हमको एक गजल याद आ गई कि मेरी कहानी तेरी कहानी से मुख्तलिफ है, अलग है। मेरी कहानी तेरी कहानी से मुख्तलिफ है कि जैसे आँखों का पानी पानी से मुख्तलिफ है। आँखों का पानी और सामान्य पानी बहुत अंतर होता है। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू है जिसमें 99% दर्द और 1% वाटर होता है। तो मेरी कहानी तेरी कहानी से मुख्तलिफ है कि जैसे आँखों का पानी पानी से मुख्तलिफ है, वो एक लम्हा जो दस्तरस में नहीं रहा है, दस्तरस मतलब हमारे बस में नहीं रहा है, वो एक लम्हा जो दस्तरस में नहीं रहा है, वो जिंदगी भर की रायगानी, रायगानी मतलब बर्बादी, वो जिंदगी भर की रायगानी से मुख्तलिफ है। ये झील आंखें हमें जो पैगाम दे रही हैं, ये झील आंखें हमें जो पैगाम दे रही हैं, वो तेरे होठों की तर्जुमानी से मुख्तलिफ है। तर्जुमानी मतलब अनुवाद, मतलब आपकी आंखें कुछ बोल रही हैं और आपके होंठ कुछ और बोल रहे हैं। ये झील आंखें हमें जो पैगाम दे रही हैं, वो तेरे होठों की तर्जुमानी से मुख्तलिफ है। तेरी जुदाई का हादसा, तेरी जुदाई का हादसा ऐसा हादसा है, तेरी जुदाई का हादसा ऐसा हादसा है जो तेरी हकीकत की हर कहानी से मुख्तलिफ है। मैं दस्त वहशत की रेत हूँ और तू दरिया, यानी हम रेगिस्तान हैं आप दरिया हैं। मेरी रवानी तेरी रवानी से मुख्तलिफ है। जी हाँ, आपने अच्छा किया कि मुख्तलिफ शब्द बोला और ये इतनी खूबसूरत सी गज़ल हमको याद आ गई। जी हाँ, उन्होंने लिख दिया, वो आए और दिल में उतर कर देख लें बस एक नज़र, हमको भी देख कर देख लें बस, उनका पता घर और नंबर मैं खुद ही ढूंढ लूँगी, वो एक बार मेरे दिल में उतर कर देख लें बस। सर लीजिए, आसान होगा हिंदी में लिख दिया। जी हाँ, आपको पता है कि हमारी अंग्रेज़ी थोड़ी सी कमज़ोर है और इसके लिए भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अंग्रेज़ी को हिंदी में लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं आपके और खैर मकदम करते हैं आपका। जी हाँ, धर्मेंद्र जी हमको मनोज सर कहा करते हैं जबकि मेरा नाम मनु है। बहाल कुछ अच्छा लगा भाई। धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से हैं जी, नमस्कार। और सविता शास्त्री जी है, चरण स्पर्श है, कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। जी हाँ, नेहा जी बहराइच से है, नमस्कार सर जी, आदाब। बहुत बताइए भी, आप गोंडा में हैं या चली गई भाई गोंडा छोड़ करके जी? और भाई अब इसके पश्चात या आपस की भाई क्या बात है, मिसाल ने लिखा है, बाबा क्या बात है, तो क्या आंखों के आंसुओं से भी कोई केमिकल बन सकता है क्या? देखिए साहब,
आंसुओं से केमिकल बनाए जाएंगे ना तो दुनिया की सारी दौलत कम पड़ जाएगी। क्योंकि अभी मैंने बोला है कि दुनिया का सबसे जो महंगा लिक्विड है वो आंसू है, तो बिल्कुल आप लेकर के आइए और हम उसको बाजार में बेच करके आपको करोड़पति बना देंगे। अरे सर जी, हमारी आंखें भी झील जैसी हैं। क्या बात है प्रबल जी। नहीं, आपका व्यक्तित्व भी एकदम बजरंग बली जैसा है, मतलब स्वस्थ हैं। भगवान करे आप, ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ और मस्त रखे। जी हाँ, आंखों आंखों में कोई फर्क रहता है। किसी की आंखें तो झील सी गरी दिखती हैं और किसी की आंखें लगातार देखें तो नजर लग जाती हैं। देखिए भाई, ये नागेश्वर जी का अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है। और अभी गोंडा में हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या गलत लिख दिया किसने हमको, समझ में नहीं आया कुछ नहीं ऐसा किया। जी हाँ, अभी रुकने का इरादा है। क्या बात है भाई, तो ये इरादा है तो बहुत अच्छा है। और 89.6 FM की शोभा भी आकर आप बढ़ाइए। स्टूडियो में अभी आपकी प्रतीक्षा है। और अब चलते हैं भाई उनकी तरफ जिनका नाम है रूबीना आयाज। उन्होंने लिखा कि खुली है हिज्र की, हिज्र मतलब जुदाई, खुली है हिज्र की हम पे जो ये सच्चाई हैरत है। हैरत है कि ये मतलब क्या सच हमारे सामने आ गया। इससे अच्छा था कि झूठ ही रहता। खुली है हिज्र की हम पर जो ये सच्चाई हैरत है, कि नम आंखें भी हो जाती हैं फिर सहराई हैरत है। सहराई मतलब जंगल से संबंधित। तुम ही मेरे मुहाफिज थे, मतलब रक्षा करने वाले। तुम ही मेरे मुहाफिज थे, तहफ्फुज चाहती थी मैं, मतलब चाहती थी कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तुम ही ने की है मेरी हर जगह रुसवाई, हैरत है, हैरत है साहब कि आपसे उम्मीद थी कि आप हमको बचाएंगे, आप मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आप ही रुसवाई कर रहे हैं। कि जिनके हाथों से मेरे जख्म की परतें उधेड़ी हैं, कि जिनके हाथों से मेरे जख्म की परतें उधेड़ी हैं, उन्हीं हाथों से करने आ गए तुरपाई, हैरत है। सुकून दिल जिसे माना, मोहब्बत से जिसे चाहा, सुकून दिल जिसे माना, मोहब्बत से जिसे चाहा, वही निकला जमाने भर का यूं हर जाई, हैरत है। एक ही व्यक्ति को माना और वो भी बेवफा निकल गया। मैं अपने हिज्र के किस्से सुनाने उसको क्या बैठी, खाली हैरत है का मजा लीजिएगा साहब। मैं अपने हिज्र के किस्से सुनाने उसको क्या बैठी, इसी 22 मतलब इसी माध्यम से, इसी 22 सहेली बन गई तन्हाई, हैरत है। सही, कभी कभी इंसान का अकेलापन उसका बहुत अच्छा साथी होता है। और तमन्ना थी इन आंखों की उसे बस एक नजर देखें, तमन्ना थी इन आंखों की उसे बस एक नजर देखें, और उसके हिज्र में खोदी बिनाई, बिनाई मतलब दृष्टि, और उसी के हिज्र में खोदी बिनाई, हैरत है। यह हैरत है। और इंसान की जिंदगी हम तो कहते हैं कि इसी में गुजरती है साहब, हैरत पर हैरत, हैरत पर हैरत। तो आखिर में कौन होगा अपना, कौन होगा अपना, कौन होगा अपना, इसी तलाश में जिंदगी चलती रहती है। शायद जिंदगी किसी अच्छे इंसान की तलाश का दूसरा नाम तो नहीं, हो सकता है ये भी एक सच हो। फिलहाल आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, दो सलाम होते हैं, एक आने वाला और एक जाने वाला। तो घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब रुखसती वाला सलाम लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, और बहुत दिनों के बाद भाई हम इस कुमार जी को देख रहे हैं अपनी महफिल में, क्या बात है भाई। आपका भी अभिनंदन है, वंदन है, इस्तकबाल है, खैर मकदम करते हैं आपका भाई, कैसे हैं जी। और इसके पश्चात क्या बात है भाई, बहुत प्यारे प्यारे श्रोता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्री जी प्रणाम करते हैं, बेइरादा नज़र मिल गई, तो क्या बात है। विपिन सचदेवा की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल जी, बिल्कुल आप सभी ने इंजॉय की और सलाम करने की आज हुआ है। नगर लिखते हैं, मैं कभी कभी अकेला फील करता हूँ तो अच्छा लगता है, मन को कुछ शांति मिलती है, बिल्कुल। और इट्स कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग आज जी, फिलहाल तो सिंगल से काम चला लीजिए इट्स कुमार जी, अब इसके साथ एक दो कोई और आएंगे तो ऐसा लगा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो हम अकेले ही हैं साथ दुनिया में। और जी हाँ, कायनाथ जी आपका शुक्रिया हम कबूल करते हैं भाई, और आपने भेजा भाई, और उसके पश्चात बहुत सारे दिल इमोजीज, वाह क्या भाई, बहुत अच्छी गज़ल, बहुत अच्छी गज़ल। पवन मिश्रा जी ने बहुत सारे स्टार दे दिए हमको, कायनाथ जी ने दिल पर दिल, दिल पर दिल, दिल पर दिल, और नाइस, क्या बात है भाई। और कैसे हैं भाई कुमार जी, भाई बहुत कभी कभी आ जाया कीजिए आप, तो मतलब लगता है आएंगे ही नहीं। और जी हाँ, आपका भी शुक्रिया हम स्वीकार करते हैं, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आप सुन मत लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के हों ठुकरा सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बाहर ए गज़ल में, तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी अधूरे खत। कॉलेज का पहला दिन और दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मी। कॉलेज के लाल पत्थरों वाली इमारत के सामने आर्यन अपनी पुरानी साइकिल खड़ी कर रहा था। उसके कंधे पर एक झोला था जिसमें कविताओं की एक डायरी और प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह था। वो भीड़ से बचने वाला लड़का था जिसे शोर नहीं खामोशी पसंद थी। तभी एक तेज दौड़ती हुई लड़की उससे टकराई। आर्यन का झोला नीचे गिर गया और उसकी डायरी के पन्ने इधर उधर बिखर गए। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, वो लड़की अव्या जल्दी जल्दी पन्ने समेटने लगी। आर्यन ने बिना कुछ कहे पन्ने उठाने शुरू किए। तभी अव्या की नजर एक अधूरे शेर पर पड़ी। शहर की इस भीड़ में खुद को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी ही खामोशी से बातें कर रहा हूँ। अव्या रुकी, उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, खामोशी से बातें, थोड़ा बोरिंग नहीं है? कभी थिएटर के शोर में आओ, खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से मिल जाओगे। आर्यन को डायरी थमाई और ड्रामा रूम की तरफ भाग गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उस लड़की की बातों में एक अजीब सी खनक थी जो दिल्ली की उस दोपहर को भी खुशनुमा बना रही थी। अगले कुछ महीनों में इत्तेफाक बढ़ने लगे। आर्यन अक्सर लाइब्रेरी के पीछे वाले पेड़ के नीचे बैठकर लिखता और अव्या वहीं पास के चबूतरे पर अपने नाटकों की रिहर्सल करती। एक दिन कॉलेज कैंटीन में भारी भीड़ थी, मेजें भरी हुई थीं। अव्या अपनी चाय का ग्लास लेकर आर्यन की टेबल पर आकर बैठ गई। आर्यन, तुम हमेशा अकेले क्यों बैठते हो? क्या तुम्हें लोगों से डर लगता है या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा? अव्या ने समोसे का टुकड़ा तोड़ते हुए पूछा। शायद दोनों ही नहीं अव्या, मुझे बस अपनी दुनिया में रहना पसंद है, शब्दों के साथ। आर्यन ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए धीमे से कहा, तुम्हारे शब्द अच्छे हैं पर वो उदास हैं, उनमें अधूरापन है, जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो पर रुक जाते हो। अव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उस दिन पहली बार आर्यन को लगा कि कोई उसे पढ़ रहा है। उसकी दोस्ती यहीं से परवान चढ़ी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरे खत। अब तक आपने सुना अव्या और आर्यन कॉलेज में मिले। दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। जहां आर्यन को शांत रहना पसंद था, वहीं अव्या बेहद चंचल थी। पर दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी। अब आगे अव्या ने आर्यन को थिएटर के पीछे के काम में मदद करने के लिए मना लिया। पर्दे के पीछे से स्क्रिप्ट सुधारना, संवादों में जान डालना। धीरे धीरे आर्यन, जो कभी भीड़ से डरता था, अव्या की चंचलता के साए में खिलने लगा। कॉलेज का तीसरा साल चल रहा था। अव्या ने एक बहुत ही भावुक नाटक पेश किया था, जिसकी स्क्रिप्ट आर्यन ने ही लिखी थी। नाटक खत्म होने के बाद जब पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था, अव्या की आंखें भीड़ में आर्यन को ढूंढ रही थीं। वो उसे बैकस्टेज मिला। अव्या खुशी से उछलती हुई आई और उसे गले लगा लिया। आर्यन, हमने कर दिखाया, तुम्हारी लिखी बातें लोगों को रुला रही थीं। आर्यन कुछ पल के लिए ठिठक गया। उस एहसास ने उसे झकझोर दिया था। उसने अव्या को दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अव्या, ये शब्द मेरे नहीं थे, ये वो सब था जो मैं तुमसे कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। इस नाटक की नायिका तुम नहीं हो, मेरा प्यार है। अव्या खामोश हो गई। कॉलेज के उस शोर शराबे के बीच उन दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा असहज नहीं था, बल्कि उसमें एक स्वीकारोक्ति थी। खुशियां लंबे समय तक नहीं टिकती। अव्या के पास लंदन जाने का मौका आया। कॉलेज के आखिरी दिन वो दोनों रोड पर टहल रहे थे। आर्यन, मैं नहीं चाहती कि हमारी कहानी उन पुरानी फिल्मों जैसी हो जहां करियर के लिए प्यार कुर्बान कर दिया जाता है। अव्या की आवाज भारी थी। अव्या, तुम उड़ने के लिए बनी हो, मैं तुम्हें इस छोटे से पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। जाओ, अपना आसमान ढूंढो। अगर हमारी किस्मत में साथ होना लिखा है, तो ये शहर, ये सड़कें हमें फिर से मिला देंगी। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। जिस दिन अव्या की फ्लाइट थी, आर्यन उसे छोड़ने एयरपोर्ट नहीं गया। उसे पता था कि अगर उसने अव्या को देख लिया, तो वो उसे जाने नहीं दे पाएगा। उसने घर पर ही बैठकर अपनी डायरी का वो पन्ना फाड़ दिया, जिस पर उसने हैप्पी एंडिंग सोची थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरे खत। अब तक आपने सुना अव्या और आर्यन की मुलाकात कॉलेज में हुई। दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। जहां अव्या एकदम चंचल थी, वहीं आर्यन एकदम शांत। पर समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। पर वक्त ठहरता कहाँ है। कॉलेज पूरा होने के बाद अव्या को लंदन जाने का मौका मिला और आर्यन ने उसे खुशी खुशी विदा कर दिया। अब आगे। अव्या के लंदन जाने के बाद आर्यन ने कभी भी उससे कोई भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। एक आध बार उधर से अव्या ने प्रयास किया भी तो आर्यन ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। आर्यन को यह डर था कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या अंजाम हो, क्योंकि फिलहाल उन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा थी और कभी कभी ये सामाजिक दूरियां रिश्तों में बड़े दर्द दे जाती हैं। आर्यन वैसी किसी भी परिस्थिति में ना खुद को डालना चाहता था और ना ही अव्या को। उसने सब कुछ समय और भगवान के हाथों में सौंप दिया था और बस अपनी ही लय में अपना जीवन जी रहा था। बनारस की वो शाम कुछ अलग थी। गंगा के घाटों पर जलते दियों की रोशनी लहरों पर थिरक रही थी। आर्यन घाट की सीढ़ियों पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। वो एक लेखक था जिसकी कहानियों में अक्सर अधूरापन होता था। तभी उसके पास आकर कोई रुका। क्या लिख रहे हो? फिर से कोई अधूरी दास्तान? एक खनकती हुई आवाज आर्यन के कानों में पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा। वो अव्या थी, उसकी पुरानी दोस्त, उसकी पहली प्रेरणा और शायद वो प्यार जिसे वो कभी शब्द नहीं दे पाया। 5 साल बाद अव्या को अपने सामने देखकर आर्यन के हाथ से कलम छूट गई। अव्या, तुम यहाँ? आर्यन ने हैरानी से पूछा। 5 साल बाद जब अव्या ने 80 घाट पर आर्यन का हाथ थामा तो उसे लगा कि वो कॉलेज के उन गलियारों से निकलकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच गई है। पता है आर्यन, लंदन में जब भी मैं स्टेज पर खड़ी होती थी तो मुझे लगता था कि तुम कहीं विंग्स में खड़े मेरी स्क्रिप्ट ठीक कर रहे हो। आर्यन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। और मैं यहाँ हर रोज एक नई कहानी लिखता था इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन तुम उसे पढ़ने आओगी। मेरी हर कहानी का हर एक शब्द तुम्हारी ही यादों की ताबीर है। 5 साल बीत गए अव्या, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल ने कभी भी तुमसे मिलने की आस नहीं छोड़ी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरे खत। अब तक आपने सुना आर्यन और अव्या कॉलेज में मिले और एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन कॉलेज के बाद अव्या लंदन चली गई, लेकिन वो 5 साल बाद फिर लौट कर आई और आर्यन से मिली। आर्यन के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सुखद आश्चर्य था। अब आगे आर्यन ने उससे पूछा, अव्या तुम यहां कैसे आई? अव्या बोली, सुना था बनारस की गलियों में खोए हुए लोग मिल जाते हैं, तो सोचा मैं भी अपनी कोई खोई हुई चीज ढूंढ लूं। उसकी मुस्कान में वही पुराना जादू था, लेकिन आंखों में थोड़ी थकान थी। वो दोनों घाट से दूर एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। हवा में ठंडी नमी थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। 5 साल आर्यन, एक फोन तक नहीं। अव्या की आवाज में हल्की शिकायत थी। शायद मैं डर गया था अव्या, जब तुम लंदन जा रही थी मुझे लगा कि हमारे रास्ते अब कभी नहीं मिलेंगे। मैंने सोचा कि तुम्हें भूल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन मेरी हर कहानी का किरदार तुम्हारी ही परछाई बन जाता था, आर्यन ने धीरे से कहा। अव्या ने गंगा की लहरों को देखते हुए बोला, वहां सब कुछ था आर्यन, सफलता, पैसा, शोर, लेकिन सुकून नहीं था। हर रात जब मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे इसी घाट की शांति और तुम्हारी वो अधूरी कहानियां याद आती थीं। मैंने वहां बहुत कुछ हासिल किया पर खुद को कहीं खो दिया। आर्यन ने अपनी डायरी उसकी ओर बढ़ाई। अव्या ने पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें कविताएं थीं, छोटे छोटे किस्से थे और हर पन्ने पर अव्या का जिक्र था। एक पन्ने पर लिखा था, प्यार वो नहीं जो साथ रहने का वादा करे, प्यार वो है जो दूर होकर भी हर सांस में महसूस हो। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अव्या की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे लगा कि प्यार जाहिर कर देने से शायद वो दोस्ती भी खत्म हो जाए जो मेरे पास थी। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। उस रात बनारस के घाट एक गवाह बने। दो दिल जो सालों से एक दूसरे से भाग रहे थे आखिर मिल ही गए। अव्या ने तय किया कि अब वो वापस नहीं जाएगी। उसने आर्यन की उन अधूरी कहानियों को पूरा करने का फैसला किया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरे खत। अब तक आपने सुना आर्यन और अव्या मिले, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने और समय ने उन्हें अलग कर दिया। 5 साल बाद सब कुछ छोड़ के अव्या आर्यन के पास वापस आ गई। आर्यन को तो जैसे उसकी जिंदगी मिल गई। अब आगे समय बीतता गया। आर्यन की किताब घाटों का इश्क प्रकाशित हुई और उसे बहुत लोकप्रियता मिली। लोगों को उनकी कहानियों का अधूरापन पसंद आता था, लेकिन इस बार किताब का अंत पूरा था। अव्या और आर्यन ने बनारस में ही एक छोटा सा घर लिया। सुबह की आरती और शाम की सैर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। एक शाम जब वो फिर से उसी घाट पर बैठे थे, आर्यन ने पूछा, अव्या क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम 5 साल पहले मिल गए होते, हमारे तुम्हारे बीच ये दूरी का दौर ना आता तो चीजें अलग होती? अव्या ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, शायद, लेकिन तब हमारे पास वो परिपक्वता नहीं होती जो आज है। कभी कभी बिछड़ना जरूरी होता है ताकि हम मिलने की कीमत समझ सकें। उनकी कहानी अब किसी डायरी के पन्नों तक सीमित नहीं थी। वो बनारस की हवाओं में, गंगा की लहरों में और हर प्रेमी जोड़े की दुआओं में बस गई थी। आर्यन ने अब लिखना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसकी कहानियों में दर्द की जगह उम्मीद थी, खुशियां थी, सुखद अंत थे। अब उसकी कहानियां अधूरी नहीं होती थीं। प्यार वाकई वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। प्यार वो है जो चुपचाप बिना किसी शोर के दो रूहों को जोड़ जाए। जैसे गंगा और यमुना का मिलन होता है, वैसे ही आर्यन और अव्या की जिंदगी एक हो गई थी। भौगोलिक दूरी रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि वो सच्चे प्यार को और अधिक गहरा और मजबूत बनाने का एक बेहतरीन माध्यम साबित होती है। किसी ने सच ही कहा था कि प्रेम को अपनी गहराई का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक वियोग का क्षण न आ जाए। जब दो दिल एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं, तब उनका रिश्ता सतही आकर्षण से ऊपर उठकर एक गहरे भावनात्मक और आत्मिक स्तर तक पहुंच जाता है। लंबे इंतजार के बाद मिलने की जो उत्सुकता होती है, वो मिलन के उन क्षणों को अनमोल बना देती है। साथ बिताया एक एक पल बहुत कीमती हो जाता है और दूर रहने के बावजूद एक दूसरे के प्रति वफादार रहना रिश्ते की नींव को चट्टान जैसा मजबूत बना देता है।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी अधूरे खत। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो।

और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमने शायद सुने भी नहीं हैं, जो हमें शायद पता भी नहीं है कारण क्या है। कारण ये है कि आज मैं जिस कलाकार को आपसे रूबरू कराने वाली हूँ वो है हमारी साउथ की, यानी कि हमारी साउथ म्यूज़िक इंडस्ट्री की गायिका, जिनको कहा जाता है, जिनको जाना जाता है एस जानकी के नाम से। भारत की एक प्रसिद्ध और दिग्गज पार्श्व गायिका जिनका नाम एस जानकी है, जिन्हें व्यापक रूप से दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता है। 65 से अधिक वर्षों के करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में 48,000 से अधिक गीत गाए हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं के बारे में और इनके उस कलाकारी के बारे में जिससे साउथ इंडस्ट्री पूरी तरह से ओतप्रोत है। फिलहाल इनके एक नगमे को सुनते हैं और आते हैं फिर इनकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आपसे साझा करनी है। स्टे ट्यून्ड।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी के बारे में, जो कि हैं सुरको किला, कहाँ की, दक्षिण भारत की। और इनके बारे में बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो चलिए कर ही लेते हैं। एस जानकी जी जब 75 वर्ष की थी तभी उन्हें पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था। तब दक्षिण भारत की नाइटिंगेल कही जाने वाली एस जानकी ने कहा कि अगर भारत सरकार उन्हें भारत रत्न नहीं दे सकती तो उन्हें दूसरा कोई सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतने वर्ष वो इस संगीत जगत को दे चुकी हैं और ऐसी कोई भी विधा या भाषा नहीं है जिसमें उन्होंने गायकी नहीं की या फिर जो उनसे अछूती रही हो। एस जानकी को दक्षिण भारत की लता जी माना जाता है। ये बातें एक टीवी इंटरव्यू के दौरान नेहा पंत और एस जानकी जी के मध्य हुई थी। इन्होंने 1957 से फिल्मों को अपनी आवाज दी। 20,000 से भी अधिक तमिल गीत इनके नाम रहे हैं। साथ ही इन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। दक्षिण भारत की सुर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध एस जानकी का जन्म आंध्र प्रदेश के गंटूर में हुआ था। मात्र 19 साल की आयु से इन्होंने गायन प्रारंभ कर दिया था। चलिए इन्हीं की आवाज में एक और नग्मे का आनंद उठाते हैं आपके शो भूले बिसरे गीत के साथ में। आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके भूले बिस्तरे शो में एस जानकी जी की। अगर इनके प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक स्थिति की बात करें तो जानकी का जन्म 23 अप्रैल 1938 को ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गंटूर जिले में रिपाले तालुका के पल्ला पटला में हुआ था। उनके पिता सिस्टला श्री राम मूर्ति एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और शिक्षक थे। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन सिरसिला में बिताया जहां उन्हें 9 वर्ष की आयु में मंच पर प्रस्तुति देने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने नाद स्वरम विद्वान पैदी स्वामी से संगीत की बुनियादी बातें सीखी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। जानकी का विवाह 1959 में वी राम प्रसाद से हुआ। उन्होंने उनके करियर को प्रोत्साहित किया और उनकी अधिकांश रिकॉर्डिंग के दौरान उनका साथ दिया। 1969 में हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। जानकी की मातृभाषा तेलुगु है लेकिन वे तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में धारा प्रवाह बोल और लिख सकती हैं। एस जानकी जी ने विभिन्न पीढ़ियों के संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है। 1960 के दशक की शुरुआत से ही उन्हें मुख्य रूप से कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के संगीतकारों द्वारा रचित गीत दिए गए। हालांकि अपने करियर के आरंभ में उन्होंने तेलुगु और तमिल में कम गाने गाए लेकिन 1970 के दशक के मध्य उन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं में पार्श्व गायन उद्योग का अपना दबदबा कायम किया।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपना रात के सफर का ये शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। और आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी के बारे में। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे इनके करियर के बारे में। अभी तक हमने जो भी बात किया उसके आगे की चर्चा ये है कि जानकी अपने चाचा की सलाह पर चेन्नई चली गई, जहाँ उन्होंने संगीतकार आर सुदर्शनम के साथ एवीएम स्टूडियो में गायिका के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने 1957 में तमिल फिल्म विधीन विलायट्टू से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म एमएलए में अभिनय किया। उन्होंने अपने पहले वर्ष में 6 भाषाओं में फिल्मी गीत गाए, है ना, कितना अमेजिंग। सोचने की बात है कि अपने करियर के प्रथम वर्ष में ही 6 भाषाओं में गायन करना, फिलहाल इसी को तो कहते हैं कलाकार। उन्होंने 10 कल्पना कल से मलयालम लोरी अम्मा पुविनम को अपने 60 साल के गायन करियर के अंतिम गीत के रूप में चुना और 28 अक्टूबर 2017 को मैसूरु में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के साथ संन्यास ले लिया। चलिए एक और गीत आपको सुनाते हैं, फिर आते हैं इनके गायकी के विधाओं में ही इनका करियर कितना बड़ा रहा है उसे आपको रूबरू कराते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम भूले बिस्तर गीत में बात कर रहे हैं उस कलाकार की जो कि कही जाती है साउथ की सुर कोकिला। तो चलिए बात करते हैं फिर से एस जानकी जी की। और एस जानकी जी ने तेलुगु फिल्मों में क्या किया है, आइए उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो एस जानकी ने 1957 में फिल्म एमएलए से तेलुगु फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। बाबा मराडालू, पूजा फलम और बंगारू पंजारा जैसी फिल्मों में एस जानकी के गाने थे जो बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में लगातार हिट गाने गाए। ये कार्यक्रम लगभग 90 के दशक के मध्य तक जारी रहा। और अगर पुरस्कारों की बात करें तो उसकी तो श्रृंखला खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। एस जानकी जी ने 12 नंदी पुरस्कार जीते हैं, 10 फिल्मों के लिए और 2 टेलीविजन धारावाहिक गीतों के लिए। उनके कुछ एकल भी हैं जैसे नी आसा आदि आसा और इंडे नंदी पुदामू रावोई बाबा अनुकुंदंता गाजू लम्मा गाजुलू ले ले ले आकाश मेले अंडाला राजे ई पगलू वेडू जैसे और भी कई सारे तमिल गीत को इन्होंने अपने स्वर से सजाया और उसके लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। अब बात करेंगे कन्नड़ फिल्मों की, लेकिन उससे पहले एक और गीत।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने जिनकी आवाज़ सुनी वो है हमारी एस जानकी जी। इनके कन्नड़ फिल्मों की बात करें तो एस जानकी ने अपने करियर में कन्नड़ में सबसे अधिक गाने गाए हैं। पीबी श्रीनिवास, एसपी बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ उनके एकल और युगल गीत सदाबहार हिट माने जाते हैं। जानकी ने अपना पहला कन्नड़ गीत 1957 में गाया था। 60 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने कई प्रमुख संगीतकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 1970 और 80 के दशक में वे कन्नड़ फिल्मों में नंबर एक महिला पार्श्व गायिका बनी रहीं। जी के वेंकटेश्वर, राजन नागेंद्र से लेकर हमस लेखा तक अधिकांश संगीत निर्देशकों ने उन्हें अपनी शीर्ष रचनाएं दी। उन्होंने पीबी श्रीनिवासन, एसपी बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर राजकुमार के साथ रिकॉर्ड संख्या में युगल गीत गाए हैं। उन्हें 2014 में राज्योत्सव प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था। कन्नड़ फिल्म और संगीत में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कन्नड़ सिनेमा में उनके कुछ शीर्ष हिट एकल भी हैं, जैसे शिव शिव एंद्रा, पूजी सालिंडे, गगनवु एलो, ओम्मे निन्ननु, नंबाइड निन्ना जो कि संध्या राग में गाया गया है, बरेंदे नीनु, दीपवनु निन्नड़े जैसे और भी कई सारे गीतों को इन्होंने अपने सुरों से सजाया। चलिए चलते हैं फिर इन्हीं के एक और गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी की। चलिए फिर जानते हैं इनकी कलाकारी के क्षेत्रों के बारे में। बहुत ही लंबी कतार है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे और हम आपको बताते बताते, पर हाँ कुछ चुनिंदा बातें तो हम आपसे ज़रूर साझा करना चाहेंगे, जिसमें अब हम बात करेंगे मलयालम फिल्म की। जानकी जी ने पुणे में 2007 में अपना पहला मलयालम गीत 1957 में गाया था। उन्होंने सही उच्चारण और भाषा की बारीकियों का अभ्यास किया, जिससे वे 1970 के दशक से लेकर 80 के दशक के मध्य तक उद्योग की सबसे लोकप्रिय गायिका बन गईं। वे वी दक्षिणमूर्ति, एमएस बाबूराज, श्याम एमबी श्रीनिवासन, एटी उमर और सलील चौधरी जैसे कई लोकप्रिय संगीतकारों की चहेती थीं। जानकी ने 1960 के दशक की शुरुआत से लेकर 80 के दशक के मध्य तक हजारों गाने गाए। उन्हें 1970 में सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए पहला केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला और अगले 15 वर्षों तक लगभग हर साल यही पुरस्कार वे जीतती रहीं। मलयालम फिल्मों में कुछ हिट एकल इनके नाम हैं, जैसे कि थाली रिट्टा, सूर्यकांती, केशादी पदनम, ओरु कोचू स्वप्रथिन और ऐसे ही बहुत सारे गीत। इसके अलावा इन्होंने तमिल फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है। जानकी ने अपना पहला तमिल गीत 1957 में ही गाया था। बताया नहीं मैंने आपको कि अपने करियर के पहले ही साल में इन्होंने 6 भाषाओं में गायन किया। तो चलिए जानते हैं और इनके बारे में। फिल्म कोंजुम सिलंगई का गीत सिंगार वेलनी देवा ने उन्हें तमिल सिनेमा में प्रसिद्धि दिलाई। एमएस विश्वनाथन ने 60 के दशक और 70 के दशक के आरंभिक वर्षों में उन्हें हर साल कई हिट गाने दिए। फिल्म अवलु केंद्रु ओर मनम, जो कि 1971 का आया हुआ फिल्म है, में एक गीत था जिसके बोल हैं उन्नी दत्थिल, ने इन्हें तमिल उद्योग की सबसे होनहार गायिकाओं में स्थान दिलाया। उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए, जैसे इलैया राजा, एसपी बाला सुब्रमण्यम। और जानकी ने 1900 के दशक से 1990 के दशक तक साथ मिलकर गीत तैयार किए। जानकी राज्य के 3 सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों यानी कि एमएस विश्वनाथन, इलैया राजा और एआर रहमान के निर्देशन में राज्य पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र गायिका हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस वर्सेटाइल सिंगर की, जो कि हैं तमिल की स्वर कोकिला, सुर कोकिला और या फिर इन्हें आप लता जी भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये सारी उपाधियों से सम्मानित हैं हमारी एस जानकी जी। चलिए अब बात करते हैं इनकी हिंदी फिल्मों के बारे में। संगीतकार बप्पी लहरी प्रसाद स्टूडियो में आए और तमिल फिल्म के लिए एस जानकी द्वारा गाए गए एक हिंदी गीत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी आगामी हिंदी फिल्मों में उनसे गायकी करवाने का फैसला लिया और फिर क्या था, उन्हें बॉलीवुड से परिचित कराया गया। उन्होंने गायक किशोर कुमार के साथ कई युगल गीत गाए। एस जानकी जी के कुछ हिंदी उल्लेखनीय गीत इस प्रकार हैं, प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो, सुर संगम मूवी से जो आई थी 1985 में, यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार को मिला, अरे प्यार कर ले, ये तो गाना आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, और एक और गीत, जवां है दिल जवां है हम, ये दोनों ही गीत हैं साहिब मूवी से जो कि आई थी 1985 में, आया जब से तू दिल में, ये झूठी मूवी से है जो कि आई थी 1985 में, सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया, ये भी आपने ज़रूर ही सुना होगा, मर्द मूवी से 1985 से। और एक गाना, ये तो मुझे लगता है कि हर एक चुलबुले इंसान की पसंद होगा। हाँ जी, मैं गोरी छोरी हूँ गोपाला, तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा, सुना है ना, नहीं सुना है तो आज अभी मैं आपको सुनाती हूँ। चलिए फिर सुनते हैं इसी गीत को।

तो दोस्तों, हमने आज इतना सब कुछ जाना किसके बारे में, एस जानकी जी के बारे में, लेकिन एक और खास बात। जी हाँ, एक सॉन्ग आया था जिसके बोल थे जिया जय।

सखीरी, हाँ यही वाला, जिसका कंपोजिशन किया गया था म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान जी के द्वारा। और ये गीत सिर्फ और सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि कई भाषाओं में गाया गया है। हिंदी में जिया जले जा जले, तमिल में नंजिले नंजिले नून जले नान गन यन गने नीले नीले, जी हाँ ये तमिल में गाया गया है, जिया जले का ही वर्जन है। तेलुगु की बात करें तो इन्ना नीला ने दोले नालो ये दो काला जले ये गिंदिले, जी हाँ ये है तेलुगु वर्जन। और मलयालम वर्जन की बात करें तो नान कोरू सले कोरू कुई लले मारन मई लले लले, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में इसे गाएंगे तो उतना ही सुमधुर लगेगा आपको। और इस गीत की अगर बात करें तो हिंदी में लता जी ने 70 की उम्र में इसे गाया था, तमिल में एस जानकी जी ने गाया था, मलयालम में गिरी नाम ये चेरी जी ने, और तेलुगु की बात करें तो K.S. चित्रा जी के खिताब है और गाना वही है जिया जले जा जले। तो फिर चलते हैं हम भी जला लेते हैं अपना थोड़ा सा जिया इस गाने को सुन करके। जी हाँ, शो चल रहा है भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ अनोखी, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गाना 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

दोस्तों, एस जानकी जी की अगर बात करें तो कई सारी विधाओं से, कई सारे नगमों से, ऐसे ऐसे कठिन नगमे भी उन्होंने गाए जो शायद लोग छूते हुए एक दफ़ा सोचते या डरते हैं, पर इन्होंने उससे कभी भी अपने आप को अलग नहीं किया। क्योंकि बोलते हैं ना, जब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसकी हर एक विधाओं को आप जानना बखूबी पसंद करते हैं। जानकी ने विभिन्न पीढ़ियों के संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है। 1990 के दशक के आरंभ से ही उन्हें मुख्य रूप से कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के संगीतकारों द्वारा रचित गीत दिए गए। यद्यपि उन्होंने अपने करियर के आरंभ में तेलुगु और तमिल में कम गीत गाए, लेकिन 1970 के दशक में उन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं में पार्श्व गायन उद्योग पर अपना दबदबा कायम किया। इसके अतिरिक्त भी कई सारी भाषाओं में इन्होंने गायन किया है। A.R. रहमान, G.K. वेंकटेश, हंस लेखा, इलैया राजा, M. रंगा राव, M.S. बाबूराज, राजन नागेंद्र, विजया भास्कर जैसे दिग्गजों के साथ में इन्होंने काम किया है। जानकी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं में पात्रों की उम्र के अनुसार अपनी आवाज दी। तमिल फिल्म रूसी कंदा पुनाई का गीत कन्नानी एंगे, जिसे एस जानकी जी ने खुद लिखा था, पूरी तरह से जानकी ने एक बच्चे की आवाज में इसे गाया था। मलयालम फिल्म इथानलिल का गीत मम्मी मम्मी भी उन्होंने ही गाया था। 70 के दशक में कन्नड़ में भी गाए हुए बच्चों की आवाज वाले लोकप्रिय गीत थे जो कि इन्हीं के द्वारा गाए गए थे। ऐसा ही एक गीत फिल्म मधुरा संगम का है, जो है थैया थंडेया। तो इस तरह से एस जानकी जी ने विभिन्न आयु वर्ग और अलग अलग किरदारों के लिए ऐसे कई गीत गाए जो कि सभी भाषाओं में रहे हैं। लगभग 48,000 से भी अधिक गीत इनके नाम हैं। जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी। आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और आज हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं उनका नाम है एस जानकी। एस जानकी जी ने इतना सारा काम किया है तो भाई उसी हिसाब से इनको सम्मान भी प्राप्त हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सम्मान और पुरस्कार की अगर बात करें तो इतने सम्मान और पुरस्कार इनके नाम हैं कि मैं आपको पूरी तरह से बता भी नहीं सकती, पर कुछ प्रमुख पुरस्कार इनके नाम जो है वो ज़रूर आपको बताना चाहती। इन्होंने 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, जो कि केरल राज्य फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 11 बार आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म पुरस्कार जीता है। 10 बार तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता है। 6 दफा कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार जीता है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य फिल्म पुरस्कार और 33 दफा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का खिताब भी इनके नाम है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पुरस्कार इनके नाम हैं, पर उसमें से भी मैं कुछ चुनिंदा पुरस्कार आपको बता देती हूँ। M.S. बाबूराज पुरस्कार, P. सुशीला ट्रस्ट राजकीय पुरस्कार, V. दक्षिणामूर्ति पुरस्कार, माधव पेडी सत्यम पुरस्कार, मलयालम फिल्म संगीत में योगदान के लिए वायलार पुरस्कार, आंध्र प्रदेश सरकार से गीता दत्त पुरस्कार, ची उदय शंकर पुरस्कार, संगीता गंगा गायन पुरस्कार, संगीता कला वेदिका द्वारा संगीत रत्ना, सिंगर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2014 में मन्ना डे पुरस्कार, 2014 में ही गायक जिक्की पुरस्कार।